श्रोताओं सुप्रभात। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:48 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन, आलेख एवं वाचन कुसुमाकर दुबे।
1: हमारे कार्यों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, इसीलिए हमें हमेशा सजग रहकर अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए। विचार कल्पुर्जों की क्रिया मात्र न होकर मन, मस्तिष्क और हृदय की अनुभूति है। विचार करने के लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है सोचना, या यूं कहा जाए कि सोचना और मनन करना मनुष्य का गुण है। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसके पास मस्तिष्क है, ऐसा मस्तिष्क जो अन्य प्राणियों की तुलना में ज्यादा उर्वर है, इसीलिए मनुष्य ही सोच सकता है। सोचने की क्रिया जब होती है, हम विचारों में बहने लगते हैं और हमारे विचार हमें एक निश्चित दिशा की ओर ले जाते हैं। परंतु विचार ऐसा नहीं है कि मन के ही अधीन है, इसका आधारभूत है, ऐसी बात नहीं। अव्यक्त रूप से कुछ प्रभाव ऐसे भी पड़ते हैं हमारे मन पर जो विचारों को एक नई दिशा देते हैं। ये अव्यक्त विचारों को एक नई दिशा देने में समर्थ होते हैं। हम अपनी बुद्धि के परे, बुद्धि शून्य होने पर भी अपने अंदर के संस्कार से प्रभावित होते रहते हैं। ये प्रभाव विचारों में बदलाव लाते हैं। इन प्रभावों को किसी एक कोटि में सीमित करना बहुत कठिन है। ये प्रभाव बुद्धि को कुछ सोचने के लिए ही प्रेरित नहीं करते, वरन क्रमशः जो प्रभाव इन पे पड़ता है उससे प्रभावित होकर ये विचार गुम्फन में नई दिशा लाने की ओर इशारा भी करते हैं। इन्हीं अव्यक्त और व्यक्त परिस्थिति, मनस्थिति और दृश्यावलोकन की भावना से विचार बनते हैं, और इन्हीं विचारों की श्रृंखला को हम कहते हैं कि हम सोच रहे हैं या हम मनन कर रहे हैं। जब हम सोचते होते हैं या मनन करते होते हैं तो बुद्धि एक बड़ी भूमिका निभाती है। जहाँ बुद्धि शून्यता विचार को रोकती है, उसका अनुप्रेरक नहीं होती, वहाँ हृदय की भावना अनुपस्थित है ऐसा भी नहीं है। जो अंतर एक प्रज्ञावान मनुष्य में और बुद्धिमान मनुष्य में है, उससे भी ज़्यादा अंतर हृदयवान या सहृदय और विचारवान में।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिंतन, अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा।
2: स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन, आजुक कृषि चर्चा आप शंकर कुमार चौधरी से सुनल जा। हमरा लोकन फसलक उपजा जो मनोनुकूल चाहत छे तो खेतक माटिक जांच करा कर तखन फसिल के बीया बाउग करबाक चाही। कारण एहन कयला से हमरा लोकन के कतेको प्रकारक लाभ होइत अछि, जेना बीया के मात्रा कतेक देबाक चाही, कोन फसिल के कखन लगेबाक चाही, हमरा लोकन के खाद उर्वरकक व्यवहार कखन करबाक चाही, कतेक करबाक चाही, कोना करबाक चाही, एहि प्रसंगमे ज्ञान भेटैत अछि। कारण माटिमे कोन पोषक तत्वके अभाव अछि, ओकर ज्ञान भेटलासँ ओ खाद उर्वरक अथवा सूक्ष्म पोषक तत्वके हमरा लोकनि दैत छी, जाहिसँ फसलक उपजा मनोनुकूल होइत अछि। तऽ एहि सबके ध्यानमे रखैत सरकार द्वारा एकटा योजना चलाओल गेल, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना अंतर्गत लाभ उठेबाक लेल

0: पहिने सरकार द्वारा किछु पात्रता निर्धारित कयल गेल अछि जकरा हमरा लोकनिके पूरा करय पड़ैत अछि आ तकरा बाद हमरा लोकनि किसानके रूपमे पंजीकृत होइत छी। ई पंजीयन ऑनलाइन कराओल जाइत अछि। प्रत्येक जिलामे जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर मृदा जांच प्रयोगशाला अछि। एतबे नहि, चलंत मृदा जांच प्रयोगशाला सेहो कार्यरत अछि ठाम ठाम पर। आवश्यकता एहि गपके अछि जे हमरा लोकनि जागरूक भऽ कऽ माटिके जांच कराबी आ मृदा स्वास्थ्य कार्डके उपयोगिताके बुझी। हमरा लोकनि बिना जांच करौने जे फसल लगबैत छी ताहिमे खाद उर्वरकके मात्रा अनुमानसँ दैत छी, परम्परागत रूपे दैत अबैत छी जे नहि होयबाक चाही। हमरा लोकनि सटीक जँ खाद उर्वरकक व्यवहार चाहैत छी तऽ ताहि लेल मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना अंतर्गत माटिके अवश्य जांच कराबी आ एहिसँ लाभ उठाबी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना अंतर्गत जे किसान भाई बहिन लोकनि लाभ लेबऽ चाहैत छथि हुनका ओहि क्षेत्रके वासी हेबाक चाही। सङ्गहि माटिके जांच लेल हमरा लोकनि माटिके प्रयोगशालामे जखन पठबैत छी तऽ तकरहु किछु दिशा निर्देश रहैत अछि जकरा मानबाक चाही, तखनहि जांचक परिणाम उचित अबैत अछि।
1: कृषि चर्चा अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा

से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा।

0: की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्स पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
2: स्वास्थ्य चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे आंख में चोट लगना, इस विषय पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह। डॉक्टर साहब, आंख में चोट लगना या फिर धूल या कुछ ऐसी वस्तु का प्रवेश कर जाना जिससे आंख में न सिर्फ तकलीफ होती है, कई बार आंख की रोशनी तक चली जाती है।
3: जी,
2: सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो है धूल।
3: जी,
2: उसमें क्या करें लोग?
3: अगर किसी आंख में अचानक धूल चला गया, आंधी में है या बच्चा खेल रहा है, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे के आंख में धूल झोंक दिया
2: जी,
3: तो उसमें पहला उपचार के तौर पर चिकित्सक तो बाद में देखेंगे उसको, कम से कम साफ पानी से उसको जितना आप धो सकते हैं उतना धोइए, आंख रगड़िए मत, क्योंकि जब भी आप आंख को रगड़ेंगे तो धूल कण के से आप आंख को रगड़िएगा तो कॉर्निया डैमेज करेगा, वो छिल जाएगा और अल्सर बना देगा। तो आप जिस स्थिति में वैसे ही छोड़ दीजिए, जहाँ पर आइए अगर साफ सुथरा पानी मिलता है उससे धो लीजिए, उसके बाद भी आपको कष्ट रहता है तो कोई प्लेन एंटीबायोटिक ओफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन का ड्रॉप डालिए
2: और फिर डॉक्टर
3: जी फिर डॉक्टर से मिलिए।
2: कुछ लोग लोहे का काम करते हैं,
3: व्यवसाय है,
2: बिल्डर है, या बिल्डर का काम करते हैं, तो कई बार चिंगारी
3: स्मिथ वाले हैं, लोहार का काम है,
2: चिंगारी या लोहे का बुरादा या कोई भी कण आंख में अचानक चला जाता है।
3: आंख में अचानक चला जाता है तो उसके लिए आपको उसमें आंख में, अब देखिए अगर बहुत छोटा कण है हो सकता है आंसू के थ्रू भी निकल जाएगा, निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंख में कोई कष्ट नहीं है, मतलब कि पानी नहीं आ रहा है, आंख में दर्द नहीं है, आंख को में फोटोफोबिया, जिसमें कि सूरज की रोशनी में या जनरल रोशनी में आपका आंख बढ़िया से खुलता है, इसका मतलब है कण उसके अंदर नहीं होगा। जब वो कण कॉर्निया पर लॉज कर जाएगा तो आंख से पानी आएगा, आपको आंख में दर्द रहेगा, आंख को आपको धूप में नहीं खोलने देगा, तो वैसी हालत में आपको उसको कण को निकलवाने के लिए विशेषज्ञ से ज़रूर मिलना चाहिए, और ज़्यादा लेट कीजिएगा तो उसके साथ साथ वो इन्फेक्शन भी होने का चांस रहता है, तो उसमें डिले नहीं करना है, जितनी जल्दी हो वो आप विशेषज्ञ के सलाह से उसको अगर अंदर पड़ा हुआ है तो उसको निकलवाइए, और जैसा सलाह दे वो उसी
2: कई बार कुछ ऐसा लिक्विड है जिसका लोग काम करते हैं, केमिकल कह लीजिए या फिर कभी चूना या कोई ज्वलनशील पदार्थ जो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता
3: जी,
2: है
3: जी,
2: अगर वो आँख में चला जाए तो
3: वो एक उसमें दो चीज़ है, या तो अचानक आपके आँख के अंदर, जैसे आदमी गाड़ी को जो ड्राइवर है वो उठाया उसमें एसिड रहता है वो आँख में चला गया, या फिर पेंटर है जो पेंट कर रहा है दीवार को उसके आँख में चूना चला गया, दोनों आँख के लिए घातक है, और एसिड से ज़्यादा घातक चूना है। चूना को लोग कम घातक समझता है बट अल्कली ज़्यादा डैमेज करता है, कारण है कि वो जब अंदर जो आँख के अंदर जाता है तो वो उसमें उसको घुला देता है, वो उसको घुलाता है और सोपनीफिकेशन कहलाता है वो। तो उसको पहला उपचार क्या है कि आप उसमें भी है कि प्लेंटी ऑफ वाटर से आँख को धोइए,
2: साफ पानी,
3: एकदम साफ पानी से, जितना 5 लीटर 10 लीटर जितना भी धो सकते हैं, ताकि उसका कहीं पर भी कानून होगा।
2: और डॉक्टर साहब, धोने की जो प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए?
3: बहुत तेज में आंख में छींटा नहीं मारिए, नॉर्मल वे में, नॉर्मल वे में एक तरह से, अगर आप ये है अगर अच्छे से धोना चाहते हैं तो सलाइन में जो आता है RL वगैरह उसको IV सेट से आंख के पास लगा देना चाहिए,
2: अच्छा
3: उसको ऑन कर दीजिए फुल स्पीड में, तो जितना आँख के अंदर जाएगा जितनी गंदगी होगा, तो एस्ट्रायल भी है वो, साथ साथ वो पानी भी है,
2: लेकिन पूरी सावधानी।
3: अगर हाँ जी, अगर वो उतना उपलब्ध नहीं है तो कम से कम नल का पानी जो है साफ सुथरा, ट्यूबवेल का पानी, उससे आँख को धोइए। और
2: बच्चे कभी कभी तीर धनुष चलाते हैं, गेंद या फिर कुछ ऐसे खिलौने, उसकी वजह से भी कभी कभी आँख में
3: जी जी बच्चे को उससे चीज से नोकीली चीज से उसको मना करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए कि वो नोकीला चीज हाथ में ले।
4: पेंसिल या पेन
3: पेंसिल ले तो उसका वो उसका उससे भी डैमेज होने का चांस रहता है, तो उससे लिखने के लिए ठीक है, खेलने का उसको डिस्करेज कीजिए बच्चे को, नहीं तो फिर आंख में लगने के बाद हो सकता है।

0: दुर्घटना कहकर नहीं आती है।
1: जी जी जी, उसमें
0: अगर दुर्घटना
1: हो गई तो फिर उसका प्रॉपर उपचार होना चाहिए।
0: कभी लोग यात्रा भी कर रहे होते हैं गाड़ी पर और दुर्घटना हो जाती है। देखिए
1: जी,
0: और आँख से खून निकला,
1: हाँ आँख में खून निकला, विजन ठीक है तो चिंता नहीं ली। देखिएगा कभी कभार कि आदमी बहुत घबराया हुआ है कि मेरा आँख एकदम लाल हो गया है, मगर पूछिएगा उससे कि आँख तो लाल है, दिखता है ना सब चीज, तो बोलेगा कि नहीं दिखता ठप है, तो उसमें घबराना नहीं है। दैट इज ए सब कंजक्टाइवल हेमरेज। अगर देखिएगा कि आँख उसका लाल नहीं है मगर उसका रोशनी गड़बड़ा गया, इसका मतलब भीतर में उसको गड़बड़ है, या तो विट्रस हेमरेज हो गया या मैकुला को डैमेज किया या रेटिनल को डिटैच किया, वो ज्यादा घातक है बनिस्बत उसके कि जिस सीधे आंख लाल है उसको दिखता हो।
0: आंख में चोट लगे किसी भी प्रकार से, धूल जाए, लोहे का बुरादा जाए, या ज्वलनशील पदार्थ जाए, तीर धनुष से लगे, या फिर दुर्घटना में आंख चोटिल हो जाए, अपने विशेषज्ञ से नेत्र रोग विशेषज्ञ
1: हम कहेंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोशिश कीजिए कि ये आपको डैमेज नहीं करे, धूल आपके अंदर आंख में नहीं जाए। जो लोग उस व्यवसाय में वो प्रॉपर प्रोटेक्टिव ग्लास लगाकर काम करे, और बच्चा को आप नकली चीज से बंद ये कराइए, उसको डिस्करेज कीजिए। अगर हो जाता है तो उसको प्रॉपर अर्ली स्टेज में उसको दिखलाइए, जो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए।
0: डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह साहब, इतनी अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे कि आंखों में चोट लगने पर क्या करें। विशेषज्ञ थे डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह, और इनसे बातचीत कर रहे थे संजय कुमार। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना की शुरुआत कर रहे हैं इस देश वंदना से।

समवेत स्वर में अभी हमने सुना ये देशभक्ति गीत। आइए अब सुनते हैं एल नितेश के स्वर में ये गणेश वंदना।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अभी आपने सुना आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस
1: एपिसोड नंबर 374। 374।

देवाधिदेव महादेव से राम अवतार की पूरी कथा सुनकर पार्वती के मन का संशय सर्वथा मिट गया, किंतु शिव की इस उक्ति ने कि यह अनुपम कथा काकभूषुंडी ने गरुड़ को सुनाई, उनके मन में सहज जिज्ञासा जगा दी। एक कौवा ऐसी भक्ति कैसे पा गया? देवाधिदेव ने तब वो कथा सुनाई कि पवित्र और पुण्य आत्मा काकभूषुंडी को यह सदगति और ऐसा दुर्लभ सुयोग और सुअवसर कैसे प्राप्त हुआ।

रामचरितमानस गाना भी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम विवरण में। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। अब से कुछ देर बाद यानी 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। आठ बजे आप सुनते हैं समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 8:48 पर प्रादेशिक समाचार। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होता है 9:10 पर। बज्जी का कार्यक्रम अंगना आप सुनेंगे 10:30 पर। 11 बजे आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत और 11:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे प्रातः 10 बजे, दोपहर 12 बजे, 1:15 पर और 2:30 पर इस सभा में। दोपहर 2 बजे आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। 2:05 पर इलाकाई खबरें। 2:10 समय होता है रोजगार सूचना का और 2:15 पर आप सुनते हैं दोपहर समाचार। दोपहर 3 बजे आज आप सुनेंगे बज्जी का लोकगीत। ये थे हमारे इस सभा के कुछ मुख्य कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों पर। दूसरी सभा की शुरुआत शाम 5 बजे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी के साथ की जाती है, जिसमें आज आप सुनेंगे कार्यक्रम तरुण मिथिला। महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं आप सुन सकेंगे शाम 6:10 पर। मैथिली संवाद का समय होता है 6:25 और 6:30 पर गांव घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कार्यक्रम नव ऊर्जा। किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी आप सुनते हैं शाम 7:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं जिले की हलचल के साथ। मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंगरहार का प्रसारण समय होता है रात्रि 8:15 पर। 8:45 पर आप सुनते हैं समाचार संध्या। 9 बजे न्यूज़ @9 और 9:15 पर उर्दू खबरें।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविधा सर्वभाषा में और 9:45 पर इंग्लिश टॉक में आज आप सुनेंगे इंस्पायरिंग वॉइस। रात्रि 10 सुनेंगे एक फनकार और 10:30 पर आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। रात्रि 11 हिंदी में समाचार होगा, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सभा की समाप्ति 11:10 पर की जाएगी।

0: ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। अब समाचार होंगे क्रमशः संस्कृत और हिंदी में। हमारे दिल्ली केंद्र से कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिम एशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदार धाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां संबोधयन् आसीत्।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोक्तवान यत् केंद्र प्रशासनस्य निरंतर प्रयास ही भारतम् पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः। तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात् आरभ्य संयुक्तारबामीरात नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे इटली इत्येतेषां देशानां षड् दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पंच देशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्री मोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमंत्री शुक्रवासरे नीदरलैंड देशं सम्प्राप्स्यति। 17,2000 वर्षे स्वान्तिम यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैंड देशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडन देशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडन देशस्य समकक्षेण उल्फ टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिक वार्तां करिष्यति। विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामि यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविध क्षेत्रेषु विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धेषु यूरोपेन सह भारतस्य सहभागित्वम् इतोऽपि सुदृढं करिष्यति इति। भाजपा दलस्य नेता हिमंत बिस्वा सर्मा इत्येषः अद्य चतुर्मन्त्रिभिः सह असम राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं ग्रहीष्यति। असम राज्ये तृतीयवारं एनडीए प्रशासनं भविष्यति, यस्य नेतृत्वं सर्मा वर्यः निरन्तरं द्वितीयवारं मुख्यमंत्री

द्वेन करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां धर्मशाला इत्यत्र हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे दिल्ली कैपिटल्स दलेन पंजाब किंग्स दलं त्रिस्तोभिः पराजितम् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और

0: ने लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला,
1: नमस्कार मिथिला सुन्निहार समस्त श्रोता लोकन का आशीषक नमस्कार।
0: साथी मैं हूं मनोज, आप तमाम श्रोता को मनोज का प्यार भरा नमस्कार। साथी आशीष आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार मनोज, आजुक सुविचार की है?
0: आज का सुविचार है, हर सुबह हम एक नया जन्म लेते हैं और हम आज क्या करेंगे ये सबसे अधिक मायने रखता है। ये विचार है महात्मा बुद्ध के।
1: निश्चित तौर पर जखन राति में हम अहाँ सुते छी तो बुझियो तो एक अपन जिंदगी के एक दिन गुजारि दे छी, फिर नया दिन के शुरुआत होइत अछि दोसर दिन से। काल्हि तक की केलहुँ केना केलहुँ ई कहल जाइत अछि कि राति में एक बेर जरूर विचार करी, ओहिमे की नीक भऽ सकैए। अगर ओ नीक के संगे अगर अहाँ भोरे से शुरुआत करै छी तऽ फिर आइ के जे दिन होइत अछि से दिन नीक गुजरैत अछि, और अगर अहाँके वर्तमान नीक जायत तऽ भविष्य निश्चित तौर पर सुंदर रहत और सुरक्षित रहत। ताहि दुआरे अपन दिन जे होइत अछि ओ दिन सब दिन एकटा नव शुरुआत होइत अछि। अगर अहाँ कोनो चीज में फंसि रहल छी, कोनो दिक्कत भऽ गेल अछि, तऽ ओहिके लेल अहाँ ई बेसी नहि सोचू, सोचू ओतबे जैसे कि ओ जे समाधान ओकर की भऽ सकैत अछि, और ओ समाधान के संगे अगर अहाँ दोसर दिन फेर भोरे भोर उठै छी एकटा नव ऊर्जा अहाँके देखा पड़त, अपन भीतर एकटा नव ऊर्जा अहाँ महसूस करब और फिर अहाँ निश्चित तौर पर आगू बढ़ जाएब। और कार्यक्रम में सेहो हमसब आगू बढ़े छी और आइ के दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण अछि ताहि पर चर्चा करै छी।
0: जरूर, आज ही के दिन आज है 12 मई, और आज के दिन 1459 में राव जोध ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। 1915 में क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने जापान के नौका मारू पर सवार होकर के भारत छोड़ा था। 1965 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया था। 2002 में सौरभ चौधरी भारतीय निशानेबाज का जन्म हुआ था। 1989 में शिखा पांडे भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म हुआ था। 1980 में ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटेन राजनेता का जन्म हुआ था। 1945 में केजी बालकृष्ण भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश थे का जन्म हुआ था। और 1917 में सीता देवी महारानी बड़ौदा की महारानी थी का जन्म हुआ था। तो ये थे आज के दिन में कुछ विशेष पे हम लोग डाले नज़र।
1: और आइ अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस सेहो अछि, तऽ एहि पर हम सब चर्चा सेहो करब आगू, कियाकि कतौ ने कतौ हमरा अहाँके पर्यावरण के रक्षा करनाइ आब बहुत बेसी जरूरी भऽ गेलै। जाहि हिसाब से गाछ वृक्ष कटि रहल अछि और देख रहल छी हम अहाँके पानि के कमी धीरे धीरे भऽ रहल अछि, पानि के जे लेयर अछि से नीचा जा रहल अछि, प्रदूषण बढ़ि रहल अछि, और ई गाछ वृक्ष अगर एखन नहि बचा सकलहुँ हम अहाँ तऽ अबैवला भविष्य हमर अहाँके खत्म भऽ जायत। ओना कार्यक्रम एखन शुरू भेल अछि और शुरूमे हमसब आनै छी मैथिली गीत, तऽ आउ सुनबै छी ई गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अब हम सुने थे मैथिली सुगम संगीत ममता ठाकुर के स्वर में। इसी साथ चलते हैं जहां हम सबों को इंतजार रहता है। जी हाँ, अपने आस पड़ोस की गतिविधियां संस्कृति पर डालते हैं नज़र, यानी कि हाल चाल लेकर के उपस्थित हैं आशीष जी।
2: धन्यवाद मनोज। आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि पर आधारित हालचालक संग हम आशीष। 17 मई से मलेमास शुरू भ रहा है। एक महीना के अवधि में वैवाहिक आ अन्य मांगलिक जतेक मांगलिक कार्य सब पर पूर्ण रूपे विराम लग जायत। वट सावित्री अबेर शनि दिन पड़ रहा है और वह दिन शनि जयंती शुरू रहत। काल्हिखन अपरा एकादशी है, पर नहाय से गंगा स्नान जेहन पुण्य भेटत। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में अबेर मैथिली के सेहो शामिल कऽ लेल गेल अछि। एहिसे मैथिली भाषी जे छात्र छात्रा सब छथि तिनका सबके लाभ भेटतन। आब सरकारी अस्पताल सब में सेहो प्राइवेट जेहन सुविधा भेट लागत। मुफ्त हैत रहत अहाँके कैंसर और हार्ट समेत 411 तरहक जांच। मरीज के मोबाइल पर रिपोर्ट जायत और सातों दिन 24 घंटा उपलब्ध रहत ई सेवा। 90 दिन में सबटा जिला के लागू भ जायत और हब एंड स्पोक मॉडल एकरा कहल गेल अछि। जांच के लिए लाइन में नहीं लागब पड़त और न लैब सबके कोनो चक्कर काटा पड़े, तै के लेल ई व्यवस्था कयल जा रहल अछि। लोरिक धाम वन डिवली में 15 दिवसीय लोरिक मेला महोत्सव के आयोजन कयल जा रहल अछि। ई 15 मई धरि चलत। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आ जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एहि महोत्सव में 12 से 15 मई धरि विभिन्न सांस्कृतिक आ मनोरंजन के कार्यक्रम हैत। एहि में चर्चित कलाकार सब अपन प्रस्तुति देतत। एहि दौरान धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिव कथा आ रामलीला का मंचन सेहो हैत। कार्यक्रम में मिथिला का समृद्ध लोक परंपरा आ सांस्कृतिक सरसता का झलक सेहो देखे ले भेटत। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आवासीय विज्ञान विद्यालय निर्माणक लेल भूमि चिन्हित करे के लेल काल्हिखन सोम दिन CO सिसोनी मोड़ के लग सड़क से सटल भूखंड का निरीक्षण कैलैत। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के भिंडुआ गाम में 12 मई यानी काल यानी कि आई मंगल दिन से आरंभ होय वाला महाविष्णु यज्ञ के लऽ कऽ काल्हिखन भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। रंग बिरंगक परिधान में सजल 501 कन्या सिर पर कलश लऽ कऽ यज्ञ स्थल से निकललत। रहुआ, महाराजी, खेसराहा, रोतबा, पिपरा, किशुरिया होइत कमला बलान नदी के भिंडुआ घाट पहुँचलत। ओतः नदी के पवित्र जल मंगल कलश में भर के नगर भ्रमण करैत पुनः यज्ञ मंडल पर स्थापित कैलत। गाजा बाजा के संगे ढोल नगारा और दर्जन घोड़ा के आकर्षक झांकी लोक सब के आकर्षण के केंद्र रहल। जगह जगह ग्रामीण सब श्रद्धालु सब के ऊपर पुष्प वर्षा कऽ के शोभा यात्रा

में शामिल कन्या सबके स्वागत कलथि। समाज कल्याण विभाग के दिस सँ प्रखंड परिसर बेनीपुर में 6 अप्रैल से चल रहल विशेष चश्मा अभियान के अंतिम दिन बहुत रास लोग सब योजना के लाभ उठौलत। अई अभियान में 1400 लोग अपन आँखि के जांच करौलत है, जिनमें से 900 लोग के मुफ्त में चश्मा देल जतन। एखन धरि 554 लोग के चश्मा उपलब्ध करा देल गेलन है और शेष जे लोग सब बचल छथि तिनको शीघ्र उपलब्ध करा देल जतन। अपने सब सुनि रहल छी हालचाल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अपने सब सुन रहल छी हालचाल। कोसी दियारा क्षेत्र के कठडुमर आ घोघसम पंचायत में 19 मई के सहयोग शिविर आयोजित कयल जायत। प्रशासन एहि के लेल तैयारी तेज कऽ देने छथि। सहरसा जिला में चल रहल पांडुलिपि संरक्षण अभियान के अंतर्गत महिषी और कहरा प्रखंड क्षेत्र के पर्री गाम में 150 से 200 वर्ष पुरान पांडुलिपि भेटल अछि। इ पांडुलिपि सब अहाँ के धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अछि। सहरसा सहित समस्तीपुर मंडल में अमृत भारत स्टेशन बिल्डिंग के सफाई के लेल आब हाईटेक मशीन सब के उपयोग कयल जायत। सुपौल में आब मवेशी सब के डिजिटल पहचान बनाओल जायत। राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के अंतर्गत सबटा पालतू पशु के डिजिटल डेटाबेस तैयार हैत। प्रत्येक पशु के 12 अंक के यूनिक आईडी नंबर भेटतन। प्रतापगंज में 19 मई से आयोजित होयवला सहयोग शिविर के लेल प्रखंड प्रशासन सक्रिय भ गेल छथि। 55 कर्मी के विभिन्न विभाग में नियुक्त कयल गेल अछि जे पंचायत स्तर पर लोक सब से समस्या सब के आवेदन संग्रह कऽ रहल छथि। बिहार में गर्मा फसल 2026 के लेल डिजिटल क्रॉप सर्वे के तैयारी तेज कऽ देल गेल अछि। कृषि निदेशालय सबटा जिला कृषि पदाधिकारी सब के सर्वे कार्य पूर्ण करे के निर्देश देने छथि। 11 और आई 12 मई के भूखंड आवंटन हैत और 13 मई से सर्वे शुरू भ जायत। 6 जून तक सर्वे के पूरा कऽ लेबाक अछि। सुपौल जिला में घरेलू LPG गैस सिलेंडर के उपलब्धता में सुधार भ रहल अछि। जिला में आब 51 गैस एजेंसी में लगभग 14,008 सिलेंडर उपलब्ध अछि और 4,349 अतिरिक्त सिलेंडर के आपूर्ति होय के संभावना अछि। मधुबनी में काल्हिखन फार्मर रजिस्ट्रेशन के लेल जागरूकता रथ विदा कयल गेल। DM आनंद शर्मा एकरा हरियर झंडा देखाकर शुरू कयलथि। 12 मई से 30 जून धरि किसान सब के फार्मर ID बनबे के लक्ष्य राखल गेल अछि। सिंघिया प्रखंड क्षेत्र में बेमौसम आंधी तूफान आ वर्षा से रबी फसल के भेल नुकसानक बाद सरकार के दृष्टि से कृषि इनपुट मुआवजा के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन के प्रक्रिया शुरू भऽ गेल अछि। करीब 20,702 किसान मुआवजा के लेल आवेदन देने छथि। बरौनी के सरस्वती विलास संस्कृत महाविद्यालय में उपशास्त्री और शास्त्री 2026 के परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से भेल। ई परीक्षा 16 मई धरि चलत जिसमें 221 परीक्षार्थी भाग लऽ रहल छथि। STET 2025 परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी सबके प्रमाण पत्र वितरण के तिथि आ काउंटरवार सूची जारी कऽ देल गेल अछि। बेगूसराय में प्रमाण पत्र के वितरण 13 से 19 मई धरि BP इंटर स्कूल में कयल जायत। अभ्यर्थी सबके निर्धारित तिथि, काउंटर संख्या और रोल नंबर के अनुसार प्रमाण पत्र देल जतन। कला, संस्कृति आ खेल विभाग से संबंधित योजना आ उपलब्धि सबके समीक्षा के लऽ कऽ शिवहर में कलेक्ट्रेट में DM प्रतिभा रानी के अध्यक्षता में बैसार भेल। बैसार में कला और संस्कृति विभाग द्वारा संचालित योजना सबके समीक्षा कयल गेल। मुबारकपुर और सलखुआ के भोजा भैयार में किसान सब जलजमाव वाला जमीन पर मखाना के खेती शुरू कयलथि। पतरघट में प्रखंड सभागार में काल्हि पंचायत स्तर पर समस्या सबके तुरंत समाधानक लेल बैसार भेल। एहि में 19 मई के विशनपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर के रणनीति बनाओल गेल।

सुपौल सदर अस्पताल में नगर परिषद के खाली जमीन पर मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माणक प्रक्रिया शुरू भ गेल अछि। जयनगर में स्कूल अवधि के बीच कोचिंग संस्थान सबके संचालन पर रोक लगबे के लेल एकटा महत्वपूर्ण बैसार भेल। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर रेल परिचालन के सुचारू बनबे के लेल तकनीकी काज भ रहल अछि। एहि कारणे जोगबनी दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में बदलाव होयत। ई ट्रेन आई यानी कि 12, 13 आ 14 मई के दरभंगा में रुक जायत, दानापुर नहीं जायत। चोरौत के सीएचसी में आग से बचावक लेल स्वास्थ्य कर्मी सब के बीच जन जागरूकता अभियान चलाओल गेल। पुपरी फायर ब्रिगेड टीम आग से बचावे के लेल अग्निशमन यंत्र के सही उपयोग के जानकारी दलत। एहि संग सम्पन्न होइत अछि आजुक हालचाल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: डालते हैं कुछ लोकल अपडेट पर नजर। यदि नगर में सफाई, पेयजल और स्ट्रीट लाइट, मिर्च, पशु आदि से संबंधित शिकायत को लेकर के अगर आप नगर निगम कक्ष में फ़ोन करना चाहते हैं तो जिसका नंबर है 6207-77-74-0 पर शिकायत कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। शहर में बिजली की समस्या होने पर फ्यूज कॉल सेंटर का मोबाइल नंबर है 77-63-81-87-77। दूसरी नंबर है 92-64-45-64-13 पर संपर्क कर सकते हैं। रेलवे की अगर बात करें तो 8:26 पर है नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति। दोपहर 12:33 पर पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस। शाम 7 होगी नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। विमान की बात करें अगर तो 9:30 पर है मुंबई के लिए, 11:33 पर है दिल्ली के लिए, 12:26 पर है कोलकाता के लिए और 12:50 पर दिल्ली के लिए, 1:35 पे मुंबई के लिए जो रोज़ इनका समय है रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, 3 है हैदराबाद के लिए और 4:35 पे हैं दिल्ली के लिए जो ये रोज़ाना जाती है इस समय पे।
2: और गप करी तो आई बहुत रास इलाका में बिजली आपूर्ति बाधित रहत। आई विद्युत शक्ति उपकेंद्र अरवन से निकले वाला 11 KV दुल्लोवाड़ा फीडर में मीटरिंग यूनिट लगवाई और रख रखाव का काज किया जाए। यही कारण 11 KV दुल्लोवाड़ा फीडर से संबंधित क्षेत्र में भोरे 11 से दोपहरिया के 1 धरि बिजली आपूर्ति बाधित रहत और एक अंतर्गत प्रभावित क्षेत्र रहत नाका नंबर 5, मिलान चौक, सासुपन, मुफ्ती मोहल्ला, जेपी चौक, भगवान दास, किला घाट, वाजिदपुर, मधोली सहित आसपास के क्षेत्र सब। और पॉलीमर कल, आज और कल यही विषय पर व्याख्यान है LNMU के रसायन विज्ञान विभाग में भोरे के 11 से। और अखन बदलित मौसम में अगर मौसम के जानकारी के गप करी तो अखन अलर्ट देल गेल है कि अगला 24 में अहाँ के बहुत ठाम बरखा भ सकत है, तेज हवा चले के संग संग आंधी तूफानक रूप लौ सकत है, जे हवा तेज रहत और संगे बिजली चमकई के सेहो संभावना है। तो सावधानी रही और ध्यान राखी और खास कर के अगर मौसम में किछ बिजली चमकैत हुआ और पानी पड़े के बेसी विकराल रूप रहे, आंधी तूफान के रहे, तो गाछ वृक्ष और बिजली के पोल खम्भा सब जो है वही से दूरी बना के राखी, क्योंकि कखन की भ जाए ओकर नहीं कहल जा सकत है। तो सावधानी रहित अपन जिंदगी के आगू बढ़ाबी और कार्यक्रम में हमू सब आगू बढ़े छी।
1: हाँ, आगे बढ़ते हैं। और आपने चर्चा किया था से आप हम लोग मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस
2: निश्चित तौर पर। और अगर चर्चा करिए कर तो संयुक्त राष्ट्र 2020 से सब साल ए दिन मनेने शुरू केने छथि, जैसे दुनिया के मोन पारल जा सके छन कि पौधा स्वस्थ रहत तखने हम अहाँ स्वस्थ रहब। हम अहाँ जे चौर खाए छी, आम खाए छी, एक आम के समय अबे वाला है, और जे कपड़ा पहिरे छी ओ कपास से बनैत अछि, एकर शुरुआत एकटा छोट बीज से।

0: उपतेज। अगर ओ बीज यानी कि ओ पादप अगर बीमार भऽ जायत, मोन खराब भऽ जेतै, ओकर नहि सही रहतै ओ, तऽ हमर अहाँके जे थाली अछि से खाली रहत।
1: बिल्कुल सही है कि प्राकृतिक मानव जीवन के एक सुरक्षित और सुखमय बनाने के लिए अनेक अनमोल उपहार दिया है पेड़ पौधे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि पौधे हमें भोजन, ऑक्सीजन, औषधि, लकड़ी तथा पर्यावरण संतुलन को प्रदान करता है। यदि पृथ्वी पर पौधे न हो तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पौधे के महत्व को समझना तथा उनकी सुझाव के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना के उद्देश्य से ही हर वर्ष 12 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
0: और अगर हम गप करी दरभंगा मधुबनी के किसान भाई सब बुझे छथि कि अगर एक बेर मकई में फॉल आर्मी बम लग जाते है या फिर लीची में फॉल में मक्खी या लग जाते है तो महीना के जो मेहनत है सबटा बेकार भ जाते है। अगर FAO के अगर अनुसार देखी तो हर साल दुनिया में 40% फसल जे से कीट और बीमारी के कारण बर्बाद होते है और ये नुकसान $220 अरब से बेसी के है। मुदा पादप स्वास्थ्य सिर्फ खाली किसान के समस्या नहीं है, हमर अहां सबक समस्या है, क्योंकि अगर पौधा बीमार हुआ लागत तो खाई के कमी है, महंगाई बढ़ जात। अगर बीमार पेड़ ऑक्सीजन देत तो जलवायु से खराब रहत और संक्रमित बीज के खेप अगर पूरा देश में खेती के बर्बाद कर सकते है। कीटनाशक का अंधाधुन इस्तेमाल हमर अहां के स्वास्थ्य के खराब कर रहा है। ते दुआरे जरूरी है कि पादप के स्वास्थ्य पर हम अहां ध्यान दी। स्वच्छ बीज तखने स्वस्थ फसल हैत और जखन अहाँ के फसल स्वस्थ रह तखने हम अहाँ स्वस्थ रह सकै छी। हरदम कहल जाइत अछि ताहि दुआरे कि प्रमाणित बीज सहक किनी। गाँव के अहाँ के आसपास में कृषि विज्ञान केंद्र हैत, ओतय जाके अपन माटि के जाँच कराओ और ओहि हिसाब से अपन किछु गाछ लगाओ तऽ अहाँ के किछु गाछ सेहो स्वस्थ रहत और खर्चा सेहो कम हैत।
1: बिल्कुल सही बात है कि इस दिवस का शुरुआत सिर्फ करना या बोलना नहीं होता, इस पर हम लोग को अमल भी करना होगा। देखते हैं कि पेड़ पौधा का बहुत ज़्यादा कटाई हो जाने के कारण भी हम लोग को कितना समस्या झेलना पड़ता है। अभी कभी बारिश, कभी आंधी, कभी तूफान, इन सब चीज़ों को देखते हुए कि अगर देखें तो हमारे छोटा सा उदाहरण बताते हैं कि अगर हमारे घर के आसपास पहले इतना सारा पेड़ पौधा होता था कि हमारे घर को आंधी तूफान में भी वो रक्षा करता था, हवा आने नहीं देता था, घर को उजड़ने नहीं देता था। लेकिन अभी देखिए, अगर कहीं भी घर है, आंधी तूफान आता है, उसको उजाड़ के चल जाता है। तो है कि हमें पेड़ पौधे का सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि हम लोग आश्रित उसी पे हैं। चाहे वो आप संसार में कहीं भी चले जाइए तो खाने के लिए वही मिलता है अनाज। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा और इन पर ज़्यादा सोचना होगा और पेड़ पौधे पर ज़्यादा ध्यान। आप जितना आप अपने बच्चे पर ध्यान देते हैं, एक वृक्ष भी हमारे लिए एक बेटा के समान होता है। तो उस चीज़ पे हमें अमल करना होगा और उस पे ज़्यादा रखिए, जिससे सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके समाज, पूरे संसार उसी पे आश्रित है।
0: निश्चित तौर पर। और गाछ वृक्ष बाजत नहीं है, इस संकेत देते है। अगर कोनो गाछ के किछ पत्ता जे है से पियर देखा पड़ रहा है, फूल झड़ रहा है या फिर कोनो फल पर अगर देख रहा छी कोनो धब्बा पड़ रहा है, तो ये सब पौधा पेड़ पौधा के दर्द के महसूस करवाक चाहिए। अगर हम अहाँ एकरा बुझि गेलिए तो हम ओ अनाज, ओ फल, ओ फूल के ऑक्सीजन दऽ के ओकरा स्वस्थ कऽ के लौटा सकै छी। और गाछ वृक्ष लग नहीं, ओ हमसब अपना लग कऽ रहल छी, क्योंकि कतौ ने कतौ जरूरी अछि अबैवला समय के लेल और कार्यक्रम में सेहो जरूरी अछि समय के ध्यान रखनाइ। एकरा ध्यान रखैत अपने सबके आओ एकटा गीत सुनबै छी।
1: आइए सुनते इस पैर से गीत को।

0: उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को गाना जरूर पसंद आया होगा।
1: निश्चित तौर पर, और किछ अगर मोन अहाँ के खुशी रहे तैयो गीत अहाँ के खुशी दै छै, और मोन दुखी रहे

0: यो गीत अहाँके किछु ओहि समयमे अहाँके राहत दै छै। तऽ गीत इएह चीज अछि। आओर मोन दुखीके समयमे अगर राहत दैके गप करी तऽ अस्पतालमे हमसभ जाइ छी तऽ नर्स जे छथि से जतेक अहाँके तत्परतासँ कोनो मरीजके सङ्गे रहै छथिन आओर हुनकर हर चीजके ध्यान राखै छथिन, ओ सेवा समर्पण आओर संवेदनाके एकटा प्रतीक अछि। आओर आइ इएहके लेल हमसभ मना रहल छी अन्तर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, यानि कि 12 मईके पूरा दुनियामे अन्तर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाओल जाइत अछि। एहि दिन आधुनिक नर्सिंगके संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेलके जन्मदिन जे छलनि से 1820मे भेल छलनि। एहि दिन ओ सफेद जे वेशधारी योद्धा सबके समर्पित अछि जे बिना कोनो राग लपेटके करुणा आओर कर्तव्यके शक्तिसँ जीवन बचबैमे लागल रहै छथि। कोरोना कालमे हम अहाँ देखने रही कि डॉक्टरके सङ्गे नर्स एकटा एहन शक्ति रहथि जे दिन राति मरीज सबके सेवा केलथि, अपने आपके जोखिममे रहिके मुदा हिम्मत नहि हारलथि।
1: बिल्कुल सही कहा अपने आशीष कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस क्यों मनाते हैं, तो इसका कारण यही है, जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस एक वैश्विक दिवस है जिसका उद्देश्य है नर्सों की योगदान, सेवा और त्याग सम्मान देना है। यह दिन स्वास्थ्य सेवाओं में नर्स की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को उजागर करता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का महत्व आधुनिक नर्सिंग की जनक कहा जाता है। उनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। उन्होंने क्रीमियन बार के दौरान घायल सैनिकों की सेवा की और अस्पतालों में सफाई, पोषण और देखभाल की व्यवस्थाएं की सुधार की, मृत्यु दर की कमी लाई। 1860 में उन्होंने पहली बार नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की। इसके लिए उनको जन्मदिन को एक दिवस के रूप में यानी कि नर्स दिवस के रूप में मनाने लग गया लोग। और इस दिवस का उद्देश्य है कि नर्स के संपन्न और सेवा को सम्मान देना, स्वास्थ्य क्षेत्र में उनकी भूमिकाओं को पहचान देना, लोगों को स्वास्थ्य जागरूक के प्रति प्रेरित करना है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमें यह याद दिलाती है कि नर्स स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है।
0: निश्चित तौर पर हम अहाँ सोचै छी कि नर्स के काज की छन, दवाई देनाय, बेड बदलनाय या डॉक्टर का आदेश माननाय, लेकिन अगर हकीकत में देखी तो ऐसे बहुत बेसी हुनकर काज छन, हुनकर काज बहुत पैघ छन। एकटा नर्स जे होइ छथि से मरीज जे होइत अछि तिनकर पहिल दोस्त होइ छथिन, ओ दर्द के बुझै छथिन, परिवार के ढाढ़स बनबै छथिन आओर सबसे कठिन समय में उम्मीद जगबै छथिन। गाम के सरकारी अस्पताल हुए या दरभंगा के DMCH, नर्से छथि जे 24 घंटा मरीज के संगे ठार रहै छथिन। प्रसव के समय एकटा नर्स के मौजूदगी में माँ और बच्चा दुनू के जीवन रेखा बन जाइत अछि। और बिहार में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र से लऽ कर मेडिकल कॉलेज धरि नर्स रीढ़ के हड्डी छथि। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के ग्रामीण इलाका में ENM और GNM बहिन सब जे छथि से घर घर जाकर टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच, कुपोषण के रोकथाम के काज कऽ रहल छथि। ई चुनौती अछि ग्रामीण इलाका में नर्स सबके लेल, मुदा ओ लागल छथि। एकटा नर्स 50 से 60 मरीज के लग जाय छथिन, हुनकर जांच करै छथिन। ताहि दुआरे हमर अहाँ सबके कर्तव्य बनैत अछि कि नर्स सबके सम्मानजनक जे हिनकर पेशा छनि हुनका सम्मान हम अहाँ सेहो दियनि। आओर ग्रामीण सेवा के खास कऽ के ग्रामीण के जे अहाँ के स्वास्थ्य सेवा अछि तकर रीढ़ के हड्डी छथि सब।
1: बिल्कुल सही कहा अपने कि जब भी देखे तो घर घर जा कर के लोगों को देखती हैं, उनको कब टीका देना है। अगर किसी कोई ऐसे लोग हैं जिनको गर्भावस्था में है, माँ बनने वाली है, समय समय पर उनको टीका दिलवाना, उनको बुला के ले जाना, जरूरत पड़ने पर उन्हें डॉक्टर के पास ले जा करके दिखवाना, चेकअप करवाना, तो इतनी सारा सेवा उनका देन है, उनका सहयोग है कि हम पे है। सच कहें आपने कहा कि एक माँ बेटा का, एक पेशेंट और एक नर्स, मतलब डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर दवा लिख देते हैं, चले जाते हैं वो अपने समय से, पर उनका 24 घंटा देखभाल एक नर्स, थोड़ा उदास होता है तो भी कहता है क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो उनको बताते हैं, तो वो आगे जाके बाद डॉक्टर को पहुंचाते हैं। तो इतना सारा कम्युनिकेशन उनके साथ बन जाता है कि कहीं से फील नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद हम उन्हें अनादर हमें नहीं करना चाहिए।
0: निश्चित तौर पर नर्स दिवस सिखबैत अछि कि आइके दिन हम सब खाली भाषण और हुनकर सबके फूल दैके दिन नै

0: ई दिन हमरा अहाँके याद करबैत अछि कि नर्स सबके सम्मान करी। अस्पतालमे जखन अस्पतालमे लोक जाइते छथि कतौ ने कतौ हुनकर ओहि समयके मानसिक संतुलन जे रहै छनि से लोक सबके बहुत बेसी अहाँके ढगमगायल रहै छनि, कियाकि जे परिस्थिति रहैए ओहिमे कोनो आदमी अहाँके अपन धैर्य खो सकै छथि, मुदा एहनोमे धैर्य राखी नर्स सबसँ गप करैके समयमे, हुनकर काजके कखनो छोट नहि बुझियनि आओर बेटी सबके नर्सिंगमे कैरियर बनबैके लेल प्रोत्साहन सेहो करबाक चाही। आओर गाँव गाममे ANM दीदी सबके अनुसार टीका आओर जाँच जरूर करवायल जाए। नर्सिंग सहीमे अगर देखल जाए तऽ वास्तवमे सेवाके कला अछि। एकटा नर्सके हाथ जखन मरीजके माथपर रहै छनि तो दवाईसँ पहिले ओ स्पर्श पाबिकऽ हुनकर जे दर्द से आधा भऽ जाइ छनि। तऽ हम अहाँ नर्सिंग दिवसपर ई सीख ली कि हमसब नर्सके सम्मान करबनि, हुनकर सुरक्षा सुनिश्चित करबनि आओर स्वास्थ्य व्यवस्थाके मजबूत बनबैमे हुनकर सङ्ग देबनि।
1: बिल्कुल सही है कि हम लोग पहले भी कहें और अभी भी कहते हैं कि सिर्फ हम लोग कागज़ पे या बोल के नहीं बल्कि उस चीज़ पे हमें अमल करना होगा, तभी उस दिवस का मायने रखता है और इसे उजागर भी करना होता है
0: निश्चित तौर पर। और जखन किछु अमल करैके गप भेल तऽ समसामयिक घटनाके सेहो कनि चर्चा कइए ली।
1: हम उस पर भी चर्चा करेंगे आशीष, लेकिन अभी मौसम को देखते हुए कहते हैं कि
0: सबटा चर्चा बेरा बेरी के तो अन्नाइए अछि। आब एक घंटा में किछु काज जे छै से 10 मिनट में पूरा भऽ जायत। ऑटोमेटिक सिस्टम से ट्रेन सबके ब्रेक के जांच कयल जायत आओर विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज निर्माणक काज जे छै काल्हि से शुरू भऽ जायत। आओर अहाँ सबके एकटा खास जे गप अछि, बच्चा सबके मानसिक सेहत अहाँ सबके बाद पैघके जे गार्जियनके से उम्मीद से बिगड़ि रहल छनि, आत्मविश्वास हुनकर सबके तोड़ि रहल छनि, हुनका सबके तैं जरूरी अछि कि खाली जितनाइ नहि हुनका अपनामे सिखबियनि कि अहाँ महत्वपूर्ण छी। ताहि दुआरे एहि सब चीजपर ध्यान रखनाइ जरूरी अछि। आओर ऑनलाइन दवाई जे आबि रहल अछि तकर खिलाफ केमिस्ट सब 20 तारीखके अहाँके देश भरिमे अपन दोकान बंद रखतथि आओर अंचल ब्लॉक थाना सबके मनमानी पर लगाम लगबैके लेल CCTV से बिहारमे आब निगरानी कयल जायत। आओर 30 दिनमे अगर कोनो काज नहि निपटायल जाइत अछि, कोनो फाइल नहि खत्म होइत अछि ओकर काज, तऽ 31 दिन ओ अहाँके अफसर सस्पेंड भऽ जतथि। तऽ ई अहाँके बिहारमे आब नया लागू भऽ रहल अछि। आओर हाईकोर्टसँ निचला कोर्टसँ लऽ कऽ केस ऊपर हाईकोर्टसँ लऽ कऽ निचला कोर्ट तकके सबटा जे अछि केसके डाटा आब एक क्लिक पर लोक सबके उपलब्ध भऽ जेतनि। तऽ समसामयिक घटनाके हमसब चर्चा करैत रही। आओर जेना मनोज कहलथि कि एखन जे मौसम सेहो बदलि रहल अछि, तऽ मौसममे एखन हीट वेव से कतौ ने कतौ हमरा अहाँके बचि कऽ रहबाक समय अछि, कियाकि एखुनका मौसम तुरन्तमे ठण्डा होइए, आइए जेना मौसमके अलर्ट कयल गेल आओर फेर तुरन्तमे गर्मी भऽ जायत, तऽ एहि समयमे हीट वेव बेसी चलैत अछि। तऽ ओहिसँ हम अहाँ सुरक्षित रही आओर खान पानके सङ्गे अपन स्वास्थ्यके सेहो ध्यान राखी। ओना एखन हमसब ध्यान राखब कि कार्यक्रममे समय आब हमरा सबके बहुत कम बचि गेल, तऽ पहिले किया ने अपने सबके ई गीत सुनबै छी।

0: उम्मीद करते हैं श्रोताओं को ये गाना जरूर पसंद आया होगा।
1: तो निश्चित तौर पर आप समय जे हमरा सबके विदा लेके लेल कहि रहल अछि, तऽ हमरा आशीष के
0: और मनोज को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी। एक ही क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।

0: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
1: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
0: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
2: तुम नाचो रस बरसी,
0: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।

0: गाम घर संध्या 6:30 पर।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता

और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। माननीय

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
3: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग

0: जीतने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी टी20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
2: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई टी20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। हालांकि आईसीसी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने बीसीबी को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने ये भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality Recruitment Scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel. Stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis, Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's

0: आज जुमे से मुत्तहिदा अरब इमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। ये दौरा हाल ही में तय पाने वाले भारत यूरोप यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे FTA के तनाजुर में यूरोप के साथ खासतौर पर तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में भारत की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में है और बमुश्किल कायम की है। जनाब ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब ट्रंप महीनों तवील जंग के खात्मे के ईरान के तजवीज को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार देकर मुस्तरद कर चुके हैं। ईरान के साथ जंगबंदी की तजवीज को मुस्तरद किए जाने के जिम्न में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों को बताया कि जंगबंदी इंतहाई नाजुक सूरतेहाल का शिकार है। सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से भेजी गई तजवीज को रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल करार दिया। व्हाइट हाउस में जच्चा की सेहत देखभाल से मुतालिक तकरीब में ट्रंप ने शुरका से कहा कि वो अपनी बातों को मुख्तसर करें क्योंकि उन्हें ईरान के मामले पर जनरलों के बड़े ग्रुप से तबादले ख्याल करना है। सदर ट्रंप को इतवार के रोज ईरानी तजवीज मौसूल हुई जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुए जंग के खात्मे का कोई रास्ता निकल आएगा। इस जंग से तेल की आलमी सप्लाई के अहम समुद्री रास्ते मसदूद हो गए हैं जिसके नतीजे में कई मुल्कों में तेल की किल्लत पैदा हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ जंगबंदी को इंतहाई नाजुक करार देने के बाद तेल के बाजार लड़खड़ा गए हैं और भारतीय कशीदगी में इजाफा हो गया। जनाब ट्रंप की जानिब से इस तबसरे के बाद जंगबंदी के बरकरार रहने से मुतालिक ताजा खदशात में इजाफा हो गया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी अमन तजावीज पर अपना जवाब भेजा जिसमें सभी महाजों पर मुखासमत के खात्मे, अमरीकी पाबंदियां हटाने, ईरान के मुंजमद असासे जारी करने, अमरीका की बहरी नाकाबंदी खत्म करने और आबनाए हुरमुज पर ईरान के इंतजाम को तस्लीम करने की बात कही गई थी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: ईरान के मुतालबात बुनियादी तौर पर फौरी न्यूक्लियाई रियायतों की बजाय जंग के हालात और इक्तसादी सूरतेहाल पर मबनी है जिसे वॉशिंगटन इस मरहले पर कबूल करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। दोनों फरीकों के दरमियान काफी दूरी है और मसालेहतकार मुश्तरक हल ढूंढने में जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं क्योंकि पूरे मगरबी एशिया में जंग का दबाव और इक्तसादी दबाव बढ़ता जा रहा है। इस दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात में हुकूमत कौमी बुनियादी ढांचे पर हमले के जवाब को कतई शक्ल दे रही है। हुकाम ने 2800 से ज्यादा ड्रोन्स और मिजाइल हमलों के जरिए अमारती हदूद में हुए नुकसान को दर्ज करने के लिए कौमी कमेटी तश्कील दी है। मुत्तहिदा अरब इमारात अपनी अहम तंसीबात और तवानाई के मराकज पर हमलों के जवाब में बैनुल अक्वामी कानूनी जवाबदेही तय करने और हर्जाना हासिल करने की कोशिश कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: भारतीय बहरिया के नामजद सरबराह वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि मुल्क सरहद पार से होने वाली किसी भी जसारत से निमटने और उसका कलाकमा करने के लिए तैयार है। मगरबी बहरी कमान के कमांडिंग इन चीफ फ्लेग ऑफिसर जनाब स्वामीनाथन ने कहा कि भारत कई सालों तक दहशतगर्दी से मुतासिर रहा है और वह मुल्क में बिलखसूस बैरूनी सरजमीन से की जा रही दहशतगर्दी को कबूल नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन दहशतगर्दों और दहशतगर्द कैंपों को खासतौर पर निशाना बनाया गया जिन्होंने साल 2025 में पहलगाम वाकये को अंजाम दिया था। जनाब स्वामीनाथन पाकिस्तानी दिफाई अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तबसरों से मुतालिक रिपोर्ट पर रायजनी कर रहे थे जिसमें आसिम मुनीर ने कहा था कि इस्लामाबाद के खिलाफ मुस्तकबिल में किसी भी तरह की मुहिमजोई का नतीजा इंतहाई खतरनाक और वसीतर होगा। जम्मू कश्मीर में हुकाम ने जरूरी इजाजत नामे हासिल किए बगैर काम करने की पादाश में बाइक और कैब खिदमात फराहम करने वाली कंपनी रैपिडो पर पाबंदी लगा दी है। जम्मू के RTO जसमीत सिंह ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि रैपिडो कंपनी एग्रीगेटर सर्टिफिकेट के बगैर काम कर रही थी जिससे मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में उसकी खिदमात गैरकानूनी हो गई है। कानून की वजारत आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर के ब्लॉकों की नीलामी का दूसरा मरहला शुरू करने जा रहा है। दूसरे मरहले के तहत वजारत जम्मू और कश्मीर हुकूमत के टाउन से नीलामी के लिए 12 चूना पत्थर के ब्लॉक्स

0: पेश कर रहा है। ये ब्लॉक अनंतनाग, राजौरी और पुंछ अजला में वाकई हैं और इनमें नए शिनाख्तशुदा ब्लॉक्स के साथ साथ दूसरी कोशिश के साथ दोबारा नीलामी किए जाने वाले दोनों ब्लॉक्स शामिल हैं, जो वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल और सनअत की मुस्तकिल शिरकत के तहत हुकूमत के अज़्म की अक्कासी करते हैं। बांग्लादेश में भारत में मुनाक़िदा मर्दों के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहात जानने के लिए एक तीन रुकनी तहकीकती कमेटी तश्कील दी है। 10 मई के सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक साबिक एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर AKM वलीउल्लाह और इस कमेटी की सरबराही करेंगे, जबकि बांग्लादेश के साबिक कप्तान और मौजूदा चीफ सेलेक्टर हबीबुल बशर और सुप्रीम कोर्ट के वकील फैसल दस्तगीर कमेटी के अरकान में शामिल हैं। कमेटी को हिदायत दी गई है कि वो 15 काम के दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
1: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम मोदी के गुजरात दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम ने सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनाक़िदा सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की अटूट श्रद्धा की अलामत है और ये मंदिर हजारों बरसों से तहरीक का सरचश्मा रहा है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है कि मुल्क में हर तरह के ईंधन और तवानाई का वाफिर जखीरा मौजूद है, हुकूमत का बयान। इसी अखबार ने एक और अहम सुर्खी लगाई है, हुकूमत ने कहा कि VVG रामजी एक्ट मुल भर के देही इलाकों में 1 जुलाई से नाफिज होगा।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के पेश नजर आवाम से जर मुबादला बचाने के लिए ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्वा सरमा आज गुवाहाटी में आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। ईडी ने जनूबी दमदम म्यूनिसपलिटी भर्ती घोटाला मामले में मगरबी बंगाल के साबिक वजीर सुजीत बसु को गिरफ्तार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली के 6 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई कमजोर हालत में है और बमुश्किल कायम है। और बांग्लादेश ने भारत में मुनाक़िदा मर्दों के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहात जानने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर।

0: हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। विधान परिषद की भोजपुर बक्सर सीट के उपचुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। 6,000 से अधिक मतदाता 6 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का करेंगे फैसला। प्रदेश में फॉर्मर आईडी बनाने के लिए आज से 30 जून तक चलेगा विशेष अभियान। और मौसम विभाग ने आज पटना समेत प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी भागों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: इधर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के संदेश को अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार समेत देश के सभी नागरिकों को संसाधनों का संयमित और जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक संतुलन, ऊर्जा संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत आधार मिलेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फल स्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंटरी मेंटेन है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही है, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंध किया गया है। अमरीका और

0: ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तेल बाजार में उथल पुथल और कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच लागू युद्ध विराम बेहद मुश्किल स्थिति में है, जिससे स्थायी शांति की उम्मीदों पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले ईरान ने अमरीका की शांति प्रस्तावों पर अपनी प्रतिक्रिया भेजी थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की शर्तों को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्यकर जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतदान के लिए दोनों जिलों में 25 बूथ बनाए गए हैं। इनमें भोजपुर में 14 और बक्सर में 11 बूथ हैं। उपचुनाव में 6,000 से अधिक मतदाता 6 प्रत्याशी की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। प्रत्याशियों में जदयू के कन्हैया प्रसाद, राजद के सोनू कुमार के साथ 4 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। मतों की गणना 14 मई को आरा में की जाएगी। ये सीट पूर्व MLC राधाचरण साह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई थी। प्रदेश में किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने के लिए आज से विशेष अभियान शुरू हो रहा है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अभियान 30 जून तक चलेगा। श्री सिन्हा ने कहा कि किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने के लिए यह अभियान फिर से शुरू हो रहा है। कृषि विभाग के अनुसार फार्मर ID बनाने के लिए किसानों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और स्वयं के नाम से दर्ज जमाबंदी की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा नजदीकी सामान्य सेवा के लिए या पंचायत के कृषि समन्वय से संपर्क कर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक 47,85,000 से अधिक किसानों की फार्मर ID बनाई जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्वा सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में इसका नेतृत्व करेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। देश भर में इस वर्ष 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम देश में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का

0: उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गाँव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने आज पटना समेत प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है।
2: दिनांक 12 मई राज्य के उत्तरी भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिणी भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में वृद्धि हुई है। इस अवधि में कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET में पहली बार मैथिली भाषा को भी शामिल किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 6 सितम्बर को होने वाली परीक्षा के 22वें संस्करण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जून है। इन रिक्तियों में मैथिली भाषा के लिए कोड 25 अंकित किया गया है। निगरानी विभाग ने वैशाली जिले के लालगंज अंचल में तैनात अमीन सुजीत कुमार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अमीन जमीन की मापी और परिमार्जन के लिए रिश्वत ले रहा था। इधर निगरानी की टीम ने सीतामढ़ी जिले में पुपरी अंचल निरीक्षक कार्यालय के रीडर गोविंद कुमार चौधरी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी एक कांड में नाबालिग का नाम हटाने के एवज में रिश्वत ले रहा था। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पिए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में पुलिस ने बक्सर से 2 समेत 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस मामले में बक्सर के विशाल श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया था। मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लोक जनशक्ति पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को जमानत दे दी है। मुजफ्फरपुर के बालगृह से 10 बच्चे के फरार होने के मामले में अनुमंडल पदाधिकारी तुषार कुमार ने जिले के नरौली स्थित बाल आश्रय गृह का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा गार्ड की लापरवाही का उजागर हुआ है। प्रशासन ने बच्चों की जल्द बरामदगी का दावा किया है। राजधानी पटना में 5 जुलाई से इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग T10 का आयोजन किया जाएगा। खेल एवं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह और सांसद मनोज तिवारी ने कल के ऊर्जा स्टेडियम में इस लीग के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया। इस अवसर पर लीग के ब्रांड एम्बेसडर श्री तिवारी ने कहा कि इसके लिए 31 मई तक खिलाड़ियों का पंजीकरण होगा। वहीं 1 जून से 20 जून तक जिला स्तर पर खिलाड़ियों का ट्रायल लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 28 जून को खिलाड़ियों की नीलामी होगी। छत्तीसगढ़ में आयोजित अंडर 20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में ग्रुप ए के मैच में बिहार ने आंध्र प्रदेश को 4-1 से पराजित किया है। इस मैच में बिहार की ओर से कप्तान मोहम्मद नसीम खान ने 2, निखिल कुमार और विजयन कुमार ने 1-1 गोल किया। बिहार का अगला मैच 15 मई को राजस्थान से होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में दूसरी बार चिताया, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में एक। अखबार लिखता है, सरकार बोली घबराए नहीं, पेट्रोल डीजल की कमी नहीं। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखता है, 30 दिन में समाधान नहीं तो अफसर स्वतः निलंबित।

दैनिक जागरण लिखता है आज जारी हो सकता है सीबीएसई 12वीं का परिणाम। प्रभात खबर ने सुप्रीम कोर्ट की डिजिटल पहल से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है सीजेआई सूर्यकांत ने लॉन्च किया वन केस वन डेटा सिस्टम, एक क्लिक पर मिलेगा केस का हाई कोर्ट से निचले कोर्ट तक का डेटा। आज अखबार का शीर्षक है खत्म किया गया निगरानी, अन्वेषण ब्यूरो का अलग कैडर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। विधान परिषद की भोजपुर बक्सर सीट के उपचुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। 6000 से अधिक मतदाता 6 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का करेंगे फैसला। प्रदेश में फॉर्मर आईडी बनाने के लिए आज से 30 जून तक चलेगा विशेष अभियान। और मौसम विभाग ने आज पटना समेत प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी भागों में आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानी हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
6: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी। एक कई क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं। सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
1: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
2: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं। प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: गाम घर संध्या 6:30 पर।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

संदोज होंगे चंद गज़लों से। तो ये हमारे आज के नशरियात की तफसील थी। आइए अब किसी भी ताखीर को किए बगैर हम आगाज़ किए देते हैं इस गज़ल के साथ। आवाज़ शिशिर पारखी की है।

0: जो कीमती शय है वो हमारी ज़िंदगी है और इसकी हिफाजत हम तमाम के ऊपर फ़र्ज़ भी है। लिहाजा हम सड़क पे चलते हुए इस बात का ख़ासा ख्याल रखें कि हमारी सवारी के साथ किसी दूसरी सवारी का कोई तसादुम ना हो, कोई टकराव ना हो, और किसी दूसरे सवारी का हमारी सवारी के साथ भी कोई टकराव मुमकिन ना हो। यानी हम तमाम लोग जो सड़क पे चलते हैं वो अपनी अपनी जानों की, अपने अपने सवारियों की हिफाजत अगर करें तो इस तरह के हादसात टाले जा सकते हैं। सबसे शदीद तकलीफ़ दे बात होती है कि सड़क पे इंसान जब इन हादसों से दोचार होता है तो बहुत अजियत उसे होती है और वो जा बहक हो जाता है, यानी उसकी जान चली जाती है। और इन तादादों की जानिब अगर हम गौर करें तो ये हमें यकीनन डराने वाले हैं। लिहाजा सबसे अहम बात हमारा मंजिल मकसूद पे पहुंचना ज़रूरी है, लेकिन उन तमाम तर ज़रूरियात से अवलीन तरजीह हमें हिफाजत को देना चाहिए। और इस सड़क के हिफाजत का जो आलमी हफ्ता है, इसमें आइए हम तमाम लोग इस बात का अहद करें कि अपनी हिफाजत के साथ अपने मंजिल मकसूद की जानिब जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी सबसे प्यारी और सबसे कीमती है और इसकी हिफाजत हम तमाम के ऊपर लाजमी है। आइए सामीन, इसके बाद हम अपने अगले पेशकश की जानिब आपसे मुतवज्जे हुए चाहते हैं। लीजिए, आपकी समातों के हवाले किए दे रहे हैं, ये मुज़ाकरा मुलाहिज़ा करें।
1: पद्मश्री कलीमा जिस की हिमागीर शख्सियत शोराए गज़ल के दरमियान एक बुलंद मुकाम की हामिल है। उनके मखसूस अंदाज बयान की इनफरादियत, नगमगी, दर्द व अलम का अक्स, गमे जाना को गमे दौरा के बतौर पेश करने का हुस्न दिगर तमाम शोरा की सफ़ों में भी उन्हें मुमताज़ करती है। रघुपति सहाय फ़िराक गोरखपुरी ने कुल्लियात कलीम आजिज़ में ए अहले अदब आओ ये जागीर संभालो के उनवान से एक मज़मून कलमबंद कराया है। इसमें कलीम आजिज़ की शायरी के मुतालिक बयान फरमाते हैं कि इतनी धुली हुई ज़ुबान, ये घुलावट, लबो लहजे का ये जादू जो सिर्फ़ इंतहाई खलूस से पैदा होता है, इससे पहले मुझे कभी इस मौजूदा सदी में देखने या सुनने को नहीं मिला। मैं उनका कलाम सुनकर खुद अपना कलाम भूल गया। इससे हमें कलीम आजिज़ की शायरी को समझने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। खुद कलीम आजिज़ का ये शेर, ये तर्ज़ ख़ास है कोई कहाँ से लाएगा, जो हम कहेंगे किसी से कहा न जाएगा। या फिर ये शेर, तुझे संग दिल ये पता है क्या कि दुखे दिलों की सदा है क्या, कभी चोट तूने भी खाई है, कभी तेरा दिल भी दुखा है क्या। इस तरह की शायरी से कलीम आजिज़ लोगों को न ये के मुतवज्जा करते हैं बल्कि अपनी जानिब खींच लेते हैं। उनकी शायरी और उनके अंदाज बयान की नुदरत के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। तो मौजूद सामईन, इसी नायाब व नादिर शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर मज़ीद इनकशाफात की गर्ज से हमने अपने स्टूडियो में आज एक मुज़ाकरा मुनक्किद किया है जिसका उन्वान है पद्मश्री कलीम आजिज़ की शायरी और नसर में उनका रंगो आहंग। इसके लिए हमने जिन शख्सियात को यहाँ मदऊ किया है वो आसमान उर्दू अदब के दरख्शां सितारे हैं और अपनी इल्मी अदबी कारकिर्दगी के बास अदब के दामन को मालामाल कर रहे हैं। आपको इनसे मुतारफ करवा दें, ये हैं जनाब प्रोफेसर हामिद अली खां। आपका ताल्लुक बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी से है, फिलवक्त वहाँ आप प्रोफेसर के ओहदे पर फायज हैं। दूसरी अहम शख्सियत जनाब सूरजदेव सिंह की है, आपका ताल्लुक पटना यूनिवर्सिटी से है, आप वहाँ सदर शोबा उर्दू हैं। सबसे पहले तो हम आप दोनों का अपने स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं।
2: बहुत शुक्रिया जनाब।
3: शुक्रिया।
1: और इस मुजाकरे में आपकी आमद का खैर मकदम करते हैं।
2: शुक्रिया
1: जनाब सूरजदेव साहब, हम आपकी जानिब मुखातिब हैं। अपने सामीन की खातिर आपसे ये जानना चाहते हैं कि कलीम आजिज़ की उमूमी शख्सियत के मुख्तलिफ अदबी गोशों की निशानदेही फरमाएं।
4: पद्मश्री कलीम आजिज़ साहब के मुतालिक आज हम लोग गुफ्तगू करने बैठे हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी पैदाइश जो कस्बा है तिलहारा कस्बा में हुआ, और जाहिर सी बात है तिलहारा की जो शिनाख्त है, जो पहचान है बुद्ध मज़हब के ताल्लुक

0: से हिस्टोरिकल पॉइंट तारीखी नुक्ता नज़र से भी बेहद अहम रहा है। ऐसे मकाम से आपका सरोकार रहा है और आप शायरी का मैदान हो या अदब का मैदान हो, अपना एक अलग मकाम इन्होंने बनाया। इनके मुतालिक ये कहा जाता है कि आप दबिस्ताने अजीमाबाद के मीर तकी मीर की हैसियत रखते हैं और वही रंग मीर तकी मीर का जो अंदाज है, रंग है, लबो लहजा है, वो तमाम चीज़ें आपकी शायरी में, आपकी जो नसरी तहरीरें हैं, नज़में हैं, उन तमाम चीज़ों में मीर का रंग हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो उनकी अपनी एक शिनाख्त है, अपनी पहचान है, दामन पे कोई छीट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, तो ये इस बेबाकी के साथ जो है इस बात को कह जाना, हिम्मत और हौसले की बात, तो ये उनका अपना एक अंदाज था, उनकी अपनी एक शख्सियत थी।
1: जनाब हामिद अली खान साहब, अगर आप सूरजदेव सिंह की बातों में मज़ीद इजाफे की गुंजाइश पाते हैं तो इस मौजू पर अपनी राय का इजहार करें।
2: देखिए जनाबे वाला, पद्मश्री कली माजिद की शख्सियत हस्त पहलू रही है। आपको मालूम होगा कि उन्होंने पटना ज़िला उस ज़माने में था, मौजूदा वो नालंदा ज़िला का हिस्सा है तेल्हाड़ा, जहां उन्होंने 1924 में चश्मे वजूद खोली। हज़ारीबाग में 15 फरवरी को उन्होंने महबूब हकीकी से जा मिलने का हौसला जमा किया। इस तरह तकरीबन उन्होंने 91 साल की उम्र पाई
1: जी,
2: और उनकी खिदमात का जब आप एतराफ़ करने बैठेंगे और उसका इजमाली जायज़ा लेने बैठेंगे तो आपको ऐसा अंदाज़ा होगा कि तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद उनके अंदर फनपारों की तख्लीक का जो मलका था, उस पर उन्होंने कारी को ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि कली माजिद शायर बड़े हैं या नसर निगार बड़े हैं। अब हमारे असनाफ नसर के दो हिस्से हैं, एक अफसानवी और एक गैर अफसानवी। तो शायरी को उनके अलग करके अगर गैर अफसानवी नसर की तरफ आप जाएं तो गैर अफसानवी नसर के खाके में जितनी भी असनाफ अदब है हर पे कली माजिद को एक मलका हासिल है। खुद नविश्त उनकी दो अदद हैं और उनकी खुद नविश्त को अगर आप सामने रखें तो गज़ल और या आप अपने उनके तारुफी कलमात के दौरान जहाँ जहाँ उनका मीर से रिश्ता जोड़ रहे हैं, तो मैं तमाम कारीन से ये गुजारिश करूँगा कि पहले आप जिक्र मीर को पढ़िए, फिर आप उनकी खुद नविश्त को पढ़िए जहाँ खुशबू ही खुशबू थी
1: जी,
2: आपको ममासलत साफ दिखाई देगी। हर चंद के जिक्र मीर बज़ुबान फारसी है, मौलवी अब्दुल हक ने उसका उर्दू तर्जमा भी किया है जो कौमी उर्दू कौंसिल से शाये हुई है। फिर आप चले तो उन्होंने सफ़रनामे भी लिखे और आम कारीन के सामने सिर्फ उनके दो सफरनामे हैं, एक देश एक विदेशी
1: जी जी,
2: ये 1960 से 1962 के दौरान किस्तवार सुबह 9 में शाये हुआ गया। फिर उन्होंने हज के सफरनामे लिखे, उन्होंने जद्दा के सफरनामे लिखे, ये मुख्तसर सफरनामे भी हैं जो उनके मजामीन के मजमुए में शामिल है। अगर आप सही तौर से उसका तजिया कीजिएगा तो उनके सफरनामों की तादाद 8 पहुंचती है मेरी दानिश में, आई मे एंड मे नॉट बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ। फिर मकतूब निगारी का फन है तो वहां भी उनके मकातिब के दो मजमुए मिलते हैं। आप तहकीक में चले जाइए तो उनके पीएचडी का मकाला, जो उनके उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अख्तर उरैनवी के तहकीकी मकाले को वसत देता हुआ नजर आ रहा है, यानी प्रोफेसर अख्तर उरैनवी ने बिहार में उर्दू शायरी का इर्तका 1857 तक का तजिया किया था, वो किताब शाये हो चुकी है, लेकिन कली माजिद जब उनकी निगरानी में पीएचडी करने जाते हैं तो उर्दू शायरी का इर्तका 1857 से 1914 तक आते हैं। जब नसर की दूसरी मैदान में देखेंगे आप तो उनके यहाँ आपको खाकों की झलकियाँ भी मिलती हैं, तासुराती मजामीन भी मिलते हैं, तहकीकी मजामीन भी मिलते हैं और अपनी तहकीक तनकीद और तख्लीकी हिकमत अमली पर खुद ये कहते हैं कि कोई भी फन पारा तहकीक और तनकीद के बगैर वजूद में नहीं आता
1: जी।
2: डॉक्टर सूरजदेव साहब ने उनके कुछ अशार लिखे, आप देखिए कि वहां तनकीद का पहलू है या नहीं है, और अगर तनकीद का पहलू है तो फिर तहकीक कहां तक पहुंचती है। और एक बड़ी बात जो कलीम आजिज़ की यहां मुझे दिखाई देती है, वो कलीम आजिज़

0: किसी भी लफ्ज को लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं। अल्फाज भी हमारी तरह हमारे इस्तेमाल के मुंतजर हैं और उस तरह से वो अपने अंदर एक जहान मानी को पैवस्त कर लेते हैं। और सच्चा फनपारा वही है जिसकी फी जमाना तफहीम की जाती रहे। और मुझे यकीन है कि कलीम आजिज के जितने भी अदबी कारनामे हैं, ख्वा वो नसरी हो या कि शेरी, उसकी फी जमाना तफहीम होती रहेगी।
1: हामिद साहब, आपने उन पहलुओं से भी आम कारी को रोशनास कराया जिनकी जानिब अक्सर व बेशतर निगाह कम जाती है। हामिद साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आम तौर से कारी के जहन में एक सवाल ये भी उठता है कि कलीम अहमद नसर निगार बेहतर है या शायर।
0: देखिए, आपका ये सवाल जहाने मानी रखता है और इसे किसी मुजाकरे में हम हल नहीं कर सकते। ये सही है कि बुनियादी तौर पर कलीम आजिज शायर है और उनके अंदर जो एहसासात का उमंडता हुआ तूफान है उसके बयान में अपने सामे और कारी के सामने उसकी वजाहत के लिए उन्होंने नसर की जितनी असनाफ हो सकती थी समझाने की एक उस्ताद की हैसियत से कोशिश करी। अब इस कोशिश में वो कहां तक कामयाब हुए हैं वो अलग अलग सिंफ के हिसाब से ही हम गुफ्तगू कर सकते हैं। मसलन, जब आप उनकी खुद नविश्त का मुतालिया करने लगे और अहद मीर के साथ साथ अहद कलीम को देखें और फिर उसलूब मीर के साथ उसलूब कलीम का मुतालिया करें तो ये लगता है कि शायद वो मुकम्मल खुद नविश्त निगार है। उसी तरह जब आप सफरनामे का मुतालिया करें तो आप जो सफरनामा एक ऐसी सिंफ अदब है जिसके अंदर कसीदे की तरह भी एक मकसद छुपा रहता है। अगर मैं आज आपके सामने कलीम आजिज पे गुफ्तगू करने आया तो मेरा एक मकसद घर से चलने का है कि मैं कलीम आजिज पे गुफ्तगू के लिए जा रहा हूँ आपकी दावत पे। उसी तरह से जब मैं सफरनामे पे सफर पे अपने निकलता हूँ और मेरा सफर है इल्मी दरसगाहों का मुआयना करना तो मैं अपने सफरनामों में सिर्फ उसी इरादे को बयान करता हूँ मुख्तलिफ पीराए में। कलीम आजिज पहला सफर करते हैं अपने छोटे भाई जो अचानक किसी अहम शख्सियत से मिलने के लिए पटना से गायब होते हैं और वो लाहौर पहुंचते हैं और कलीम आजिज बेचैनी के आलम में लाहौर पहुंच रहे हैं अपने छोटे भाई नसीम अहमद नसीम को तलाश करने, तो उस वक्त उनकी बेचैनी का आलम है। वो आपको उनकी वो एहसासात और उनके उस कर्ब को आप देख सकते हैं। लेकिन जब वो हज बैतुल्लाह के लिए निकल रहे हैं तो उनके सामने एक ही चीज़ है कि मुझे महबूब इलाही से मुलाकात का शर्फ किन किन रास्तों से हो सकता है, तो सिर्फ वो उसी को बयान करते हैं और उसमें इबादात का जिक्र करते हैं। तो उनके यहाँ इतना तनव्वु आपको मिलेगा कि हर मौजू पर अलग से गुफ्तगू करने के लिए एक दफ्तर दरकार है। लेकिन जहां तक उनकी शायरी का मसला है तो यकीनन उनकी शायरी उस शेरी अदब के उस मेराज को पहुंचती है जहां क्लासिकी शायरी को कामलियत का नाम दिया जा सकता है। कलीम आजिज ने अपनी नसरी तहरीरों में बेतकान इस बात से इनकार किया है कि मैं मीर कासानी नहीं हूं। लेकिन आप जब उनका मजमूए कलाम जब फसले बहारा आई है का मुतायला करें तो उनकी 10 गजलों में मुसलसल मीर को बांधा गया है, कहीं एक शेर में कहीं दो शेर में, हत्ता के चार चार अशार में उन्होंने मीर के असरात को मुकर्रर से कर्रर इस्तेमाल किया है और अपने कलाम में मीर के अंदाज का इकरार भी किया है।
1: पसे पर्दा आपने इस बात की बेहतरीन तौर पर वजाहत की कि किसी भी अदीब को किसी खास सांचे में ढालना कतई मुमकिन नहीं है, ये हम कारी के ऊपर छोड़ते हैं। जनाब सूरजदेव साहब, हामिद साहब की बात से आप किस हद तक मुत्तफिक हैं?
2: देखिए, पद्मश्री कलीम आजिज के हवाले से डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से एक एक पहलू, एक एक जो गोशा है उनके उनकी शायरी का, उनके अदबी जो सफ़र है उसका एक एक पहलू को आपने बड़ी बारीकी के साथ सामईन के सामने रखने की कोशिश की है। और कोई भी ऐसी बात आपने ऐसी नहीं कही जो कलीम आजिज के हवाले से हम नहीं कह सकते हैं, चाहे उनके सफ़रनामे की बात हो या उनकी नज़मों की बात हो, उनकी गज़लों की बात हो।

अभी आप सुन रहे थे सामीन पंकज उदास की आवाज़ में गज़ल, और अगली गज़ल जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भूपेंद्र और मिताली सिंह की आवाज़ में है। लीजिए आपके समातों के हवाले।

0: सामिन भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में पेश इस गज़ल के साथ हमारा सफ़र यहीं तमाम हुआ, कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आनंद लीजिए फिल्म संगीत का।

अलका याग्निक और विनोद राठौर को भी आप सुन रहे हैं फिल्म दीवाना में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का।

0: आशा भोसले और उदित नारायण को सुनिए। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत निर्देशन जतिन ललित का। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था।
1: और वो पूरा नहीं होता, इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई, अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको लता मंगेशकर के स्वर में, जिसे लिखा है हजरत अमीर खुसरो ने और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का। फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरे आंगन की।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको फिल्म खूबसूरत से कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। गीतकार हैं संजय छैल और संगीतकार अरुण पौडवाल।

अरिजीत सिंह और निकिता गांधी के गाए फिल्म केदारनाथ के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है बज्जी का कार्यक्रम अंगना।

अंगना सुने वाला सब श्रोता के हम गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव प्रणाम करत हती। अपने सबके बज्जिका के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। पर्यावरण के हमर जीवन में बड़ा महत्व है। हमर सबके जीवन में स्वच्छ हवा, अनुकूल वातावरण, ये सब बड़ा मायने रखैया, जे पर्यावरण के संतुलन से भेटैया। गाछ वृक्ष नदी पहाड़ पर्यावरण के मुख्य अंग है, जेकर रक्षा से

0: पर्यावरण के रक्षा होइया। एकर रक्षा के लेल हमरा सबके हरियर हरियर पेड़ के कटाई के रोके के होत। पहाड़ नदी के दोहन, कल कारखाना आ मोटर गाड़ी आदि से निकले वाला धुआं के केना रोकल जाए, ऐ पर सकारात्मक पहल करे के होत। इतने नहीं, गंदगी के अंबार आ जहां तहां मृत जानवर के फेंके से भी पर्यावरण के नुकसान होइया, ऐ पर भी ध्यान देवे के होत। यदि ये सब करेत हती त पर्यावरण निम्मन रहत, मुस्कुरात रहत। पर्यावरण के बारे में एगो छात्रा के की कहना है, आओ सुनित हती।
1: पर्यावरण के संरक्षण के मतलब है अपना जीवन का संरक्षण करना। पर्यावरण के अस्तित्व के बनाए रखे के लेल सबसे ज्यादा जरूरी है प्रदूषण के रोकना। आज सड़क पर दिन रात खूब गाड़ी दौड़ रहल है, चल रहल है। एकर धुआं से पर्यावरण के खूब नुकसान होइया। जहां तहां कूड़ा कचरा से वातावरण प्रदूषित होइया। पर्यावरण के बचावे के लेल एकरा रोकना बहुत जरूरी है। साथ ही जरूरी है हरा भरा गाछ के कटाई के रोकना। कई लोग ऐसन है कि जरूरत पड़ला पर हरा भरा पेड़ काटे में तनको न हिचकिया, जैसे पर्यावरण के दिन प्रतिदिन नुकसान हो रहल है। हरा भरा पेड़ कभी नहीं काटे के चाही, बल्कि जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक पेड़ लगावे के चाही, तभी पर्यावरण के रक्षा हो। पर्यावरण के रक्षा करना कोनो एक आदमी के काम नहीं है, एकरा लेल सबके आगे आवे के हो। एक दूसरा के पर्यावरण संरक्षण के लेल साथ देवे के हो। गंदगी और प्रदूषण फैलावे वाला आदमी के टोके के पड़त, रोके के पड़त। आज जे स्वच्छता अभियान चल रहल है, ई पर्यावरण के लेल काफी लाभदायक है। पर्यावरण के संरक्षण के लेल पेड़ पौधा लगावे के अलावा स्वच्छता पर विशेष ध्यान देवे के हो। आज कहीं सूखा पड़ रहल है तो कहीं समय पर बारिश नहीं हो रहल है, कभी बाढ़ आवेया तो कभी भूकंप आवेया। ई सब प्राकृतिक प्रकोप पर्यावरण के असंतुलित होय के कारण होइया। ऐला ई बात के सबके समझे के होय कि पर्यावरण के संरक्षण करना बहुत जरूरी है, और ई तभी संभव है जब एकरा ले सब मिल के सोचक।
0: तब पर्यावरण के निम्न रखे के लेल बेसी से बेसी पेड़ लगाई। जहरीला धुआं आ जहां तहां कूड़ा कचरा मृत जानवर सब के फेंके से बची, जैसे पर्यावरण निम्न रहे आ हमरा सबके जीवन सुरक्षित रहे। अब कार्यक्रम में आगे बढ़त अपने के सुनवावे थती शंभू राय व साथी के गायल ई गीत।

0: देखो पृथ्वी है तो पृथ्वी पर जीवन है, इस जीवन बचावे के लिए पृथ्वी पर होए वाला प्राकृतिक प्रकोप के रोके के होत, आ ई तखनीय संभव होत जब हम पर्यावरण के बचाव, पर्यावरण के नुकसान से एकरा असंतुलित होए से कई तरह के प्राकृतिक प्रकोप आवैया। ये प्रकोप कहियो बाढ़, कहियो सुखाड़ त कहियो भूकंप आदि के रूप में हमरा सबके झेले के पड़ैया। जैसे हमर जीवन संकट में आ जाइया, जान माल के भारी नुकसान होइया, ये सब प्राकृतिक प्रकोप नहीं आवे, ऐ लेल पर्यावरण के सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। इतने नहीं, पृथ्वी पर जीवन के बचावे में, पर्यावरण के संतुलित बनल रहे में पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण है, जेकरा लेल गाछ वृक्ष आ जीव जंतु के सुरक्षा जरूरी है। देखू हर साल 22 अप्रैल के विश्व पृथ्वी दिवस मनायल जाइया, जेकर मुख्य उद्देश्य यह है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोग सबके जागरूक करे के, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण आ जैव विविधता के नुकसान जेहन वैश्विक चुनौती के प्रति लोग के सचेत करे के है। ता हम सब एकरा प्रति सजग रही, जागरूक रही, जैसे पृथ्वी पर कोई संकट नहीं आवे, कोई प्राकृतिक प्रकोप हमरा सबके नहीं झेले पड़े, आ जीवन सुरक्षित आगे बढ़त रहे। अब कार्यक्रम में आगे बढ़त अपने के सुनवावत हती ज्वाला प्रसाद सिंह सांध पुष्प के खिस्सा बुन बुन लोर।
1: बुन बुन लोर।
2: अनुपमा अखनी बीए सेकेंड पार्ट पास कक फाइनल ईयर में गेल त ओकर उमीरो जन्ना नैया नाहित गंगा के सभ्य बेसम्हार धार के कटैत ओ पार गेल, आ अब त 19 बरिस के होक चिरई जकी तुरंतु भेल दिन दुनिया के खूब लग से देख परेख रहल ह। जन्ना अंडा फोड़ का कोयली के बच्चा कू करेला तैयार रहैया। अनुपम अपन पढ़ाई लिखाई चित्रकारी करनाई गीत गनाई या सिलाई से लेकर खैलो

बनानाई में लगल गुनगुनाइत रहैया। इतिहास, भूगोल आ समाज शास्त्र के संगे संगे राजनीति शास्त्र के निम्मन ज्ञान है ओकरा, त विज्ञान के ताप विद्युत मैग्नेट से खूब परिचित है। भल्ले अब मैथ न पढ़ रहल है, मुदा इंटर तकला पढ़ल का ज्ञान से उकर मैथ तनको कमजोर न है। वो खूब जनैया कि दू भाग हाइड्रोजन आ एक भाग ऑक्सीजन से पानी बन जाइए, आ उ पानी के 0 डिग्री सेल्सियस पर अबैते बर्फ बन जाइए, तो ओकरा आग पर चढ़बैते उ भाफो बन का आसमान में उड़े लगैए। आ ओकरा जिंदगी में सच्चो में ऐसन समय आयल जेकर परिवार के लोग सब स्वर्ग सिधार गेलन, आई खुद दे बर्फ बनल मूक दर्शक नाहित देखैत रह गेल। एकरा गांव कहूं या कस्बा, मुदा हरिपुर शहर न रहै तो शहर के लगीचे रहे के चलनते ओकर चाल चलना प्रभाव से लोग सा अछुत्ता न रहे। ओकर धुआं धक्कर ठंडा गर्मी आ ढहित संस्कार के असर हियौतो पर पड़े लगल। पाई कौड़ी आ धन दौलत के लेल अपनापनो भूल जाई रहे। ओहने वातावरण में अनुपमा के जन्म भेल। एकरा से बर एगो भाई है अमर दीप, न भुलाय वाला दिया, पढ़े में खूब तेजगर, इंटर करते ओकरा कंपटीशन से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गेल कि गरीब बाप माय के घर में गंडक के दहार नहीं त्योहार आधमकल। चारों ओरी हल्ला हो गेल कि प्रगास के बेटा डॉक्टरी पढ़े गेल, आ 5 बरिस के समय कैसे बीत गेल तनको न बुझायल। बुझायल तो सिर्फ प्रगासे के जेकरा जीतोर मेहनत से ओकरा बेटवा केनाहू का इंटर्नशिप कर लेलक, मुदा अमरदीप के तब आउरो बड़का डॉक्टर बने के रहे। वो फिर कंपटीशन में पास कर गेल तो ओकर एडमिशन एम की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में MS में भेल, जहां ओकरा हार्ट डिजीज आज ओकर सर्जरी विभाग मिलल। वो सोचलक कि अब वो खूब पढ़ लिख कर डॉक्टर बन अपन घर के सभ्य बीमारी अभाव के इलाज कर देत। वो अपन कैगो दोस्त महीमो के लग में ई बात बोलल। इन्हें गांव में एक कर गुतिया सा एकरा बाप माय से जरे लगल कि खाली खेतिये बारी का केन्ना बेटा के डॉक्टर बना लेलक, केकरो से ई कर्जो पैंच न लेलक, न एक कट्ठा कन्हू बेचबे कैलक, जबकि ओकर जमीनो बड़ा कीमतगर रहे। वही से गांव के और लोग के त खुशिये रहे, मुदा एक कर पड़ोस में गुतिये में एगो के घर एगो दूगो छौरा के ई बात तनको न सुहाय। अब कर सके मन एकर जमीन हथियावे या जेह से दाम में झीटे पर चल गेल। ओहो सत मैट्रिक इंटर ला जौरही नाम पढ़ल ला, ये चलनते ओकरा सके और अखरे। यह अखज में उस प्लानिंग ओकरे जन्म दिवस पर हुआ ओकरा डेरा पर जाकर 1-2 दिन रहल आ लौकिया फिट चलबैत गेल। हफ्तों न बीतल कि अमरदीप के प्राण के दीप मुझा गेल। वो अपन डेरबे में मरल परल मिलल। हल्ला हो गेल कि वो आत्महत्या कर लेलक। टेलीफोन आयल तो 5-7 गो कर कुटुम आ गुआ घरुआ के जौरे कनैत पिटैत बेचारा बनल बाप प्रगास गेलन। हुआ से अंतिम संस्कार चल अबैत गेलन कि बेटा के लहास देख कर मैया सत तुरंते जान गवा देते कि ल न बेटा के मरनी के शोक में बेचारी जे बेहोश होल से 7-8 दिन के बाद शहर के नर्सिंग होम में परल परल दम तोड़ दिलक। देख भैया औरत मरद लड़का फड़का बर बुजुर्ग सके बहल आंसू से समुचा गांव दहा गेल। धोती खुलैया तो आदमी नंगा हो जाइया, मुदा जहिया पाप के गेठरी खुलैया ओकर चरित्र महके लगैया। समुचा गांव के गांव जान गेल कि प्रगास की जनानियों के नर्सिंग होम में कोनो जहर वाला दवाई के सुइया वो दुश्मनवा देवा देलक कि प्रगास के हित लोग सा पुलिस में कम्प्लेन करवा देलक। आप पोस्टमार्टम में साबित हो गेल कि औरत के मौत जहरे से भेल। अब तो प्रगास अपन उ खास गोतिया के आमने सामने होकर महाभारत के धर्म युद्ध लड़ेला तैयार है। प्रगास के मुकदमा लड़ैत लड़ैत 7 बरिस हो गेल। जहां जाए पैसे के खर्चा, खेत से बिलट गेल आ अजगर नाहित कर्जा देह के लपेट ले गेल, टस से मस न होए देवे। ई बीच जमीन बीक बाग का अधिया गेल। विपक्षी पार्टी के वकील आ दलाल से प्रगास पर सुलह करे के दबाव बनावे लगल, मुदा प्रगास सोचे कि मुसरी निकल गेल तो लंगरी नट के चाही। अब तक केस फाइनल होए पर है। माथा पर हाथ धैले प्रगास दलान पर बैठल सोचैत है कि बेटी आकर पूछ बैठल, अहो बाबू की सोचैत था तब हम दोसर चीज कथी सोचबै गे अनुपिया, ओकर लोग से तब हमरा रहतो न चले दैया, मुकदमा उठा लेवेला न त 16 सपट्टा क लेवेला कहै जाइए। टूटल मन से प्रगास के मन बैठ गेल, जन्ना खूब पक जाए पर सुकुल आम भुइया पर चू जाइए। पता न अनुपमा कहाँ से इतना हिम्मत बटोर लेलक
अहो बाबू, इस जिंदगी तो संघर्ष के

0: हई केशो वापस ले लेवे पर तोरा बुझाइय कि उ चुपचाप बैठल रहतो छोटा सांप त लाठी हटा लेबू पर आक्रमण करबे करय आ जन्ना टूटल थुराल हड्डी के दर्द पुरवा बहते जाग जाइय अपनो सके त मलाल रहिए जतो जब जब भैया की याद पड़त त हम की करूं अब त अपनो लोग स ओकरे बोली बोल रहल पुरान रोगी जकित प्रकाश कोहरल बाबू तू त हमर जनक हतु जन्मदाता हतु एहे लेल न एत्ता सोच रहल हौ हाँ, कि सब संपत नाश हो जाए तई बेटी के बड़ा दुख उठावे के परत अहो धर्म युद्ध में हमर सोना सनमन अमर दीप भाई अभिमन्यु जकित मारल गेल पापी सके साजिश में माय चल गेल त न आई जर जमीन लेकर हम सब की करब उ मरल आत्मा के शांति जमीन से तर न मिलत बस तू वीर अर्जुन नाहित अपन धुन में चलत रह का कुकर्मी सर परवार करत रहा जीत हमेशा धर्मे के हुईया अपन पितर का लोर के नुकबैत अनुपमा एक सुर में श्री कृष्ण जी नाहित बोल गेल मुदा घर में जाकर चोरी छुपे आंख से लोर बहावे लगा जेठ के तपई तलसाइत महीना जायला तैयार है रोहिणी वगैरह नक्षत्र एकादगो खाली तनका तनका बुन बरसा कर चल गेल जना मंच पर कोनो जो करवा तनका हंसा कर चल जाइय मुदा अदरा चढ़ते इतना न मेघवा बरसे लगल कि मौसमो विभाग कह देला कि मानसून केरल में आ गेल मानसून केरल में आबे चाहे उड़ीसा पश्चिम बंगाल में हिया तो असगर अहगर से वर्षा बरस कर किसान सके मन में अदरा मनाइए दिलक मकई के मुठ लगे लगल कि धार के बिरार गिरे लगल आ घर घर में खीर पूरी खा खा कर लोग सके मन हर्षित हो लगल अनुपमा अपन बाबू के दुखाल मन पर शीतल फुहारा छीटे लेल चुपचाप खीर पूरी बनैलक आ बाबू के मना उना कर खिया कर खुद कॉलेज चल गेल इन्हे ओकर बाबू जान बनिहारा जोड़े चल गेलन चौर दिशा खेत में चार पांच घंटा खूब हुमेज का काम भेल आ मजूर सब अपन काम पूरा क का अपना अपना घर चल गेल मुदा प्रगास कहाँ जाओ वो बेचारा अपन खेते में रह तनका बचल का खुदरिया काम स करे में लग गेल अनुपमा कॉलेज से आयल न कि आदमी सा के कर रहा सुनकर ओकर मन उचट गेल प्रगास डूब गेल थी सब दौड़ल अनुपमो चौर दिशा भागल आ हुआ पढ़ के भीड़ भड़क्का के हटबई घुस गेलक जन्ना बजाज कपड़ा के कैंची लगा कर चीर दैया हटै जा हो चच्चा भैया की भेलै ई तन्नी गो डबरी में बाबू के ना डूब जथिन आ तुरंत ऊ सम्हर गेल आ पुलिस के फोन कर देलक लोग सब मुहा मुही बतियाए एहो बेचारा के मरले मौगत लय देह पर चोट के चेन्हा त सेहे कहै छै बुझा है हाथ गोर तोड़ले है पुलिस आयल आ लोग सब के सहयोग से लाश के निकाल कर पोस्टमार्टम लेल जिला ले गेल आ इन्हें अनुपमा के लोर अदरा के झींसी नाहे चुवैते रहल जाले ओकरा आत्मा कुटुम्ब से एकर बाबू के लहास न ले आयलन तब त अनुपमा के जन्ना होशे आ गेल झांसी के रानी नाहित घबैलो होकर उठ गेल आ सभ्य विध व्यवहार में खुद हाथ बटावे लगल आ दुनिया देखे लगल कि बेटी होइयो क सबके जौरे मृत्यु के उठैले अंतिम क्रिया के लेल चल देलक बूंद बूंद लोर चुबैत आ निज एकादशी के दिन पहलैते उ नर्सिंग होम के डॉक्टर के 10 वर्षा जेल हो गेल आ अब अनुपमा फिनु कान रहल हाँ बूंद बूंद लोर गिर रहल हाँ ओकरा आँख से जे सभ्य मरल भाई बाप माय के याद में श्रद्धांजलि के फूल बन जाइया।
1: अखनी अपने ज्वाला प्रसाद सिंह सांध पुष्प के खिस्सा बूंद बूंद लोर सुनित रही। अब कार्यक्रम में समय है बात अपन धरोहर के। बात अपन धरोहर में आई बात अपन देश भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिला में स्थित विश्व धरोहर एलोरा के गुफा के। एलोरा के मूल नाम बेरुल है जे एगो पुरातात्विक स्थल है जे महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिला से 30 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। एकरा राष्ट्रकुल वंश के शासक द्वारा बनायल गेल रहे। स्मारक गुफा के लेल प्रसिद्ध एलोरा के गुफा यूनेस्को द्वारा घोषित एगो विश्व धरोहर स्थल है। एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प में एगो उधरवाधर खरा चरणाद्री पर्वत के एगो फलक है। एमे हिंदू बौद्ध आ जैन गुफा मंदिर बनल है। ई 5वीं आ 10वीं शताब्दी में बनल रहे।

12 बौद्ध गुफा और 17 हिंदू गुफा और 5 जैन गुफा है। ये सब एक दूसर के आसपास बनल है आ अपन निर्माण काल के धार्मिक सौहार्द के दर्शावैया। एलोरा के 34 मठ आ मंदिर औरंगाबाद के 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैलल है। एकरा ऊंच बेसाल्ट के खड़ा चट्टान के दीवार के काट के बनायल गेल है। एकर निर्माण ऊपर से नीचा के ओर कैल गेल है। अपन समग्रता में 2 समग्र 6 फीट लंबा आ 154 फीट चौड़ा ई मंदिर केवल एगो खंड के बनायल गेल है। एकर निर्माण के क्रम में अनुमानतः 40,000 टन भार के पत्थर के ताला बनायल गेल है। एकर निर्माण के लेल पहले खंड अलग कैल गेल, फिर ई पर्वत खंड के अलग कैल गेल, ओकर बाद ई पर्वत खंड के भीतर से काट काट के 90 फीट ऊंच मंदिर उकेरल गेल। मंदिर के बाहर चारों तरफ मूर्ति अलंकार से भरल है। दुर्गम पहाड़ी वाला एलोरा 600 से 1000 ईस्वी के काल के है, जे प्राचीन भारतीय सभ्यता के जीवंत प्रदर्शन करैया। हिंदू बौद्ध और जैन धर्म के भी समर्पित पवित्र स्थान एलोरा परिसर न केवल अद्वितीय कलात्मक सृजन आ एगो तकनीकी उत्कृष्टता है, बल्कि ई प्राचीन भारत के धैर्यवान चरित्र के व्याख्या भी करैया। भारतीय रॉक कट वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण एलोरा के गुफा के सन 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित कैल गेल। तय ये रहे बात अपन धरोहर में, आई बात अपन देश भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिला में स्थित विश्व धरोहर एलोरा के गुफा के। एकरा से जुड़ल औरो कित्ते बात है, लेकिन बात अपन धरोहर में आई बात बस इतनी। अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम आ गेली है। अब शब्द सरिता। शब्द सरिता में बज्जिका के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने। बज्जिका के एगो शब्द है लगाड़ी। एकर मायने होइया साधन। जना कोनो कहत हतन हमरा पास बाहर जाय के लेल अपन कोनो लगाड़ी नहीं है, यानी हमरा पास बाहर जाय के लेल अपन कोनो साधन नहीं है, त लगाड़ी के मायने भेल साधन। ओकर बाद एगो शब्द आयल है पचरा। एकर मायने होइया झंझट। जना कोनो आदमी कहत हतन हम दोसर के पचरा में नहीं पड़े चाहत हती, ई निम्मन बात नहीं होइया, यानी हम दोसर के झंझट में नहीं पड़े चाहत हती, ई निम्मन बात नहीं होइया, त पचरा के मायने होइया झंझट। ओकर बाद एगो शब्द है अनगुतिये। एकर मायने होइया सूर्य उदय से पहले। जना लोग कहत हतन देखल गेल है कि बेसीतर गांव घर के लोग अनगुतिये उठैया, यानी बेसीतर गांव घर के लोग सूर्य उदय से पहले उठैया, त अनगुतिये के मायने भेल सूर्य उदय से पहले। ओकर बाद एगो शब्द आयल है छुच्छे, यानी खाली। जना कोनो आदमी किनको कहत हतन छुच्छे गप देला से नहीं होइया, काम करके भी दिखावे पड़ैया, यानी खाली गप देवे से नहीं होइया, काम करके भी दिखावे पड़ैया। आ अंत में एगो शब्द आयल है अनेसा। एकर मायने होइया इंतजार। जना कोनो आदमी किनको कहत हतन अपने बेसी देर अनेसा करवा देली, समय के भी कोनो मूल होइया, यानी अपने बेसी देर इंतजार करवा देली, समय के भी कोनो मूल होइया, त अनेसा के मायने भेल इंतजार। त ई रहे बज्जिका के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने। अखनी अपने शब्द सरिता सुनित रही। एकरा संगे बज्जिका कार्यक्रम अंगना अब संपन्न होइया। बज्जिका कार्यक्रम अंगना अपने के कैसन लगैया, अपने अपन विचार

चार के एगो चिट्ठी या हमर ईमेल आईडी के माध्यम से हमरा भेज सकत हती। हमर पता है बज्जिका कार्यक्रम अंगना द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004 आ ईमेल आईडी है akashwani.darbhanga@gmail.com। तो अब कार्यक्रम से प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा के संग हमरा यानी गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव के दू अनुमति एक बेर फिर से अपने सबके प्रणाम करे थती।

भज्जी का कार्यक्रम अंगना अभी आपने सुना। संकलन आलेख एवं वाचन गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव का था और प्रस्तुति मितेश कुमार मिश्रा की। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में इस समय 11 बज चुके हैं। आप इस समय सुन रहे हैं पहली सभा के कार्यक्रम। लीजिए हम आप तक पहुंचाते हैं उपशास्त्रीय संगीत। इसके तहत आज सुनिए शोभा गोटू की गाई। पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये भैरवी।

आकाशवाणी दरभंगा से इस समय आप सुन रहे हैं शास्त्रीय संगीत। ये उपशास्त्रीय संगीत में आज आप सुन रहे हैं शोभा गोटू को।

इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत अब यही समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए NCERT।

0: कार्यक्रम में नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओ, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
0: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
0: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
0: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर।

0: तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़, फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
1: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
1: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
1: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं, सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
1: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
1: है जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
1: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मतिभ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
1: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
1: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
1: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
1: जी।
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
1: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
0: जी।
1: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
1: जी।
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
1: जी।
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है, और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है
0: जी। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से

0: चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
1: आग बरसाती धूप,
2: विद्या क्या है?
3: लो बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
2: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
4: कोशिश करता हूँ।
2: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
3: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलू देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
2: अरे मोहन मोहन क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
4: विद्या विद्या,
2: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन कुछ बोल मोहन।
3: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
2: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
3: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
2: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
3: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
2: हाँ हाँ, हाँ चलिए चलिए।
3: हाँ, हाँ, हाँ. आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
2: जी।
3: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
2: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
5: कौन है भाई, अभी आया?
3: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
5: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
3: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
5: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई।
3: हाँ, हाँ।
5: और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए।
3: हाँ।
5: ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
3: अच्छा डॉक्टर साहब।
5: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
2: जी
5: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
3: हाँ जी,
5: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
3: जी।
5: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
3: जी।
5: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
2: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
5: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
2: जी,
5: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
2: इससे क्या होता है?
5: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
3: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
5: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
3: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
5: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा ककड़ी तरबूज खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
3: जी।
2: और अगर लू लग जाए तो?
3: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
5: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को

0: 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
1: जी।
0: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
0: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं
1: जी?
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
0: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना, गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
2: ठंडक में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
4: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
6: इन्हें हमारा सलाम।
4: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
7: साथियों नमस्कार।
4: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
7: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
4: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
7: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
4: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
7: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
4: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
7: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
4: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
7: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: झार यानी झाड़ या पेड़, तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए

0: इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक अल्बर्ट इक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम।
2: यह था प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जा रहा था। अब पेश है फिल्म संगीत। अभी समय है हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:15 हो चुके हैं। अभी से हमारे साथ बने रहिए 12:30 तक और आनंद उठाइए नए फिल्मी गीतों का। शुरुआत हम कर रहे हैं गदर 2 फिल्म के इस गीत के साथ। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह, गीत के बोल सईद कादरी के हैं और संगीत है मिथुन का।

अभी जो गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, उसे हमने लिया था फिल्म फाइटर से। आवाजें थी विशाल मिश्रा और शिल्पा राव की। आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा और आनंद उठा रहे हैं फिल्म संगीत का।

बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा और साथियों को। गीत के बोल इरशाद कामिल के थे और संगीत विशाल मिश्रा का था। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा और आनंद उठा रहे हैं इस समय फिल्म संगीत का।

अभी आप सुन रहे थे मनाली चतुर्वेदी की आवाज़ में। ये फिल्म थी एक्टिंग का भूत। आप इस समय आनंद ले रहे हैं नए फिल्मी गीतों का आकाशवाणी के दरभंगा की।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त हुआ। पुनः फिल्मी गीतों के साथ हम लौटेंगे दिन में 1:15 पर। आकाशवाणी दरभंगा से अब सुनिए हेलो जिंदगी, रविवार 10 मई 2026 को प्रसारित कार्यक्रम का संपादित अंश।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: ये कामयाबियाँ, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। माँ जिसे सृष्टि का आधार कहा गया, माँ जिसे करुणा और त्याग का स्वरूप कहा गया, माँ जिसे ममता की प्रतिमूर्ति कहा गया, माँ जिसे परिवार का संबल कहा गया, माँ जिसे साक्षात ईश्वर का रूप कहा गया। यूं तो अपने देश में अपनी सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल मातृदेवो भवः की सर्वोच्च मान्यता रही है और हर दिन माँ पिता के प्रति कृतज्ञ भाव के साथ उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद लेने की परिपाटी भी रही है। किंतु लगातार बदलती सोच और बदलते पारिवारिक सामाजिक ताने बाने के बीच कतिपय अंधानुकरण के दौर में हम अपने ही पारंपरिक दायित्वों और कर्तव्यों को भुलाने में लगे हैं। छद्म आधुनिकता की तामझाम में माँ अपनी संतान के प्रति उच्च आदर्श सम्मत दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन कर पा रही हैं क्या? माँ और संतान के पारस्परिक संबंध, उनके दायित्व और कर्तव्य हैं क्या? इन्हें समझने और इस पर अमल करने की आवश्यकता आखिर हमें क्यों है? गांव से लेकर शहर और

0: महानगर तक टूटते बिखरते परिवारों की दास्तानों में क्या माँ की सुबकियाँ भी शामिल नहीं हैं? क्या हमारे बदल रहे पारिवारिक सामाजिक मानकों और दरकती मान्यताओं के बीच माँ उपेक्षित और पीड़ित नहीं है? इन जैसे अनेक बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों पर केंद्रित है आज का हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो जिंदगी। श्रोताओं नमस्कार, संजय की तरफ से माँ एवं संतान के पारस्परिक संबंध और दायित्व, यही है आज की हेलो जिंदगी का विषय। और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आप श्रोताओं की जिज्ञासाओं से भरे प्रश्नों के उत्तर और परामर्श देने के लिए बतौर विशेषज्ञ आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं जानी मानी शिक्षाविद प्रोफेसर पुष्पम नारायण। प्रोफेसर पुष्पम नारायण, आपका स्वागत, नमस्कार।
1: नमस्कार संजय जी,
0: कैसी हैं आप ये बताइए।
1: मैं अच्छी हूँ।
0: प्रोफेसर पुष्पम नारायण जी कहाँ से आती हैं और जहाँ तक का ये सफर है, एक शिक्षाविद के तौर पर जहाँ पहुँची हैं आप?
1: मैं एक वैसी माँ की पुत्री हूँ जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, साथ ही समाज में सेवा किया और शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पदों को आसीन रहते हुए भी उन्होंने हम सबों का बड़ा ही संस्कारिक रूप से पालन पोषण किया। और मैं उसके बाद पढ़ लिख कर संगीत के क्षेत्र में आगे आई। अच्छा। साहित्य के क्षेत्र में आगे आई, विज्ञान के क्षेत्र में आगे आई और जहाँ रोजी रोटी का सवाल हुआ तो मैं विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में अध्यापक के पद पर ज्वाइन किया और आज उस पद पर निरंतर आगे बढ़ते हुए मैं प्रोफेसर के पद पर हूँ और विश्वविद्यालय ने हमें एकेडमिक डीन के रूप में उन्होंने मुझे सुशोभित किया है और मैं उस पद पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं एक कुशल गृहिणी भी हूँ।
0: अच्छा।
1: और जी, दो बेटियों की माँ भी हूँ और एक संस्कारिक रूप से अपने बच्चों का भी पालन पोषण कर रही हूँ। और मेरे जीवन का एक ध्येय है कि जहाँ भी कोई भी ऐसी बच्ची जो आगे बढ़ने के लिए इच्छुक है, ऐसे बच्चियों को आगे बढ़ाना ये मेरा एक अपना, ऐसा कहा जाए कि एक मेरा जुनून है।
0: आज बहुत अहम विषय है, जो माँ है उनके लिए भी और जिनकी माँ है उनके लिए भी, दोनों के लिए बड़ा बेहद महत्वपूर्ण है।
1: देखिए संजय जी, माँ शब्द जो है ना, ये एक ऐसी प्रतिमूर्ति है जिसको सिर्फ एहसास किया जा सकता है। ऐसा भी आप सुने होंगे कि जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस माँ का पुनर्जन्म होता है। तो ईश्वर चूंकि हर जगह माँ किसी के साथ नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने दूसरे भगवान के रूप में उन्होंने माँ को भेजा है।
0: सही,
1: तो माँ बिल्कुल मातृ देवो भव जो आप बोलते हैं, तो बस ये उसी की परिकल्पना है। और माँ जो करुणा की मूर्ति है, त्याग की प्रतिमूर्ति है, आप उनको जो भी कह लें, जितने भी वैसे शब्दों से सम्मानित कर लें, वो कम पड़ जाएगा एक माँ के लिए।
0: सही बात है।
1: माँ एक एहसास है। देखिए आज ऐसा संयोग है, पिछले महीने
0: जी
1: आज की तारीख को ही मैं माँ के महाप्रयाण यात्रा में थी। आज के दिन ही मेरी माँ यहाँ से विदा हो ली थी।
0: कॉल आया हुआ है, बात कर लेते हैं फिर।
1: हाँ, जरूर।
0: जी नमस्कार, हेलो।
2: नमस्कार,
0: जय हिंद।
2: जी मैं मोहन पासवान गांव बसतपुर से प्रखंड बहादुरपुर जिला दरभंगा से बोल रहा हूँ।
0: जी मोहन पासवान जी बताइए।
2: जानना चाहता हूँ कि एक माँ के लिए दूध में पल रहे बच्चे, उम्र बढ़ने पर बंदरों की तरह खेल रहे बच्चे, किसी किस तरह के विचारों से सचेत सूत्र में डाले जाए जिससे माँ और संतान का पारस्परिक जीवन को मजबूत बनाया जा सकता है सर। दूसरा सर की विज्ञान विकास का कारण है तो विनाश का सूत्रधार विज्ञान में है सर, तो इस वैज्ञानिक युग में माँ और संतान के साथ समाज के जो संबंध को किस तरह से मजबूत किया जाए जिससे डिजिटल सेवा के दुरुपयोग और होने वाले हानि से बचा जा सके। तीसरा है सर की एक माँ का ही संतान होता है, एक वही संतान भारत माँ का भी संतान कहलाता है सर। इस बच्चों सामाजिक संबंध को मजबूत रखते हुए इनको किस प्रकार का दायित्व और कर्तव्य निभाने का दायित्व दिया जा रहा है सर?

0: पूरे कार्यक्रम की बात आपने रख दी है, सुनिएगा ध्यान से बढ़िया से मोहन पासवान जी, अच्छे से सुनिएगा। प्रोफेसर पुष्पम नारायण आपकी बातों को सुन रही हैं और वो एक एक कर सारी बातों का जवाब देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहन पासवान जी। जी जी प्रणाम आपको भी। तो ये सारे सवाल आ गए, एक और श्रोता जुड़ गए हैं तो पहले उनसे भी बात कर लें। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: हेलो
0: जी प्रणाम, अपना नाम बताइए। हाँ कौन बोल रहे हैं, क्या पूछना है अक्षरा सिंह, क्या जानना है ये बताइए। हाँ पूछिए ना।
2: आपकी मम्मा बहुत अच्छी है,
1: नहा देती है,
0: क्या बात है,
1: प्यार करती है।
0: अच्छा आप क्या करती हैं मम्मा के साथ ये बता दीजिए। आप अच्छा अच्छा ये सब आप मम्मा के कहने पर करती हैं है ना, तो ऐसे ही जो जो मम्मा कहें वो किया कीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर है। पढ़ाई करती है अक्षरा? अच्छा किस क्लास में है? चलिए हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। सुनिएगा अच्छा की मम्मा जो है सो बहुत अच्छे से इनको प्यार करती हैं, दुलार करती हैं, ये बदले में ABCD की पढ़ाई भी करती
3: हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अक्षरा, रेडियो पर सुनिए क्या बोल रही हैं पुष्पम मैम, ठीक है ना। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद,
2: बहुत अच्छी बात है। हाँ। माँ की बात माननी चाहिए, माँ हमेशा अच्छी बात करती हैं, पढ़ने को बोलती हैं, आपको खाना प्रेम से खिलाती हैं, समय से स्कूल भेजती हैं, तो आप भी खूब मन से पढ़िए और अपनी मम्मी की बात मानिए, जो मम्मी कहें वो बात मानिए, तो आप बहुत अच्छी बच्ची बनेंगी, आगे बहुत अच्छा आगे करेंगी। ठीक है अक्षरा।
0: फ़ोन तो डिस्कनेक्ट हो गया है और इस समय सुने कि हमारे अगले श्रोता कौन है। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
4: दुनिया में हम लोग को भी और आगे आने वाला पीढ़ी को भी माँ और बाप दुनिया में सबसे बड़ा स्थान है, सबसे बड़ा स्थान है।
0: सही।
4: पुस्तकालय पुस्तकालय कुछ रखा रहता है कि हम लोग को काम देता है, आगे वाले बच्चे को काम देता है, तो सही माँ बाप का आशीर्वाद और दुर्वचन भी शुभ होता है।
0: जी चंद्रेश्वर शाह जी आपने जितनी बातें कही बहुत अच्छी बातें हैं और हर किसी को ये बातें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए और करनी भी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। माँ बाप डांट देते हैं, डपट देते हैं, कभी कभी ऐसी बातें भी कह देते हैं जो बहुत तीखी लगती हैं, लेकिन इन्होंने खुद ही कहा है ये सारी बातें हमारे लिए ही होती हैं और उसे भी आशीर्वाद ही समझना चाहिए।
2: आशीर्वाद होता ही है, अपनी अपने लाभ के लिए कुछ नहीं कहते।
0: सही बात है। और आते हैं मोहन पासवान जी की बातों पर।
2: ये मैं पहले सवाल का आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ से ज़्यादा संपर्क उसका होता है, लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है तो बच्चे का भी दायित्व तो बन जाता है, उसे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो वो पढ़ाई की ओर झुकाव होता है। उस परिस्थिति में माँ के स्वभाव में बदलाव थोड़ा बहुत इसलिए आता है कि बच्चा हमारा कैसे अच्छा बने, कैसे वो अच्छा नागरिक बने, कैसे वो सुसंस्कृत बने, कैसे वो अपनी जिम्मेवारी संभाले, तो इसको दूरी नहीं कहा जा सकता। माँ तो हर पल सिखाती है बच्चों को, तो इसलिए ये दूरी नहीं होता है। बच्चे आज के आपाधापी के समय में बच्चों के पास आप देखते हैं बस्ता का बोझ जो बढ़ गया है, उस बस्ते के बोझ को करते हुए एक माँ हमेशा ये देखती है कि उसका होमवर्क तैयार हुआ कि नहीं, कल वो स्कूल जाएगा किस तरह का ड्रेस पहनेगा, आजकल के आज प्रोजेक्ट वर्क ले जाना है तो आज असाइनमेंट ले जाना है, तो एक माँ ये सारी चीज़ों की चिंता करते हुए उस बच्चे को आगे प्रमोट करती है पढ़ने
0: के। उतना ही नहीं, अगर दो दिन टिफिन जो है ना खाना वापस आ जाए
2: तो
0: अगर सबसे ज़्यादा परेशान होती है तो माँ होती है। इतना मनोयोग से बना कर देती हूँ खाने के लिए।
2: हाँ, और वो बच्चा खा नहीं पाता तो ये

0: समस्या दूर ही नहीं है, बच्चों के ऊपर भी बर्डन बढ़ता जा रहा है और माँ की भी सोच ये होती है कि हमारा बच्चा इस एज में आ रहा है तो एक उसको उस उम्र की भी एक वो रहती है, इस उम्र में हमारे बच्चे को अच्छे से परवरिश चाहिए, कहीं रास्ता बिगड़ ना जाए, वो भटक ना जाए, तो ये सारी चिंताएं माँ करती है। देखिए माँ एक मनोचिकित्सक भी होती है
1: सही
0: अपने
1: बात है।
0: बच्चे के, वो देखती है मेरा बच्चा आज क्यों स्कूल से आया है तो थोड़ा नाराज है, या कॉलेज से आया है तो क्यों इस तरह से, तो वो बहुत ही मनोचिकित्सा के रूप में उस चिकित्सक के तरह वो उसके साथ व्यवहार करती है और फिर उस बच्चे से उस बात को निकलवा लेती है कि हमारा बच्चा क्यों परेशान है।
1: एक बच्ची अगर बच्ची है सामने ना, तो मैंने कई बार माँ को बच्ची बना हुआ देखा है, एकदम बच्ची की तरह बात करेगी उससे और धीरे धीरे सारी बातें
0: निकाल ले। ये तो एक माँ तो प्रथम गुरु होती है, उस घर के, उस परिवार के, उस बच्चे के प्रथम गुरु माँ होती है, तो उसे सब पता है कि मेरे आज मेरे बच्चे क्यों इस तरह से हैं, कहीं ना कहीं जरूर कोई बात है, और वो उसकी चिकित्सा कर देती है और बच्चा संतुष्ट हो जाता है। दूसरा सवाल जो आपने किया है कि इस वैज्ञानिक युग में, वैज्ञानिक युग से मुझे लगता है इनका जो तात्पर्य था, आज जो ये डिजिटल दुनिया हो गई है,
1: सही सही,
0: हर के हाथ में मोबाइल देखेंगे, घर में टीवी देखेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं ना पढ़ रहे हैं, ये महिलाओं की भी कमजोरी हो गई है आजकल, कोई सीरियल नहीं छूटना चाहिए।
1: एक श्रोता जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
2: नमस्कार, मैं दिनेश मिश्रा।
1: हाँ दिनेश मिश्रा जी, कैसे हैं ये बताइए। हाँ हाँ, शिक्षक हैं आप। हाँ दिनेश मिश्रा,
2: आपको प्रणाम।
1: आपको भी मेरा सादर प्रणाम। जी
2: आज के जब शिक्षक दिया है पुष्प नारायण जी।
1: हाँ हाँ,
2: पुष्प नारायण जी
1: जी, प्रोफेसर डॉक्टर जी,
2: प्रणाम।
1: उनकी तरफ से भी निवेदित है। जी
2: हाँ बोलिए
0: जी। जी नमस्कार,
2: कर्नाटक की प्रणाम मैम। आज का मेरा प्रश्न है कि आज का जो भौतिकवादी युग है
0: जी,
2: माँ को गर्व से लेकर के पालन पोषण शिक्षा दीक्षा तक साथ देती है संतान को
0: जी,
2: लेकिन जब एकल परिवार का चलन हुआ है तब से लगभग माता पिता की ओर संतानों का दायित्व कम होते जा रहा है, क्या वजह हो सकता है इसको, इसका निराकरण कैसे किया जाए ताकि समाज में उन्हें समरसता बनी रहे।
1: चलिए आपकी बात स्पष्ट दिनेश मिश्रा जी, ये सिर्फ प्रश्न नहीं है, ये एक बहुत बड़ी एक चिंतनीय बात भी है। बहुत बहुत आभार आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतने बढ़िया जिज्ञासा को व्यक्त करने के लिए भी बहुत बहुत नमस्कार जी, धन्यवाद, प्रणाम। एक सवाल भी था हमारा, क्या एकल परिवार की परिकल्पना ने माँ के प्रति दायित्व और कर्तव्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। ऑलरेडी हम इस पर चर्चा करने वाले थे भी, तो दिनेश मिश्रा जी की भी बातें आ गई हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन बात वहीं से शुरू कीजिए जहां आपने छोड़ा है, आधुनिकता के इस कालखंड में।
0: नहीं मैं देखती हूँ घरों में देखने को ये मिलता है कि माँ बैठ गई, टाइम हुआ बिल्कुल सीरियल देखने बैठ जाती है, बच्चे आए बस्ता पटके खुद से जूता मोजा खोल रहे हैं, खाने को चिल्ला रहे हैं, बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है उस बच्चे पर कि वो बच्चा पढ़ के आया उसके बाद उसको अपनी माँ से प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, समय पर भोजन चाहिए। तो माँ के लिए मुझे ये कहना है कि वो डिजिटल दुनिया में रहें, अपने को अपडेट रखें, लेकिन अपने बच्चों अपने दायित्वों को ताक पर रख के नहीं। और एक तीसरा सवाल आपका था कि हर माँ को ये शिक्षा देनी चाहिए, मैं तो माँ हूँ लेकिन जिस धरती पर मैं खड़ी होती हूँ वो मेरी धरती माँ है, उसने मुझे आश्रय दिया, उसने मुझे जगह दिया, खड़े होने के लिए एक जमीन दी है।
1: सही,
0: तो हमें उस माँ के लिए भी सोचना है, उस माँ की रक्षा के लिए भी हमें तत्पर रहना है।
1: ये हमारी हमारी जो है ना सांस्कृतिक परंपरा रही है, धरती को हम माता का
0: माता कहते हैं
1: जी,
0: सुबह उठकर धरती माँ को स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं।
1: श्रोता जुड़े हुए उनसे हम बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: नमस्कार संजीव, मैं किशुन कुमार मंडल मुंबई से बोल रहा हूँ।
1: किशुन कुमार मंडल जी बताइए, क्या जिज्ञासा है या कुछ कहना है?
3: यही कहना है मैडम, सबको प्रणाम। मैं बोला क्या अभी मातर डे तो मनाते हैं,
1: फादर्स डे भी है, ऐसा नहीं है, है और आप चाहेंगे हाँ बिल्कुल, और फादर्स डे भी लोग उसी मनोयोग से पूरे विश्व भर में मनाते हैं
3: है, और बच्चे लोगों के क्या माँ के प्रति क्या कर्तव्य।

0: पूरा कार्यक्रम उसी पर है किशुन कुमार मंडल जी, सुनिएगा किशुन कुमार मंडल जी। जुड़ने के लिए, कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत आभार, धन्यवाद आपका। दायित्व पर चर्चा करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, अधिकार तो सब है, माँ माँ के प्रति अधिकार तो है, लेकिन दायित्व की समझ और एकल परिवार की चिंता जो आई थी ना उस बात में, दिनेश मिश्रा जी जो कर रहे थे वो भी एक है, लेकिन सवाल वही है कि ऐसी माँ जो कामकाजी है, ऐसी माँ जो आपकी तरह है, सुबह उठती हैं, तैयार होती हैं, कौन कौन से क्लासेस हैं, है ना, पढ़ानी है, फिर आपके लिए भी बच्चे की तरह प्रोजेक्ट वर्क है, छात्र छात्राओं को तैयारी करानी है, कौन सा राग कहाँ से शुरू करें, आलाप, मध्यलय, द्रुत गति, ये सारी चीज़ें आपसे भी जुड़ी हुई हैं। तो एक कामकाजी महिला होने के नाते आपसे बेहतर इस सवाल का जवाब कौन दे सकता
1: है? जी जरूर, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं कामकाजी हूँ लेकिन मैं बच्चों को उस तरह से मेंटली तैयार रखती हूँ,
0: सही,
1: कि मेरा भी एक काम है लेकिन उसके साथ मेरे परिवार में तुम्हारी देखभाल करना भी मेरा एक दायित्व है। और बच्चे, आजकल के बच्चे खास करके, वो समय से पहले इतने मैच्योर हो जाते हैं, वो समझते हैं कि जब अगर माँ काम करके नहीं आएगी तो सिर्फ पिता के तनख्वाह से होने वाला नहीं है आज के इस भागदौड़ और इतनी महंगाई के समय में, तो उसे भी ये पता है कि माँ को नौकरी करनी जरूरी है।
0: सही बात है,
1: हाँ, लेकिन माँ का दायित्व दोहरा हो जाता है। आज तो देख रहे हैं कि आप जहाँ भी चले जाएं, बस ट्रेन जहाँ देखें, आज 60% से ज़्यादा महिलाएं नौकरी कर रही हैं।
0: सही बात है,
1: हाँ, लेकिन यहाँ एक दो बातें और हुई हैं। महिलाएं नौकरी तो कर रही हैं, घर परिवार भी संभाल रही हैं, लेकिन बिखराव भी आ रहा है।
0: एक और श्रोता जुड़ गए हैं।
2: माँ का क्या अधिकार होता है?
0: माँ का अधिकार क्या होता है? ठीक है, कौन बोल रहे हैं? उमा शंकर ठाकुर जी। माँ का क्या अधिकार होता है? सीधी सी बात है, माँ का भी अधिकार होना चाहिए।
1: जी
0: जी, क्या अधिकार है माँ का?
1: माँ ने अगर हमें इस धरती पर लाया है तो माँ का सर्वस्व अधिकार है, लेकिन माँ के अधिकार की जहाँ तक बात आती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ के अधिकार को लेकर थोड़ा डवाडोल होने लगते हैं, है ना, वहाँ तब बात आ जाती है। एक माँ चार बच्चों की परवरिश करती है, लेकिन चार बच्चे मिलकर एक माँ की परवरिश नहीं कर पाते आज के समाज में। तो जहाँ तक माँ के अधिकार की बात है, माँ तो एक उम्र के साथ बिल्कुल शांत मूक बनकर सब कुछ देखती है, एक उम्र के पड़ाव पर आकर माँ बिल्कुल चुप हो जाती है, किसी तरह चाहती है कि बस मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सहजता के साथ अच्छे से चल जाए। तो माँ के अधिकार, माँ तो अधिकार कभी मांगती नहीं है। जब माँ अगर संतान को उन्होंने जन्म दिया तो संतान का ये कर्तव्य हो जाता है, ये दायित्व तो हो जाता है कि मेरी माँ को कोई कष्ट ना हो।
0: माँ अपने बच्चों का हाथ जो है ना, वो उसके बचपन तक ही भले पकड़े थामे, लेकिन उनका दिल हमेशा के लिए थामे रहती है।
1: जी बिल्कुल।
0: शाम ढले एक वीरानी सी साथ मेरे घर जाती है, मुझसे पूछो उसकी हालत जिसकी माँ मर जाती है।
1: जी जी, बहुत।
0: तो जिसके पास माँ नहीं है ना, ये पीड़ा उसका दिल ही जानता है।
1: जी,
0: तो ये कहना चाहेंगे हम कि आज के दिन कि अगर आपकी माँ है ना,
1: आप सबसे बड़े धनवान हैं।
0: बस एक श्रोता जुड़ गए। जी नमस्कार,
3: मैं राम कुमार शाह सिमरिया भिंडी कल्याणपुर समस्तीपुर से बोल रहा हूँ।
0: जी राम कुमार शाह जी, बताइए।
3: जी, माँ के बारे में कहा गया है कि माँ तो चरित्र निर्माण की सुधारिणी होती है, और बहुत पूर्व काल में जो माँ पुरुष पैदा हुए, जैसे राम है, कृष्ण है, तो उन सबों पर माँ की ही विशेषता है। जैसे कि राम हमारे घरों में जन्म, तो उसके लिए कौशल्या की जरूरत है।
0: सही बात है।
3: कृष्ण का अवतार देवकी जी को शक्ति है, जो महाभारत के कर्ण है, अर्जुन है और भीम है, इनका यदि हम पुनः दर्शन करना चाहें तो कुंती तैयार करनी पड़ेगी।
0: सही बात।
3: हनुमान चाहिए तो अर्जुना प्राप्त करनी होगी।

0: मनु का निर्माण तो कोई सुभद्रा की कोख ही कर सकती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: शिवाजी की आवश्यकता हो तो जीजाबाई कर सकते, पहले होना चाहिए। कहना चाहे की पूर्व में जो हो चुके हैं, जैसे लव कुश है या भरत है या शिवाजी है या नेपोलियन बोनापार्ट है, ये इतने जो ये सब जो व्यक्तित्व है इनको तो उनकी माता की भी विशेषताएं छबर रही। मेरे कहने का यही अर्थ है कि वर्तमान समय में भी तो मन को जिस प्रकार संस्कार भरना जाए अपने पुत्रों में, जो वो उनके सदृश बन सके।
1: सही बात है,
0: एक चली रह गई है,
1: बिल्कुल सही
0: जानना चाहता हूँ।
1: जी जी बिल्कुल सही, आप मतलब आपने जितनी बातें कही हैं बिल्कुल सारगर्भित बातें कही हैं, और इन बातों को कहने के बाद किसी और उदाहरण की जरूरत नहीं है। राम कुमार शाह जी, आपने जितने जितने द्रष्टव्य दिए हैं ना अपनी बातों में, वो सारे परिपूर्ण हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राम कुमार शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी
0: जी।
1: एक बार किसी भवन की नींव मजबूत हो जाए तो फिर वो कोई भी आंधी कोई भी तूफान सह सकता
2: है, उसको
1: डिगा नहीं सकता है। माँ वो चीज है
2: जी।
1: चलिए वहीं चलते हैं जहाँ पर परिवार के विखंडित होने की बात है, जहाँ पर एकल परिवार पति पत्नी और बच्चे उतने ही रह गए हैं, वहाँ पर जाकर के मान्यताएं जहाँ पर बदल जाती हैं। बच्चा बीमार होता है ना पुष्पम जी, तो कामकाजी माँ भी परेशान, कामकाजी पिता भी परेशान, और उस समय लगता है कि हम बड़े तो हो गए लेकिन अपनी माँ से अलग होने का जो दंश है, उस समय पता चलता है कि माँ के लिए भी पोता और पोती की जरूरत थी। ये भी बात है, क्या कहेंगे आप?
2: देखिए, एकल परिवार एक शौकिया भी है और दूसरी मजबूरी भी है। जब बाहर नौकरी के लिए निकल जाते हैं, दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है, तो वो सब उठकर जा नहीं सकते क्योंकि एक कहीं व्यवस्थित परिवार होता है, और उस परिवार को फिर छोड़ करके बच्चों के साथ निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में तो बहुत मुश्किलें आती है, जब कुछ घर में बिगड़ता है, जब बच्चे बीमार हो जाते हैं या खुद बीमार हो जाते हैं, तब आवश्यकता पड़ती है। तो एकल परिवार का नुकसान तो है, लेकिन दूसरी ओर एकल परिवार मजबूरी भी है, साथ ही एक जो बच्चों को अच्छे जगह पढ़ाने की बात होती है, आगे ले जाने की बात होती
1: में
2: है, तो वहाँ ये आवश्यक हो जाता है।
1: कार्यक्रम में समय तो अब बिल्कुल समाप्ति पर है, लेकिन चलते चलते एक चर्चा तो कर लेनी चाहिए हमें
2: जी।
1: वो ये कि आज भी अगर दो चार बच्चे हैं ना,
2: हाँ,
1: तो एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, माँ कहाँ रहेगी?
2: मैंने अभी चर्चा की थी आपको कि एक माँ चार बच्चे को संभाल सकती है, लेकिन चार बच्चे मिलकर एक माँ को संभालने के लिए वो सोचते हैं कि माँ कहाँ रहेगी। तो मुझे लगता है कि अगर उस परिवार का जो मुखिया, जिसे मुखिया मानते हैं, उसका बेटा, उसी जगह ये ज्यादा समस्या आती है, ज्यादा समस्या वही आती है। चूंकि
1: मुनव्वर राणा की एक बात याद आती है, किसी को घर मिला हिस्से में
2: जी जी,
1: या
2: हाँ,
1: कोई
2: हाँ,
1: दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था,
2: मेरे हिस्से में
1: मेरी माँ आई है।
2: वो बहुत सौभाग्यशाली होगा जिसके हिस्से में माँ आती है। सारे चीज धरे रह जाते हैं, लेकिन माँ, माँ की यादें, माँ का आशीर्वाद, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता है।
1: दायित्व की चर्चा हो रही थी,
2: माता पिता दोनों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है।
1: चलते चलते एक बात और भी, किसके हिस्से में क्या आया, माँ आई नहीं आई, ये तो बात अलग
2: जी जी,
1: लेकिन जब माँ को वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, ओल्ड एज होम्स में, जो हमारी परिपाटी नहीं रही है
2: जी जी,
1: हमारी परंपरा नहीं रही है, वो क्या है,
2: इसे क्या कहेगा? ये बिल्कुल एक तरह से घृणित बात है। जो माँ या पिता हमें किसी लायक बनाता है, और वो लायक बनने के बाद हम अपनी माँ, अपने उस किए हुए माँ के सपनों को साकार करने के लिए आगे तो निकल जाते हैं, लेकिन उस माँ को वहाँ छोड़ करके, मैं एक बार स्टेशन में मैं जा रही थी दिल्ली
1: जी,
2: मैंने देखा कि एक माँ दौड़ रही है, मेरा बेटा चढ़ गया, मुझको छोड़ दिया। मुझे लगा कि अरे बाप रे, ये इस स्टेशन में कहाँ जाएगी और बेटा उसको छोड़ के जा रहा। तो यहाँ थोड़े मुझे ये कहना है कि वृद्धाश्रम वाली जो बात है, ये बहुत ही असहनीय बात है किसी माँ के लिए, किसी पिता के लिए। देखिए,

0: पाश्चात्य देशों में तो एक अलग बात है कि इस एज के बाद उनको अलग
1: होना है। माँ पर हम चर्चा करें तो समय बहुत कम पड़ जाता है, लेकिन समय से हम बंधे हैं। तो ये बताते हुए कि आज हेलो जिंदगी का विषय था माँ एवं संतान के पारस्परिक संबंध और दायित्व। ये संबंध नहीं टूटने वाले हैं, ये दायित्व बोध कभी कम नहीं होने वाला है। इन बातों को याद करते हुए, दुनिया भर की माँ को सलाम करते हुए, ये बताते हुए चलें कि आज हेलो जिंदगी में बतौर विशेषज्ञ प्रोफेसर पुष्पम नारायण शिक्षाविद, आपने अपना समय हमारे लिए दिया, आपको धन्यवाद कहते हैं, आभार प्रकट करते हैं।
0: आपका भी बहुत बहुत आभार।
1: तो श्रोताओं, मिलेंगे अगले रविवार को दिन में 11 बजे इसी कार्यक्रम में किसी और विषय किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक असद दाऊद के साथ साथ मुझे संजय को अनुमति दीजिएगा। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रविवार 10 मई 2026 को प्रसारित कार्यक्रम हेलो जिंदगी का संपादित अंश। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने ही वाला है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ. शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और अनुगत्य पोषण करिम।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुच्चेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन

0: आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपये नकद और पदक शामिल है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर।

कार्यक्रम विवरण, इसके तहत श्रोताओं जानकारी हम दे रहे हैं आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। 1:10 पर थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। 1:15 से सुनिएगा फिल्म संगीत।

दिन के 2 बजे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से होगा और 2:05 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।

2:10 पर सुनिएगा रोजगार सूचना और 2:15 पर दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। ये थे पहली सभा के शेष कार्यक्रम। एक नज़र हम डालते हैं अपनी दूसरी सभा के ऊपर। दूसरी सभा की शुरुआत शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी के साथ।

शाम 6:25 पर आप सुनेंगे मैथिली संवाद, शाम 6:30 कार्यक्रम गाम घर और 7 बजे खेती गृहस्थी।

मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार रात 8:15 पर, समाचार संध्या रात 8:45 पर। न्यूज़ 9:00 रात।

विविधा ये कार्यक्रम सुना जा सकता है रात 9:30 और 9:45 पर सुनेंगे इंग्लिश टॉक। रात 10:00 सुनिएगा फिल्म संगीत। इसके तहत आज हम आप तक पहुंचाएंगे एक ही फनकार के गाए कुछ गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम देशभक्ति गीत।

ये देशभक्ति गीत समवेत स्वर में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:15 हो चुके हैं और 10 सेकेंड। अभी से बने रहिए हमारे साथ और आनंद उठाइए फिल्म संगीत का। शुरुआत हम कर रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू के आवाज़ों में। फिल्म का नाम है ये सिलसिला है प्यार का। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत जतिन ललित का।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: आकाशवाणी दरभंगा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अगला गीत, हमने लिया है फिल्म सूर्यवंशम से। गीत के बोल समीर के हैं, संगीत है अनु मलिक का, आवाजें अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: सिंदूर फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज को। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा और आनंद उठा रहे हैं इस समय फिल्म संगीत का।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: अगला गीत सुनिए फिल्म तहलका से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। गीत के बोल संतोष आनंद के हैं।

दामिनी फिल्म में अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू को, गीत के बोल समीर के थे और संगीत नदीम श्रवण का था। इसी गीत के साथ ही

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कुछ पल कीजिए प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया। एनटीए ने बताया कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा कि वह सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेगी तथा जांच के लिए जरूरी सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराएगी। एनटीए ने कहा कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हिमंता बिस्व सरमा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। बिहार विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतदान के लिए दोनों जिलों में 25 बूथ बनाए गए हैं। इनमें भोजपुर में 14 और बक्सर में 11 बूथ हैं। उपचुनाव में 6,000 से अधिक मतदाता 6 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। मतों की गिनती 14 मई को आरा में की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। यह दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाता है। इस अवसर पर स्वास्थ्य

0: और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नर्सों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ और आशा का स्तंभ बताया। नर्स दिवस पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता बागी कुमार वर्मा का निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। उनका दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था। उनके निधन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने गहरा शोक जताया है। जाने माने कृषि वैज्ञानिक और पद्म श्री से सम्मानित गोपाल जी त्रिवेदी का आज पटना में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। गोपाल जी त्रिवेदी मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे और उन्होंने लीची की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों की खोज की थी। उनके निधन पर समाज के गणमान्य लोगों ने गहरा दुख जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में मॉनसून के आगमन की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मॉनसून दस्तक दे सकता है। इस बीच विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया के अमौर में सबसे अधिक 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए 3 मई को मुनक़दा नीट UG इम्तहान मनसूख करने का फैसला किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह फैसला तलबा के मफाद और कौमी इम्तहान निज़ाम पर भरोसे को बरकरार रखने के पेश नज़र लिया गया है। NTA ने बताया है कि हुकूमत ने पेपर लीक होने के इल्ज़ाम की मुकम्मल तहकीकात के लिए मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के सपुर्द करने का फैसला किया है। एजेंसी का कहना है कि वो CBI के साथ मुकम्मल तआवुन करेगी और तहकीकात के लिए ज़रूरी तमाम मवाद, रिकॉर्ड और मदद फराहम करेगी। NTA ने मज़ीद कहा है कि इम्तहान के लिए नई तारीख का ऐलान अलग से किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की तफसीलात, उम्मीदवारों की मालूमात और मई के लिए मुंतखब करदा इम्तहान मराकज़ तब्दील नहीं होंगे और दोबारा इम्तहान में वही इस्तेमाल किए जाएंगे। एजेंसी के मुताबिक दोबारा इम्तहान के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी और कोई इजाफी इम्तहान फीस भी नहीं ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हेमंत बिस्व शर्मा ने आज मुसलसल दूसरी बार असम के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा में मुनाक़दा एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हेमंत बिस्व शर्मा के साथ 4 दीगर अरकान असम्बली ने भी बतौर वजीर हलफ लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई मरकज़ी वज़रा और बिहार के वज़ीर आला सम्राट चौधरी समेत BJP की हुकूमत वाली दीगर रियासतों के वज़ीर आला भी तकरीब में मौजूद थे। बिहार कानून साज कौंसिल के भोजपुर बक्सर मकामी अथॉरिटी के ज़िमनी इंतखाब के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान वोटिंग जारी है। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। वोटिंग के लिए दोनों अजला में 25 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 14 भोजपुर में और 11 बक्सर में वाक़ हैं। इस ज़िमनी इंतखाब में 6,000 से ज़ायद वोटर्स 6 उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत का फ़ैसला करेंगे। वोटों की गिनती 14 मई को आरा में की जाएगी। आज आलमी यौम नर्स है। ये दिन जदीद नर्सिंग की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के यौम पैदाइश की मुनासबत से मनाया जाता है। इस साल का मौजू है हमारी नर्सें हमारा मुस्तकबिल। ये दिन मरीजों की देखभाल, समाजी सेहत और मुआशी तरक्की में नर्सों के अहम किरदार के एतराफ़ और उनके एहतराम की अलामत है। इस मौके पर वजीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद JP नड्डा ने नर्सों को मुल्क के सेहत के निज़ाम की रीढ़ की हड्डी और उम्मीद का सुतून करार दिया। नर्स डे के मौके पर राजधानी पटना समेत

रियासत भर में कई प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। साबिक वजीर और राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर रहनुमा बागी कुमार वर्मा का इंतकाल हो गया है। उनकी उम्र 77 बरस थी। उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा था। उनके इंतकाल पर वजीर आला सम्राट चौधरी, नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी, असम्बली स्पीकर प्रेम कुमार और अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव समेत मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया है। मारूफ ज़रई साइंसदान और पद्मश्री एवार्ड याफ्ता गोपाल जी त्रिवेदी का आज पटना

0: प्रसाद यादव समेत मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने गहरे दुख और ताजियत का इजहार किया है। मारूफ ज़रई साइंसदां और पद्मश्री एवार्ड याफ्ता गोपाल जी त्रिवेदी का आज पटना में इंतकाल हो गया। वो गुज़श्ता चंद दिनों से बीमार थे और उनका पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। गोपाल जी त्रिवेदी मुजफ्फरपुर के बाशिंदा थे और उन्होंने लीची को फ़रोग देने के लिए नई तकनीकों की खोज की थी। उनकी मौत पर समाज के मुआज़्ज़िज़ लोगों ने गहरे सदमे का इजहार किया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत में मानसून की आमद के लिए साजगार हालात बने हुए हैं। महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि इस हफ्ते के आखिर तक जनूबी बंगाल के खलीजी हिस्से में मानसून दस्तक दे सकता है। इसी दौरान महकमा का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान रियासत के शुमाली हिस्सों में ज़्यादातर मकामात पर बारिश का इम्कान है। इस दौरान कुछ मकामात पर धूल भरी आंधी चलने की वार्निंग भी जारी की गई है। इधर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पूर्णिया के अमौर में सबसे ज़्यादा 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

आकाशवाणी दरभंगा से अब सुनिए रोजगार सूचना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1865 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 29 अप्रैल से लागू है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है, ग्रेजुएशन की डिग्री हो, ग्रेजुएशन का रिजल्ट 1 अप्रैल 2026 या इससे पहले जारी हो जाना चाहिए, आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष, रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क है सभी उम्मीदवारों के लिए ₹944। और विशेष जानकारी के लिए आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया रिटेन एग्जाम, लोकल लैंग्वेज टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। 72वीं बीपीएससी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 7/5/2026 से आमंत्रित है। शैक्षणिक योग्यता, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। चयन की प्रक्रिया पीटी, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए बिहार बीपीएससी .gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31/5/2026। एक और सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर ग्रेड बी के लिए आवेदन आमंत्रित है। आवेदन 29 अप्रैल से आरंभ है। अंतिम तिथि है 20 मई 2026। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक और स्नातकोत्तर। चयन की प्रक्रिया पीटी और मेंस के आधार पर किया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए आरबीआई के वेबसाइट www.org.in पर देखा जा सकता है। तो अभी आप रोजगार

0: इस समय स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम

0: आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के सेंगोतयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।

0: पावर एलपीजी।
1: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
2: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्तारेल्ला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा।

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। दोपहर समाचार के बाद स्वागत है फिर से श्रोताओं फिल्म संगीत में।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त हुआ। फिल्में थी सिर्फ तुम, तलाश, तेरे नाम, भूल भुलैया और बागी टू। जिन कलाकारों को के गाए गीत आप सुन रहे थे वो थे उदित नारायण, अलका याग्निक, के, अंकित तिवारी और श्रुति पाठक। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

इसी महेश वाणी के साथ ही बज्जिका लोकगीतों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। जिन कलाकारों को अभी सुन रहे थे वो थे जगन्नाथ राय, ब्रजेश कुमार सुमन, कृष्ण कुमार श्याम और बिमला तिवारी। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:20 हो चुके हैं। आज की पहली सभा यहीं समाप्त होती है। दूसरी सभा इसी मीटर पर संध्या 5 आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज का कोई जोर नहीं चलता है कि नहीं।
3: बिल्कुल। और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है। वैसे आम दिनों में वो ना भी सजें, लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है।
2: बिल्कुल।
3: और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी हैं, वो हैं विनीता सिंह, और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक की संस्थापक हैं, उनकी CEO हैं, और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी, मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था।
2: जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहाँ उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई। फिर कई टूर्नामेंट में वो जाती थी और वहाँ पे जीत भी उन्होंने हासिल की। बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया।
3: क्या बात है।
2: और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को कि ये ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी।
3: बिल्कुल, वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था। और उनका जो पहला बिजनेस था, ये एक पृष्ठभूमि जाँच पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता नहीं मिली उन्हें।
2: जी, लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन ये भी जो उनका असली जो जुनून था वहाँ से कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ अभी बाकी है।
3: तो ये जो शुरुआत में असफलताएं उनको मिल रही थी, लेकिन ये सब चीज़ें थी ना उनके लिए एक सबक की जैसे रही, जिससे जो भी बाजार किस तरह का होता है या अपनी क्षमताएं किस तरह से उनको बाहर निकालनी चाहिए, ये चीज़ें जानने में उन्हें बड़ी मदद मिली।
2: जी, और बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने ये समझा कि जो भारतीय सौंदर्य बाजार है, क्योंकि हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं, हाँ। और अलग अलग टाइप्स होते हैं स्किन के, त्वचा के, तो उसके पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ

0: कमी है जो कि किफ़ायती भी हो। और फिर बस क्या था, 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की।
1: और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया काफ़ी किफ़ायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन वो लेकर आई, बाजार में उन्होंने पेश किए। और ये जो ब्रांड था ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेज़ी से इसको अपना ग्राहक बना लिया।
0: जी, कंपनी का एक उत्पाद है चंचल चटक और अलग अलग रंगों का काजल।
1: हाँ,
0: ये बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़कियों में खास तौर पे, और देखते देखते शुगर कंपनी की कई उत्पाद ई प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगे।
1: और वो ऐसा मानती है कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सारे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता। तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाए जाए, उनका ब्रांड इसी चीज़ पर काम कर रहा है।
0: और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं और उनके नेतृत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही है।
1: और वनिता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई। और इस तरह से कहते ना कि वो आगे बढ़ती रहीं और अपनी मंजिलों को हासिल करती रहीं, और हमारी शुभकामना है कि वो और आगे बढ़ती रहें।
0: जी, और वक्त हो चला एक गीत का।
1: जी,

0: बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले हैं भाई वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट्स हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में 100 सुनार की 1 लोहार की ये हम अक्सर सुनते हैं। जो किसी ना किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने भारी वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमजोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता। एक और संदेश है, 100 सुनार की 1 लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
1: जी, और 100 सुनार की 1 लोहार की ये लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का 1 लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके 1 सटीक प्रयास से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
0: क्या बात है। इसी तरह से एक अन्य संदेश है कि ये मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं, और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे, और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव यानी कि जो 100 कौरव थे उनको धाराशायी कर दिया, और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की 1 लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं।
1: तो गीत सुने अबे
0: जी।

0: दीपा, याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन?
1: बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे, और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददिहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के चार भाई थे, जो कि सब उस वक्त वहाँ जमा हो जाया करते थे, और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मज़ा आता था। हमारी चाचियाँ और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं। और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं, क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, या बुआ मौसी के घर जाने के, और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में हैं, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही चंचल। देखो, एक संदेश ये कहता है कि गर्मियों में आना जाना तो लगा ही रहता है बच्चों और परिवार का, कोई नानी के घर, कोई दादी के घर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ ज़रूर बटाइए।
0: इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहाँ ना भटकें, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, गर्मी बहुत तेज़ होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। तो उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं, कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय
1: वो भी। और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल कि आप, वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, जब उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो ना, तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज़ को आप छुपा दीजिए कहीं, और फिर उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज़ ढूंढ कर देनी है। तो सच में उन्हें इतना मज़ा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहाँ उन्हें तुरंत उनके हाथ में न वो आए।
0: और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किस्से कहानियाँ सुनाना बड़े मज़े से आता हो, तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे, जो कोई मतलब पौराणिक कहानियाँ नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें। और वो कहानियाँ उनकी चार चार दिन, पाँच पाँच दिन ख़त्म ही नहीं होती थी। हम इंतज़ार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। तो इस तरह से बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएँ किचन में काम कर रही होती हैं, तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी।
1: वो जो पुरानी छुरी जो होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज़्यादा तेज धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए, आलू काटने के लिए दीजिए, बहुत मज़ा आता है उनको। वो आड़े टेढ़े तिरछे तरीके से काटते हैं, लेकिन जब हम उनको बना के उनको बताते हैं ना, देखो ये आपकी कटी हुई सब्जी है, तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, हमने काटी, वो सब बताते हैं, ये वाले देखो, ये वाला शेप का मेरा है, ये उसका है, इस तरह से बड़े खेल खेलते हैं वो लोग।
0: आप छत का छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में काम करने कहिए, कूलर में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में 1 जून से बच्चों की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं, और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर पर।

0: हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं ये दिन। और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई हैं, मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे तो हम अलग कर ही नहीं सकते। और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज़्यादा ही हमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के खिलाती होंगी। और ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगें तो फिर क्या ही बात है। तो देखो, उनके बच्चों को जो आप बात कर रही थी ना कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा सकते हैं, किचन गार्डन भी लगवा सकते हैं।
1: हाँ,
0: उनके हाथ की उगी हुई जब चीज़ें होंगी ना, तो बड़े वो भी बड़े चाव से देखते हैं कि कैसे
1: और
0: बड़ा
1: इसी
0: हो रहा
1: तरह
0: है।
1: से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे। जब वो खुद पौधा लगाएंगे तो उसे किस तरह से बचाना है, और बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको, तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुन ले गाना।
0: चलिए

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि सखियों से ले लें हम इजाजत।
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, बहुत बहुत बुरे इंसान हैं। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी। मेरे सामने बैठे हैं बहुत ही उम्दा इंसान हैं और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी, अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताज़ा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी,
1: ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा ज़रूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: शरारतों में,
1: हर चीज़ में गुजारते थे और हर मौसम का मज़ा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियाँ खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
1: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहाँ लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से

0: मिलता हूँ और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे, तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द-गिर्द जाते रहे हैं?
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई ये गीत हम क्यों ना सुन लें?
0: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
0: और उसके बोल है, मेरे दिल में है एक बात।

0: तो आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो

0: मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ, हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाज़ारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखें, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे। इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
1: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
0: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
1: जी।
0: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कॉम्पिटिशन थी और उस ज़माने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
1: जी।
0: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
1: उस समय।
0: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
1: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
0: नहीं। नाटक करता रहा
1: जी,
0: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
1: जी।
0: हम मतलब हवा में दौड़ते थे
1: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
0: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफ़ी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
1: जी।
0: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
1: जी।
0: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग
1: थे। तो वो पलट के नहीं देखती थी?
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
1: जी।
0: हमारे अंदर, हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो
1: आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: गया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई
2: जी।
1: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुखबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूँगा, प्रोफेसर बनूँगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूँगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
2: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर

0: ये लेता हूँ ना, रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे ख़त्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं तो सवेरे लेट उठते हैं तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है लेकिन बीच में कभी कभी आया करो ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त 1 साल हुआ था तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
0: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
0: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे होता है हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाए किसी होटल में, चाय पीने जाए, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो ले
1: लेकिन
0: लो।
1: बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
0: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
0: बहुत पुरानी गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
0: जी जी
1: जी।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: मैं पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्ने विकाई चेत। वो नाटक उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिक्कुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी हैं
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपके एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिक्कुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांता भाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
0: उन्होंने मेरे अनंत जोक कर रहे हैं
1: जी, जी। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले
0: उसी रोल के लिए
1: नहीं,
0: हाँ।
1: हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दळवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर,
0: वाह,
1: हाँ। विजय मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजय जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए, लेकिन वो मिली नहीं। फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को, और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज़ बज रही थी, आँखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फ़ोन मुझे आया, दुर्वांची जोड़ी ये एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए
0: जी।
1: मैं तीसरी बार बम्बई आया, तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था फाइनल।

0: मैं आया था वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
1: अरे वाह।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने।
0: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहां गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।
1: अच्छा, इसे सुनेंगे हम अभी?
0: जी
1: जरूर सुनेंगे।

उसके बाद मैं ऊपर गया, दारवकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे और वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना, आप किसी इन जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव अमरापुरकर जी। तो वो दो मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतने जवान हैं, ये कैसे हुआ। तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं आप, ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे उनका ही वो स्क्रिप्ट था, अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है,

0: हाँ मैंने, मुझे याद आया, सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गावाया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दावेकर जी मुझे देखकर कहने लगे, आइए आइए बैठिए। लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई, हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के, जो औरंगाबाद से, वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है, वहाँ से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बात जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ?
0: कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया, तो पिताजी को मैं मिलने गया तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक, और एक लड़के का रोल करता था। वो दो रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरे जी के साथ काम किया, और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था। और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई, और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था। और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी। और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए, और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था, और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार, इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की, और ये कौन से शेट्टी फिट्टी का रोल दे रहे, 2.5-3 सीन का है, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा, मैंने कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे, लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
1: जी।
0: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। 2-2.5 दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था।
1: भूल भी गया
0: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया।
1: क्योंकि आपके अर्ध सत्य के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं
0: जी, जी।
1: और मैं तो कहूं कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया, और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए।
0: जी जी, मैं सचमुच मैं भूल गया, क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं, नाटक खत्म हुआ, मैं कुछ काम के लिए गांव गया।

0: और उस वक्त मुझे वहाँ पे फ़ोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहाँ भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले, अभी इधर ही रहो, उधर जाने की ज़रूरत नहीं, अभी कोई आपका मतलब नाटक बिटक नहीं है। मैं वही रह गया,
1: प्रीमियर में नहीं गया,
0: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी। और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी, कागज़ के फूल, और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

0: वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी। और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घोंट दूं, ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डालें। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
1: हाँ, उस फिल्म में एक बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी हैं। और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी तो कैसे, मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे

0: थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे
1: जी।
0: तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
1: जी।
0: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
1: जी।
0: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ
1: जी।
0: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
1: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस चीज़ से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
0: नहीं, मैं एक्टर हूँ और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है, इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियाँ मिलती हैं लेकिन हमें तालियाँ मिलती हैं।
1: तो उम्र एक अलग चीज़ है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है। मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ?
0: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
1: जी,
0: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट, और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का यूनिक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
1: महारानी
0: का रोल बहुत ज़रूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी यूनिक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे, ऐसा होना चाहिए
1: जी।
0: और उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ। बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूँगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़ी है। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं
1: जी।
0: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफ़ी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली और उसमें काफ़ी अवार्ड्स भी मुझे मिले
1: जी जी।
0: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मज़ा आया। एक उसमें सीन हम करते थे तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत ज़रूरी है कि वो साड़ी पहनकर बात करता है, तो बोले ज़रूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था,
1: मुझे ऐसा लगता है कि
0: प्रोत्साहित करना था।
1: हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया
0: जी,
1: वो ही आपका इसमें
0: जी
1: हुनर।
0: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया, और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते वक्त क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

जी हाँ दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और हम उपस्थित हैं युवा श्रोताओं के साथ कार्यक्रम युवाणी को लेकर के। अभी से लेकर के शाम के 5:40 पर तक हम आपके साथ उपस्थित रहेंगे दोस्तों इस कार्यक्रम में, और अन्य दिनों की भांति आज भी आप सुनेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ लोकगीत। तो देर न करते हुए कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं अरविंद कुमार झा के स्वर में ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे
1: सविता कुमारी के स्वर में ये लोकगीत। युवानी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से कुछ लोकगीत।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सुषमा कुमारी के स्वर में ये लोकगीत। अब सुनिए कल्याणी झा के स्वर में

मुखिया पर। विभा झा के स्वर में ये लोकगीत सुन रहे थे। अब सुनिए, अरविंद कुमार झा के स्वर में ये लोकगीत।

अभी आप कुमकुम झा के स्वर में ये लोकगीत सुन रहे थे और इसी गीत के साथ हमारा युवानी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

भी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब वक्त हो चला है कुछ नए फिल्म में गीतों के प्रसारण का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं कनेक्ट फिल्म का यह गीत, बेनी दयाल की आवाज़, बेनी दयाल एवं हानिया नफीसा की आवाज़।

अभी आप सुन रहे थे भूल भुलैया 3 का यह गीत। पिटबुल एवं नीरज एवं श्रीधर तथा साथियों की आवाज़ में, संगीत निर्देशन तनिष्क बागची का था। और बोलते हैं अरमान मल्लिक के, श्रोताओं क्षमा करेंगे, बोलते हैं अमाल, संगीत निर्देशन अमाल मल्लिक एवं प्रीतम का था। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म भूल भुलैया 3 का यह गीत सुनिए, श्रेया घोषाल की आवाज़ में, संगीत निर्देशन बोल हैं समीर के और संगीत निर्देशन अमाल मल्लिक एवं प्रीतम का है।

अब सुनिए, कार्यक्रम के अंत में दोनों फिल्म का यह गीत अरमान मल्लिक की आवाज में, बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत निर्देशन शंकर एहसन का है।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: मैं लवली निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण

0: में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोड की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब से थोड़ी देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। गांव घर संध्या 6:30 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 7 बजे। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे इसी सभा में संध्या 7:52 पर। मैथिली कार्यक्रम रात्रि 8:15 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविधा कार्यक्रम। रात 9:45 पर आप सुनेंगे इंस्पायरिंग वॉइस। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे अंग्रेजी वार्ता।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे एक फनकार कार्यक्रम। 10:30 पर आप पुनः आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब जानकारी प्राप्त कीजिए कल अर्थात 13 मई को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

कल प्रातः 5:50 पर आप सुनेंगे चिंतन। कृषि चर्चा 5:55 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा 6:05 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे प्रातः 6:10 पर तथा रामचरितमानस गान 6:40 पर प्रसारित किए जाएंगे। नमस्कार मिथिला कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 7:05 पर। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का वक्त होगा 9:10 पर, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे।

फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे दिन के 10 बजे तथा लोकगीत आप सुनेंगे 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत दिन के 11 बजे प्रसारित किए जाएंगे तथा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 30 आप सुनेंगे 11:30 पर। 12 बजे आप आनंद लेंगे कुछ फिल्म संगीत का। बहनों के लिए हमारा कार्यक्रम होगा नारी संसार दोपहर 12:30 पर तथा देशभक्ति गीत आप सुनेंगे दोपहर 1:10 पर। एक 1:15 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्म संगीत।

रोजगार सूचना आप सुनेंगे दोपहर 2:10 पर तथा 2:30 पर आप सुनेंगे दोपहर में कुछ फिल्म संगीत। सुगम संगीत का वक्त होगा दोपहर 3:00। युवानी कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 5:00 तथा विद्यापति गीत 6:10 पर प्रसारित किए जाएंगे। खेती गृहस्थी का समय होगा संध्या 7:00 तथा गांव घर आप सुनेंगे 6:30 पर। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे रात्रि 7:52 पर तथा मैथिली कार्यक्रम सिंगरहाड़ आप सुनते हैं रात्रि 8:15 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। 10:00 आप सुनेंगे लोक माधुरी कार्यक्रम तथा 10:30 पर आप सुनेंगे गीतों के रंग। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए विद्यापति गीत। कलाकार हैं राम कुमार मल्लिक।

0: अभी आप विद्यापति गीत सुन रहे थे। कलाकार थे शारदा सिन्हा। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी हृदयकांत मिश्र। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिलाक लेल 3 मई कऽ होयवला नीट UG परीक्षा रद्द करबाक निर्णय लेलक अछि। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी जनौलक अछि जे ई निर्णय विद्यार्थी सभक हित आ राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिकल विश्वास के ध्यान में राखैत लेल गेल अछि। NTA जनौलक अछि जे सरकार पेपर लीकक आरोपक पूर्ण जाँच लेल मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के सौंपबाक निर्णय लेलक अछि। प्रदेश में एग्री स्टैक परियोजना में किसान सभक फार्मर ID बनेबाक लेल आइ सँ विशेष अभियान शुरू भेल। ई अभियान 30 जून धरि चलत। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा जनौलनि जे फार्मर ID बनेबाक लेल किसान सब के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और अपन नाम सँ बनल जमाबंदी के जनतब देबे पड़त। संगहि लग पासक कॉमन सर्विस सेंटर या पंचायत कृषि समन्वयक सँ संपर्क कऽ सेहो पंजीकरण कराओल जा सकैत अछि। श्री सिन्हा जनौलनि जे ई अभियान डिजिटल इंडिया के औरो गति देत। या ध्यातव्य जे राज्य

0: मे अखन धरि 47,85,000 सँ बेसी किसान सभक फार्मर आईडी बनाओल गेल अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी निजी विद्यालयक मनमानी रोकबाक लेल कड़गर रुख अपनौलक अछि। एक सोशल मीडिया पोस्ट मे श्री चौधरी जनौलनि जे निजी विद्यालय के शुल्कक जनतब सार्वजनिक करय पड़त। ओ जनौलनि जे विद्यालय शुल्क मे मनमानी बढ़ोतरी नहि कयल जा सकत, संगहि कोनो आवश्यक शुल्क पर रोक रहत। मुख्यमंत्री जनौलनि जे छात्र सभ के पोथी आओर पोशाक किनबाक स्वतंत्रता रहत, संगहि छात्र सभक फीस बाकी रहला पर सेहो हुनका परीक्षा देबय सँ वंचित नहि कयल जा सकत। श्री चौधरी जनौलनि जे ई आदेशक उल्लंघन करय पर निजी विद्यालय सभ पर कड़गर कार्रवाई कयल जायत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरीक अगुवाई मे विस्तारित मंत्रिमंडलक काल्हि भोर 10:30 बजे सँ बैसक होयत। ई बैसार पटना मुख्य सचिवालयक सभागार मे होयत, जाहि मे कतेको निर्णय पर मुहर लागि सकैत अछि। विधान परिषदक भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव लेल कड़गर सुरक्षा व्यवस्थाक बीच मतदान सम्पन्न भेल। वोट 14 मई के आरा मे गनल जायत। आई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस अछि। आधुनिक नर्सिंग संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेलक जयंतीक उपलक्ष्य मे ई दिवस मनाओल जायत अछि। एहि वर्षक विषय अछि हमारी नर्से हमारा भविष्य। आजुक दिन रोगी सभक देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास मे नर्स सभक पैघ भूमिकाक सम्मान के देखाबैत अछि। एहि मौका पर स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा नर्स सभक के देशक स्वास्थ्य प्रणालीक रीढ़ और आशाक स्तंभ जनौलनि। नर्स दिवस पर राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET मे पहिल बेर मैथिली भाषा के सेहो शामिल कयल गेल अछि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 6 सितंबर सँ होयवला परीक्षाक 22वां संस्करण लेल आवेदन करबाक काज शुरू कऽ देलक अछि। ऑनलाइन आवेदन जमा करबाक अंतिम तिथि 10 जून अछि। ई रिक्ति मे मैथिली भाषा कोड 25 अछि। पूर्व मंत्री और राजदक वरिष्ठ नेता बागी कुमार वर्माक निधन भऽ गेलनि। ओ 77 वर्षक छलाह। ओ दिल्ली एम्स मे भर्ती रहैत। हुनक निधन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सहित कतेको दलक नेता सब शोक जतौलनि अछि। एम्हर जानल मानल कृषि वैज्ञानिक और पद्मश्री सँ सम्मानित गोपालजी त्रिवेदीक आई पटना में निधन भऽ गेलनि। ओ पछिला किछु दिन सँ बीमार रहैत। ओ मुजफ्फरपुरक छलाह और ओ लीची खेती के बढ़ावा देबाक लेल नव तकनीकक खोज कयने छलाह। हुनक निधन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित कतेको गणमान्य लोक सब दुख जतौलनि अछि। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान में युवा संगमक 6ठम चरण में IIT पटना के पंजाब IIT रोपरक संग जोड़ल गेल अछि। IIT पटनाक निदेशक TN सिंह आकाशवाणी समाचार से गपशप में जनौलनि जे एहि में पंजाबक 60 चयनित युवा बिहार औता और बिहारक युवा सब पंजाब जेता। वो जनौलनि जे एहि सब प्रतिभागी सब के राज्यक सांस्कृतिक विविधता, परम्परा, तकनीक आ सामाजिक जिंदगी के बूझब समझब अछि। मौसम विभाग जनौलक अछि जे प्रदेश में मॉनसून अयबाक अनुकूल परिस्थिति बनल अछि। मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान में जनौलक अछि जे एहि सप्ताहक अंत धरि दक्षिण बंगालक खाड़ी में मॉनसून आबि सकैत अछि। एहि बीच विभाग जनौलक अछि जे अगला 24 घंटाक दरमियान राज्यक उत्तरी क्षेत्र में बेसी ठाम वर्षा भऽ सकैत अछि। एहि बीच किछु ठाम अन्हर बिहाड़ि के लऽ कऽ चेतावनी जारी कयल गेल अछि। एम्हर पछिला 24 घंटाक बीच पूर्णियाक अमौर में सबसे बेसी 26 मिलीमीटर बारिश भेल अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गांव घर।

0: श्रोता लोकन के सत्तो भाई के दिशा नमस्कार।
1: खुश रहू, दंदनायत रहू सत्तो भाई। संगे संग जे नव ऊर्जा के युवा
0: युवा
1: लोकन छे,
0: हाँ,
1: उनका सबके छे से नव ऊर्जा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत।
0: हाँ,
1: देखियो सत्तो भाई, स्वच्छता अभियान जे वो अहाँ के देश और समाज के बदले वाला एक पैघ अभियान है। स्वच्छता में भगवान के बात होती है।
0: स्वच्छ रहो तखने स्वस्थ रहो।
1: स्वच्छ
0: रहवा के लिए स्वच्छता बड़ बेसी आवश्यक है। एकर जे आंदोलन है से 2014 से भारत में एक प्रमुख व्यवहार में परिवर्तन आंदोलन जकरा कहे छे ओ लेल गेल।
1: स्वच्छता अभियानक सफलता में ग्रामीणक भूमिका रीढ़क हड्डी के समान होइ
0: छे।
1: शौचालय के निर्माण, ओकर नियमित उपयोग, ओडीएफ स्थिति बना के रखने, गाम में ठोस तरल कचरा प्रबंधन और साफ सफाई के प्रति व्यवहारक परिवर्तन में ग्रामीणक सक्रिय भागीदारी से गाम के स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित बनाओल जा सकी है। क्या तो जैठ हम स्वच्छता है अहाँ कहबे कलूँ कि ओहिठाम आरोग्यता अछि, आ जँ आरोग्यता अछि तऽ मन में प्रसन्नता अछि, आ प्रसन्नते के वातावरण में कोनो विकासक गप या काज भ सकै
0: छै। आइ में 55 लाख से अधिक गाम ओडीएफ प्लस बन चुकल अछि, जत ग्रामीण शौचालय उपयोग कर रहल छथि, कूड़ा प्रबंधन भ रहल अछि, सामुदायिक स्वच्छता गतिविधि भ रहल अछि, आ अइ में सब आदमी श्रमदान सक्रिय रूप से भाग लऽ रहल छथि। ओहि में युवा होत, चाहे बुजुर्ग होत, चाहे महिला होत, सब आदमी के देखै छी जे जखन भाग लेने रहै छथि तब बड नीक लागैत अछि जे हमरो गाम एना ही स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। कि
1: ग्रामीण द्वारा घर घर शौचालयक निर्माण
0: चाहिए
1: और खुला में शौचक नीक जेना बंद केनाइ, जे कि मिशनक मुख्य उद्देश्य छै। व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता के प्रति अपन मानसिकता बदलना, हाथ धोना है और गंदगी नहीं पसारे का आदत अपना
0: है।
1: क्या देखियो अपना सबके जीवन का आदत में स्वच्छता का पैघ स्थान है। आप देखियो जैसे अपने सब बाहर से आबे छी तो हाथ पैर धोबे छी,
0: एक जीवन में अपने
1: हाथ पैर धोबे छी, माथा पर जल का छै से आंग छै छिटै छी, ताकि कोनो प्रकार का छै से आहा के जे प्रदूषण है, गंदगी है, वो हमरा संगे घर में नहीं आबे तो ई तो आदत में आहा के शामिल है। अब आवश्यकता एक गप का है कि अपने लिए स्वच्छता नहीं रखू, बुझलहुँ, अपन परिवार लिए नहीं रखू। अब ई नहीं कि घर का जो कचरा है ओकरा सड़क पर फेंक दियो या दोसर के अंगना में फेंक दियो, किया तो अपने स्वच्छ तो रहबे करी आ दूसरों का स्वच्छ राखी, दूसरों का स्वच्छ राखी जे गली है, मोहल्ला है, चौक चौराहा है, ओकरो साफ सुथरा राखी, तखने अहाँ का स्वच्छता अभियान का सार्थकता है।
0: चाहिए आ सामुदायिक स्वच्छता जना कि लोग खुद आगा बढ़ कर गांव में जना नाली भेल, सार्वजनिक स्थान भेल, एकर साफ सफाई कर रहल छथि, कूड़ा प्रबंधन भ रहल अछि, बहुतो जगह देखबे जे कूड़ा के लेल अलग अलग अहाँ के डब्बा जे अछि से राखल रहैत अछि, आ सामुदायिक रूप से जे अहाँ के अति दूर वाला जगह है ओत जाकर ओ कचरा के निष्पादन कैल जात अछि। तैसे हमर गाम स्वच्छ रहते अछि। आइ के लेल बहुत रास गाम में देखबे जे स्वच्छता अभियान चलायल जा रहल अछि, बहुतो गाम में
1: एकटा ई नै हेबाक चाही कि अइठाम के गंदगी समेट लेलहुँ और अगले बगल में दोसर जगह जाकर दो दलों
0: दो दलों छै
1: अहाँ गांव से टोला से दूर जाकर जे खाली जगह है खेते तो ओइठमा छै से गंदगी का वो बाहर में नहीं छोड़ी। आप तो एहन तकनीक बन गेल हां कि ओकरा डंपिंग को ओकरा जमीन के अंदर में खोद कर जमीन के अंदर में दो दे आ वह खाद जे छै वहां का खादक रूप धारण कर लिया कचरा छै से आ माटि के उपजापन के बढ़ाबै है।
0: आज में महिला, बुजुर्ग, युवा सामूहिक रूप से स्वच्छता अभियान में भाग लऽ रहल छथि, तो ये बड बेसी आवश्यक है जे सब आदमी के जे प्रयास रहत तहने ये उद्देश्य पूरा भ सकत है। जीवन में गुणवत्तापूर्ण जे ये स्वच्छता वो अपने स्वच्छ भारत मिशन के एक बहुत सफल अभियान
1: यहाँ के अइ में जन भागीदारी बड़ आवश्यक
0: छै।
1: कोनो योजना सिर्फ सरकार का छै से अहाँ के देख रेख में सफल नहीं भ
0: सकत,
1: जाबत तक ओहि में पर्याप्त मात्रा में जन भागीदारी नहीं
0: है। हाँ,
1: हाँ। सुनिश्चित केनाइ कि गाम में कतौ गंदगी नहीं हुआ और सार्वजनिक स्थान जना स्कूल भेल, आंगनबाड़ी केंद्र भेल या छै से अहाँ के खेलक मैदान भेल तो साफ सुथरा रहबाक चाहिए। ग्रामीण के अही प्रयास से स्वच्छ गाँव, समृद्ध गाँव के लक्ष्य हासिल कैल जा सकै।
0: गाँव में नाला के प्रबंध कैल गेल अछि, तो नाला के ई नहीं जे कूड़ा कचरा से जाम कर दिए तो ऊ पानी अहाँ के जखन बरसात आबे छै तो ओ लग जात अछि, तो हमरा लोग

0: लेकिन के अपनेसँ ओकरा साफ सफाई करबैत रहबाक चाही, ई नहि जे छोड़ि देबाक चाही। तऽ एहिसँ साफ सफाई रहत तऽ हमरे लेल ओ आवश्यक हैत, हमरे लेल नीक हैत। तऽ ई
1: एहिमे अहाँके ग्राम पञ्चायतके सेहो पैघ भूमिका
0: छै,
1: बुझलहुँ। एस बी एम जी चरणके अहाँके अन्तर्गत ग्राम स्तर पर निर्मित होइवला सब प्रकारके सम्पत्तिके योजना प्रक्रियाके नेतृत्व करैत अछि आ माँगके बढेनाइ, स्वच्छताके बढ़ावा देनाइ, आई सी क्षमता निर्माण, शौचालयक निर्माण, रख रखाव, एकल खादि खोदिकऽ शौचालयके जीर्णोद्धार आदिके लेल सामुदायिक जे भागीदारी अछि ओहिके माध्यमसँ एहि कार्यक्रमके क्रियान्वयन
0: तऽ हमरा लोकनिके सब आदमीके एहिमे भाग लेबाक चाही आ बढ़ि चढ़ि कऽ भाग लेबाक चाही, किएकि स्वच्छतेमे सब भगवानके वास होइत अछि आ स्वच्छतेमे हमरा लोकनि स्वस्थ रहै छी।
1: वास्तवमे कोनो योजना जे सफल होइए तऽ ओहिमे जन उत्साह बड़ आवश्यक
0: छै।
1: जखन उत्साहके साथ कोनो काज करबै तखन ने सफल हेबै आ जब उत्साहके सङ्गे काज नहि करबै तऽ सफल नहि हेब। आ एहिमे अछि कि अहाँके एक एक आदमीके एहि कार्यक्रमसँ जुड़ाव हेबाक चाही, किया तऽ छै से स्वच्छतामे अहाँके आरोग्यता आओर प्रसन्नता अछि। स्वच्छता जाहिठाम अछि ओहिठाम समृद्धि अछि, ओहिठाम लक्ष्मीके वास
0: अछि,
1: बुझलहुँ, ओहिठाम सुख शान्तिके वास अछि।
0: तऽ एकदम स्वच्छ रहबाक चाही। आ गोपी भाई गपशप आब भेल, आब श्रोता लोकनिके एकटा गीतना सुना दै छी।
1: हँ, सुनाबियौ।
0: सुनल जाए।

0: एखन सतो भाई बहुत निक छे से देवी गीत सुने छलु अपने सब अरविंद कुमार झा आ ओम प्रकाश सिंह के स्वर में कतेक छे से स्वर मधुर छल आ एकदम माँ भगवती के प्रति समर्पित गीत छल। वास्तव में जो हुनकर प्रति हम सब समर्पण राखे छी तो हुनक आशीर्वाद भेटत अछि आ हुनके आशीर्वाद से जीवनक सर्वांगीण विकास होय छै। आ देखियो सतो भाई राष्ट्र निर्माण में युवा लोकन के पैग योगदान होते है क्या युवा लोकनिक में अथा ऊर्जा होते आ वो अपन ऊर्जा के जो सकारात्मक दिशा देता राष्ट्र निर्माण में लगेता तो इतिहास गवाह है कि युवा लोकनिक के पैग योगदान रहल है स्वतंत्र आंदोलन में राष्ट्र निर्माण में
1: चाहे स्वच्छता हुआ चाहे
0: कोनो अभियान में हाँ
1: तो ओहिमे हुनकर भागीदारी आगा यदि रहै छै तो देश आगा बढ़ैत अछि
0: एकदम
1: तो ओहि पर आइ पर चर्चा
0: अपना सबके जे देश है ओ तो युवा के देश है किया तो देश में
1: देश के पैग जनसंख्या
0: देश में अहाँ के 60% से बेसी युवा जे है ओ युवा के जनसंख्या है बुझलहुँ तो कह सकै छी हम सब के हमर सब के देश जे है ओ युवा देश है तो राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान एहि विषय पर बाह्य ध्वनंकन पर आधारित एकटा परिचर्चा हम सब सुनब प्रतिभागी छथि
1: गपशप करै छलहुँ हैं जे हुनकर राष्ट्र निर्माण में पैघ भूमिका छनि तऽ निश्चित रूपे हमरा लोकन के चाही जे युवा जे छथि से सब चीज में आगा बढ़ि कऽ भाग लैत ओ स्वच्छते किया कहै छै राष्ट्र निर्माण हुए चाहे कोनो तरीका के अभियान हुए आंगनबाड़ी केंद्र हुए चाहे विद्यालय हुए सबके स्वच्छता बनबो में युवा के बड़ बेसी भागीदारी छन। संगे बुजुर्ग लोकन छथि उनको भागीदारी छन, महिला छथि उनको भागीदारी छन, लेकिन युवा वाला देश अपन सबक अछि। अपन सबके देश में पैग जनसंख्या में युवा छथि तो युवा के सबसे पैग महत्व कंधा पर बन जाय छन जे हमर सबक गाम कना स्वच्छ रहत स्वस्थ रहत। तो जखन हमरा लोकन स्वच्छ देश के बनाएब तखने स्वस्थ रह सकै छी। एहि लेल आवश्यक अछि जे स्वच्छता पर बेसी से बेसी ध्यान दी और स्वच्छता एक तरीका से नहि कूड़ा निष्पादन भऽ गेल, कूड़ा प्रबंधन भऽ गेल, नाली के कचरा प्रबंधन भऽ गेल, सब चीज पर ध्यान देनाइ आवश्यक भऽ जाइत अछि। तखने हमरा लोकन के जे देश अछि गाम अछि से स्वच्छ रहत स्वस्थ रहत। की अने गोपी भाई
0: देखियो गाम घर में जे युवा लोकन के जो भूमिका है स्वच्छता अभियान में तो देखबे करे छे अपना सबके पुबाइट टोल में देखने हेबे कि युवा लोकन मिलकर छे से जे सामुदायिक केंद्र है ओकरा एकदम चकाचक कर देने
1: हाँ
0: आ बड़ उत्साह से वो भागीदारी करिए तो उनही छे से युवा लोकन के राष्ट्र निर्माण में बड़ पैघ भागीदारी है। स्वतंत्र आंदोलन में खुदीराम बोस छले इतने कम उम्र में वो सब अहाँ का देशक आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गया तो युवा लोकन में अथा ऊर्जा होते अब आवश्यकता एक गप के कि उनकर ऊर्जा का राष्ट्र निर्माण में लगाल जाए उनका एहन प्रेरित कैल जाए कि वो राष्ट्र निर्माण में उत्साह से भागीदारी करें आ संगे संग छे से सब गोटा मिलकर राष्ट्र निर्माण के एक महापर्व ओहि में अपन भागीदारी कर महापावन में और वो अपन उत्साह से ओहि में काज करे तखने राष्ट्र निर्माण है तो हम सब परिचर्चा सुने
1: सुनल
2: हम सारा मोहनपुर गाम में आयल छी

0: हाँ अखन हमरा लोकनि हमरा अंगना में उग गेल चांद ये राधा मोहन मिश्र के गाल गीत सुन रहा छल
1: बड़ नीक गीत छल
0: हमरा लोकनि गप करै
1: छल आइ गीत में अपन सब के जे आंचलिक आंचलिकता है ओकर छै से एमे महक लाग रहल छल आ देखियो वास्तव में छै से स्वच्छता अभियान में ग्रामीण के लोकन के पैघ भागीदारी भ रहल अछि अइ द्वारे देखबे कि जते गाम में टोल मोहल्ला या सब जगह एकदम चकाचकी छै आ अपना सब के जे ओ छै गाम के जे पुबै टोल में जे रामू काका छै रामू काका के देखलियन कि एकदम रवि के ओ स्कूल में शिक्षको छै रवि के छुट्टी छलन एकदम फान तार बांधने आ पांच गो दस गो युवा के लऽ गेलै आ ए ओ चौक जे छल हम चौक के सफाई में भिड़ गेलै आ एक एकटा जे अहाँ के कागज पुर्जा जतेक कचरा छल सबके समेट के आ चौक के एकदम चकाचक कऽ देलनि तो वास्तव में देखियो कोनो चीज के प्रति समर्पित होबय पड़ै छै जो अहाँ कोनो चीज के प्रति समर्पित हेबै तो ओकर परिणाम अहाँ के निक हैत आ जो अहाँ समर्पित नहीं हेबै आधा अधूरा मन से कोनो काज करबै तो ओहि काज में जैसे सफलता संदिग्ध रहिए बुझलो कि नहीं तो एहिमे एक आदमी के तो काज अछि एहिमे जन भागीदारी हेबाक चाही टीम वर्क हेबाक चाही जब टीम वर्क के भावना से काज करबे कि प्रत्येक व्यक्ति के जवाब दे कि ई काज निक जना है तो जरूर निक जना काज है आई जे बुझबे कि जैसे हम सतो भाई का काज नहीं हमर काज नहीं है तो ओ काज छै से अहाँ के सफल नहीं भ सकैए तो रामू काका के नेतृत्व ओ टोल के जते के युवा छले थे सब लोकन छै से एकदम बढ़ चढ़ के भाग लेलन आ एकदम ओ टोल के एकदम चकाचक कर देलन छै
0: और सरकारो दिस से निर्मल ग्राम जे है ओकरा घोषित कयल जाइत अछि जे गाम बेसी स्वच्छ रहैत अछि सुंदर देखाई पड़ैत अछि सड़क साफ सफाई रहैत अछि गाम के साफ सफाई रहैत अछि तो ओकरा सरकार दिस से निर्मल ग्राम घोषित कयल जाइत अछि तो हमरा सब के चाही जे जत्ते गाम अछि ओ सब गाम निर्मल हुए स्वच्छ रहे क्या पहिने हमरा लोग देखे छलौं जे बाहर में शौचालय जाए छलौं अब घर घर शौचालय भ गेल तना ही यदि हमरा लोग जनभागी बना लेब जनभागीदारी बना लेब जे शौचालय जना घर घर भ गेल तना ही स्वच्छता घर घर यदि बास भ जाए तो निश्चित रूपे गाम जे से सब गाम निर्मल भ
1: जाए अरे ना सरकार जे इतने खर्चा कर रहल है अहां का शौचालय के लिए पैसा दे रहल है तो ओ पैसा के अहां सदुपयोग करियो ना शौचालय बनाबू गंदगी के नहीं पसारू आ जखन छै से सरकार के योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन करै छिए तो निर्मल गाम के छै से पुरस्कार भेटैत अछि कतेक मन खुश होइया गदगद होइया कि हमर गाम छै से स्वच्छ अछि निर्मल अछि
0: आ ओहि में मुखिया भेल वार्ड सदस्य भेल
1: सबके
0: भागीदारी
1: सबके भागीदारी देखियो जन जन के भागीदारी हेबाक चाही सतो भाई बिना जन जन के भागीदारी के कोनो योजना सफल नहीं भ सकैए
0: हाँ तो हमरा लोकन के चाही जे वार्ड सदस्य छै चाहे मुखिया छै तो गाम यदि स्वच्छ कयो साफ सफाई नहीं कर रहल छै तो उनका से कहबा के चाही जे एतय साफ सफाई नहीं भ रहल अछि तो उनका संज्ञान में एतनि तहन ओ साफ सफाई करा देता
1: करा देता
0: तो एहि के लेल देखे थे वार्ड वार्ड में अहाँ के जाकर कचरा प्रबंधन कयल जाइत अछि कचरा उठाया जाइत
1: अछि कचरों में दू तरह के कचरा अछि ठोस कचरा प्रबंधन आ तरल कचरा प्रबंधन तो जब दुनू का प्रबंधन नीक जना हैत आगो कचरा के छै से ओहिसँ खाद बनैए कचरासँ सड़क बनैए आप देखियो कोनो चीज अहाँके वेस्टेज नहि छै कोनो चीज बर्बाद नहि छै सब चीज के उपयोग छै आवश्यकता गप कहि के ओकर उचित प्रबंधन कयल जाइ छै तऽ आप देखियो गाम घर के जे समय अछि सतो भाई ओ तऽ अहाँके सम्पन्न भ रहल अछि आब हमसब खेती पथारी के कार्यक्रम खेती गृहस्थी दिस चली तऽ खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई लोकनि के हार्दिक स्वागत अछि आज एखन जे खेती बाड़ी हम सब कर रहल छी देखिए रहल छी किछ बरसो तरसो भेल हँ मुदा छै से खेत में देखैत हेबै कि एतेक ने रासायनिक खाद के उपयोग भ रहल यऽ कि चारू दिस प्रदूषण पसरि रहल यऽ भूगर्भ के जल जे अछि ओ प्रदूषित भ रहल यऽ जे फसिल के गुणवत्ता अछि ओ प्रभावित भ रहल यऽ मनुष्य के स्वास्थ्य प्रभावित भ रहल यऽ आ वायु प्रदूषित भ रहल यऽ एहि लेल आवश्यक सत्व भाई कि हमर सबके जे प्राचीन जे परंपरा छल कि जैविक खाद के बेसी से बेसी उपयोग जीवाणु खाद के ओहि खाद के बेसी से बेसी उपयोग करबाक चाही ई अहाँ के सस्तो पड़ैया आ दोसर बात कि एहि खाद के उपयोग से फसिल के गुणवत्ता तो बढ़बे करैया माटि के जे उपजाऊपन यऽ सेहो बनल रहैया आ प्रदूषण कोनो प्रकार के नहीं पसरैया आ फसिल में गुणवत्ता तो हेबे करे ओकर स्वाद कते अपूर्व होइए अब हमर गाम के

0: के जतः घर हमर अछि ओहिके पछवाड़ा में हमर अहाँके 15 धूर जमीन छल, तो ओहिठाम पोरका साल आलू के अथी केलहुँ अपने से जैविक खाद के, ओहिमे रासायनिक खाद के बिल्कुल उपयोग नहि, गोबर आ छौर बुझलहुँ। अब ओ आलू एतेक स्वादिष्ट कोई आलू में हल्को तेल दियो, नमक दियो, ओकर जे चोखा या सब्जी तीमन तरकारी एतेक नीक बनैए, तो देखियो स्वादो ओकर बनल रहल, गुणवत्तो बनल रहल आ उपजोपन छै से अहाँके खूब भेल, उपजा खूब भेल।
1: आ रासायनिक खाद के अंधाधुंध जे उपयोग करै छी कोनो खेती में, तो अहाँ के देखबै जे 5 बरस 10 बरस बेसी उपजा तो दऽ देत, लेकिन बाद में खेत के उसर कऽ देत,
0: उसर भऽ जाइए खेत।
1: तो हमरा लोकन के चाही जे जैविक खाद बेसी से बेसी किसान भाई के अपनेबाक चाही, आ माटि के उर्वरता के पुनर्जीवित करम में आ फसल के उत्पादन गुणवत्ता बढ़ावे में अहाँ के ई बड़ बेसी आवश्यक है जैविक खाद।
0: जैविक खाद
1: गोबर भ गेल, कम्पोस्ट भ गेल, वर्मी कम्पोस्ट भ गेल आदि जे बनल प्राकृतिक खाद है जे माटि के संरचना के सुधारित है, ओ तत्व के धीरे धीरे अहाँ के बढ़ावत है, हानिकारक रसायन के बिना पर्यावरण के संरक्षित रखत है। ओहन
0: जैविक खाद जे ओ माटि के उपजाऊ क्षमता संरचना और जल धारण क्षमता के बढ़ाकर टिकाऊ खेती में पैघ भूमिका निभावत है। प्राकृतिक पोषक तत्व जो हो प्रदान क गाछ के रोग प्रतिरोधक बनाबत है, फसल के गुणवत्ता के सुधारित है और माटि के जो लाभकारी सूक्ष्म जीव ओकरा बढ़ाकर रासायनिक खाद के प्रति जो हमर सब के निर्भरता है ओकरा कम करते
1: छै है। आ संगे
0: जैविक खाद का जे प्रमुख उपयोगिता लाभ है कि माटि के उपजाऊपन में सुधार, ई माटि में कार्बनिक पदार्थ के मात्रा बढ़ाबित है जैसे माटि उपजाऊ बनल रहित है, जल धारण क्षमता तो बढ़बे करिए, जैविक खाद की करिए माटि के भुरभुरा बना दे, जैसे माटि के जल सोखे के और रोके के क्षमता में वृद्धि होते, पोषक तत्व का संतुलित आपूर्ति, ई गाछ के मात्र मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशे ने परंच कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर जेहन सूक्ष्म पोषक तत्व धीरे धीरे लगातार प्रदान करे दे,
1: संगे फसल उत्पादन में वृद्धि करे दे, एकर उपयोग से पौध के जे जड़ होते है ओकर विकास बढ़िया होते है, कल्ला ज्यादा निकलत है, अंततः फसल के पैदावार जे है वो बेसी होते है।
0: हाँ, माटि के स्वास्थ्य में और सूक्ष्म जीव जे केचुआ भेल या आन जे मित्र किट भेल ओ अनुकूल वातावरण के निर्माण करिया जे माटि के जैविक गतिविधि के बढ़ाबैया आ पर्यावरण के कहबे कहलहुँ कि अनुकूल बनाबैया।
1: मित्र सूक्ष्म जीवी के बढ़ावा ऐसे माटि में रह वाला जे लाभकारी बैक्टीरिया है जना कि केचुआ भ गेल एकर संख्या जे है से माटि में उपलब्ध रहत है आ माटि बेसी दिन धरि स्वस्थ रहत है।
0: आ उत्पादक गुणवत्ता, एकर उपयोग से फल भेल तीमन तरकारी भेल ओकर स्वाद सुगंध आ पोषण के गुणवत्ता में सुधार करत है और बहुत दिन तक वो सुरक्षित रहिए। अच्छा, माटि के संरचना के दीर्घकालिक रूप से सुधारित है आ भूमि बंजर हो से बचत है। आपको जैविक खाद में कंपोस्ट भेल जे घर आ खेत के कचरा से बने, वर्मी कंपोस्ट भेल जे केचुआ द्वारा तैयार हो, आ सरल गोबरक खाद से गोबरक खाद बने, आ हरियर खाद जे हो जना ढेचा भेल सनई भेल ओकर खेती कर लिया और फसल के फिर अहाँ का की करू कि ओकरा माटि में दबा के रख दियो, हाँ फिर वो खाद बन जाए। तो खेत में आमतौर पर प्रति एकड़ 5 से 10 टन नीक जना सरल जैविक खाद के उपयोग केने आदर्श मानल जाते, ऐसे मुख्य रूप से बाव के जे करे छी हमसब या रोपाई से पहिने खेत के तैयारी के समय माटि में मिला दी तो सबसे ही उत्तम गप रहत
1: आ रोग कीट प्रतिरोधी सेहो होइत अछि। जैविक खाद के यदि हमरा लोकन पोषित पौध में अधिक उपयोग करै छी तो पौधा तो स्वस्थ रहते अछि, संगे रोग व्याधि जे अछि कीट ओ सेहो कम लागत अछि, एकर क्षमता अधिक होइत अछि जैविक खाद यदि उपयोग करै छी तो ऐसा कीट अहाँ के प्रतिरोधी होइत अछि, जाहिसँ जैविक खाद में अहाँ के कीट के जे संख्या अछि ओ कम लागत अछि बहुत कम। पर्यावरण के अनुकूल राखे में रासायनिक खाद के अलावा जैविक खाद जे माटि के जल स्रोत के प्रदूषित नहीं करते अछि, संगे मुख्य रूप से वर्मी कंपोस्ट गोबर के खाद हरियर खाद तरल जैविक खाद के उपयोग खेती में अधिक लाभदायक होते।
0: आगू हम सब गप सप करब मुदा ओहि से पहिने किसान भाई लोकन के गीत सुना दियो।
1: सुनल जाए

0: गोपी भाई हमरा अखन गीत सुनै छलौं फसल गीत बड नीक गीत छल
1: के छलै कलाकार अहाँ के पूनम कुमारी छलै तऽ बहुत नीक गीत छल आ देखियो सतो भाई अपने सब जैविक खाद के उपयोगिता के बारे में चर्चा करै छलौं जैविक खाद जे होइत अछि ओ खेती के जड़ होइत अछि आब जैविक खाद के उपयोग जे करै छी तऽ माटि के गुणवत्ता से बनल रहैए फसल के गुणवत्ता से बनल रहैत अछि पर्यावरण सेहो छै से संतुलित रहैए प्रदूषित नहि होइए आ संगे संग उपजापन खे बने फसल के जो अहाँके उपजा अछि सेहो बढ़ैत अछि ताहिमे तऽ चारू दिस अहाँके लाभे लाभ यऽ आ संग संग एकटा गप और कहब कि एहिमे लागतो बड़ कम अछि बहुत कम यऽ रासायनिक खाद के मुकाबले में
0: छै आ संगे देखबै जे गाम घर में वार्डे वार्डे अहाँके गीला कचरा हुए चाहे सूखा कचरा हुए ओकरा प्रबंधन लेल घर पर आबैत अछि ओकर आदमी अहाँ डब्बा में राखि दियौ ओ लऽ कऽ जायत आ जतय गाम सँ दूर निष्पादन कयल जाइत अछि ओतय जा कऽ ओ निष्पादन कऽ दैत अछि तऽ हमरा लोकनिके चाही जे अपन कचरा के जे स्थान अछि ओतय नीक जना घर के बाहर सोहारि कऽ राखि देबाक चाही आ कचरा प्रबंधन वाला जखन आयत तहन ओ कचरा के

0: निष्पादन कऽ देत तऽ ई पर ध्यान देनाइ बड बेसी आवश्यक अछि,
1: बहुत आवश्यक अछि। आ संगे संग किसान भाई लोकनि जे किछु समसामयिक सुझाव अछि ओ दऽ दियौन, की हेबाक चाही, खेती बाड़ी कोना करबै अपने। तऽ देखियौ सतो भाई, सबसँ पहिने तऽ ई कि एखन जे वर्षा भेल हँ तऽ खेतमे नमी बनि गेल हँ, तऽ एहि नमीके वातावरणमे आवश्यक ई अछि कि सबसँ पहिने छै से खेतमे जे अहाँ गोबर देबै या कम्पोस्ट देबै, गोबरक खाद देबै, तऽ ओकरा छै से खेतमे

0: तो बर हैत आ संगे संग ऐसे ये हैत कि माटि के गुणवत्ता बढ़बे करत आ फसिल के जो गुणवत्ता या सेहो बढ़त
1: छै है। संगे अदरक के बुआई जे है से किसान भाई अखन कह सकै छथि एकर अहाँ के 15 जे अथी तारीख 15 मई
0: अच्छा
1: 15 मई से लग 15 जुलाई धरि एकरा अहाँ के कैल जा सकैत अछि। तो हरदि जे अछि एकरो बुआई किसान भाई कऽ सकै छथि। तो एकर जे अनुशंसित प्रभेद जे अछि तकर अहाँ के रोपाई किसान भाई करैत आ ई छाहरि वाला स्थान जे होइत अछि तहू में एकर खेती कैल जा सकैत अछि।
0: देखियो उत्तर बिहार के जिला के किछ स्थान पर मध्यम वर्षा भेल जेकर परिणाम स्वरूप खेत में पर्याप्त नमी अछि तो बौ के लेल एकदम ही अनुकूल
1: परिस्थिति
0: छै। तो किसान जे छथि ओ अहाँ के बाउ के एकदम आरम्भ कऽ देबाक चाही। हरित के जेना उन्नत किस्म भेल राजेंद्र सोनिया राजेंद्र सोनाली उत्तर बिहारक लेल अनुशंसित अछि। खेतक जोताई में 25-30 टन गोबरक सरल खाद नेत्रजन 60-75 किलोग्राम स्फुर 50-60 किलोग्राम पोटास जे या ओ 100-120 किलोग्राम आ जिंक सल्फेट 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करबाक चाहिए। और हरदि के लिए बिया दर की है तो 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर राखी। बिया प्रकंद का आकार जो है वो 30-35 ग्राम जैसे 4-5 स्वस्थ ओ में कली हुए और रोपाई के जो दूरी राखी वो 30 सेंटीमीटर लाम और 20 सेंटीमीटर अहाँ के चौड़ा हेबाक चाहिए। खाद जे हुआ वो 5-6 सेंटीमीटर राखी
1: संगे अहाँ के आद के जे से मारान आ नदिया जे किस्म है वो उत्तर बिहार के लेल अनुशंसित किस्म है। खेत के जोताई अहाँ के 25-30 टन जखन होइत अछि तखन गोबर के सरल खाद नेत्रजन दऽ देबाक चाही। तकर बाद नेत्रजन के 30-40 किलोग्राम स्फुर 50 किलोग्राम पोटास 80-100 किलोग्राम जिंक सल्फेट 20-25 किलोग्राम उपयोग करबाक चाही किसान भाई के। संगे बोरेक्स 10-12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करबाक चाही। आ आदि के लेल बिया दर जे अछि से 18-20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर राखी। संगे अहाँ के बिया के प्रकंद के आकार 20-30 ग्राम जाहि में 3-4 स्वस्थ कल्ली हुआ ओकरा रोपाई करबाक चाही। 30×20 सेंटीमीटर के दूरी रखबाक चाही आ नीक उपज के लेल अहाँ के रेडोमिल दवाई जे अछि ओकर 0.2% घोल के सब उपचारित केला के बाद बिया के बुआई करबाक चाही।
0: लत्ती वाले वाला जे होय अहाँ के तीमन तरकारी जे होय जेना करेला भेल सजमनि भेल खीरा भेल ओहि में लाल भृंग कीट से बचाव के लेल डाइक्लोरोफॉस 76 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर जल के दर से ओकरा ओमें घोर दी आ छिड़काव करी। लेकिन छिड़काव तखन करी जखन कि आकाश साफ
1: साफ रहे सुबह शाम के समय में करबाक चाहिए।
0: ओलक रोपाई के सेहो ई समय अछि त अइ के लेल गजेंद्र किस्म जे या ओ अनुशंसित अछि।
1: छै संगे खरीफ मकई के सेहो बुआई किसान भाई कऽ सकै छथि। खेत के तैयारी कऽ लेत खेत के जोताई के समय में 10-15 टन सरल गोबर के खाद प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करैत संगे खरीफ मकई के बुआई 25 मई से के तक कऽ सकै छथि। लत्तर वाला कहबे के लिए सब्जी में जना कि भेल नेनुआ भऽ गेल करैला भऽ गेल लौकी भऽ गेल कद्दू भऽ गेल खीरा भऽ गेल एहि में लाल भृंग कीट से बचाव हेतु डाइक्लोरोफास 76 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानि में घोल बना कर आ आसमान जखन साफ रहे तखन छिड़काव करबाक चाहिए किसान भाई के।
0: बहुत उचित गप अहाँ कहलहुँ आगू हम सब गप सप करब मुदा ओहिसँ पहिने एकटा गीत सुनल
1: सुनल जाता

0: देखू, कृषि के संग
1: संग हाँ, हाँ।
0: पशुपालन रीढ़ के हड्डी है, कियाकि अपना सबको ओहिठाम देखैत हेबै जे कृषि के कार्य करै छी, धान भेल, गहूम भेल, चाहे दलहन भेल, तेलहन भेल, ई सब जे फसल करै छी, ओहिमे यदि घाटा लागि जाइत अछि तऽ पशु यदि पोसै छी, ओहोमे दुधारू पशु, तऽ ओहिसँ बड्ड बेसी लाभ होइत अछि, तऽ एकर देखभाल केनाइ बड्ड बेसी आवश्यक भऽ जाइत अछि। गोपी
1: देखियौ, अपना सबके जे अधोकालसँ अपने सब खेती बाड़ी के संग मालजाल के पोषण करते तो अहाँ के मालजाल के पोषण जे करब तो ओहू में छे से बहुत गप जे बहुत रास गप जे ओकरा ध्यान रख पड़े। अब जै काल से माने अहाँ के जैसे काल में उत्पादन नहीं निक भेल तो मालजाल के पोषण से दूध बेच के वही क्षतिपूर्ति अहाँ के अपने सब करै छी। अब एखन छे से अहाँ के वर्षा भ रहल या तो वर्षा के समय में इसकी जल जमा हो जाइए तो भोर में साँझ में कम से कम घूर करवा के चाहिए निश्चित रूप से, ओकर आहार विहार का सेहो अहाँ का ध्यान रखो पड़
0: चाहिए। पौष्टिक आहार जना भेले साफ पानी भेल, स्वच्छ हवादार आवास भेल, नियमित पशु के चिकित्सा भेल, जांच टीकाकरण भेल, ढेर सारा चीज है जे बीमारी से बचेबा के लेल साफ सफाई, कीड़ा मारवा के दवाई, सुरक्षित वातावरण के अत्यंत आवश्यक होते मालजाल के देखभाल। तो हमरा लोकन के चाहिए

0: ईसब तऽ करबे करी, संगे पौष्टिक आ संतुलित आहार देबाक चाही। जेनाकि कोनो गाये पोसै छी, महीस पोसै छी, बकरी पोसै छी, तऽ उत्तम नस्ल के यदि पोसै छी तऽ ओकरा विशेष देखभाल, जेना गर्मी अखन प्रचंड यदि भऽ जायत तऽ ओकरा अहाँके कूलर चाही, पंखा चाही, ई सब ताजा हवा चाही या पौष्टिक भोजन चाही, तऽ ई सब पर ध्यान देनाइ आवश्यक भऽ जाइत अछि। संगे साफ सफाई, जाहि जगह पर ओ रहि रहल अछि ओकरा प्रतिदिन सफाइ करबाक चाही। कीटाणु यदि भऽ जाइत अछि तऽ फिनाइल के छिड़काव कऽ कऽ ओकरा से बहारबाक चाही। पानि के उपलब्धता करबाक चाही, भरि दिन मे पशु जे अछि ओकरा 2-3 बेर पानि पियबाक चाही। नमक के मात्रा भोजन मे देबाक
1: चाही,
0: जाहिसँ
1: स्वच्छ जल,
0: हाँ
1: स्वच्छ जल पियाबियो, बथान के साफ सुथरा रखियो,
0: साफ सुथरा रखियो। छै है सहज वातावरण जैसे महसूस है जानवर के, ओय के लेल धूप आ ठंड बारिश सबसे बचेनाई आवश्यक भ जायत अछि। संगे हवादार वाला जगह जे अछि गर्मी मास में ओहन स्थान पर मालजाल के घर बनेबा के चाही। मालजाल के घर जतय अछि ओय के सामने में गोबर के कखनो नहीं जमा करबा के चाही। ऐसा अहाँ के मच्छर जे अछि चाहे फालतू कीट कीटाणु जे अछि ओ अहाँ के पनपैत अछि आ ओ अहाँ के मालजाल के प्रभावित करैत अछि। तो सुरक्षित मालजाल रहे, बेसी से बेसी ओहि से दूध उत्पादन ली, एहि लेल आवश्यक अछि जे मालजाल के विशेष देखभाल केनाइ आवश्यक अछि। की गोपी
1: जे कि देखियौ मालजाल के देखभाल नहीं करबै तो ऐसे जे लाभ होइए ओहि लाभ से तो अहाँ वंचित रह
0: सकै छी।
1: तो मालजाल के बदलत समय के हिसाब से देखभाल, ओकर आहार विहार, ओकर स्वच्छता के ध्यान रखने, ओकर खान पान के ध्यान रखने, आ संगे संग मच्छर देखियो बरसात के समय में बड़ बेसी बढ़ जाइए। एखन जे बरखा भेल हँ तो चारू दिस देखै छी मच्छर का तरह तरह के कीड़ा मकोड़ा,
0: हरियाली बढ़ जाइत अछि।
1: तो भोर में साँझ में कम से कम बढ़िया से घूर हेबाक चाही ताकि ओकर मच्छर से बचाव भ सके। आ नहीं अगर घूर सुनैए तो मच्छरदानी के उपयोग सेहो कऽ सकै छी। आबै छै मालजाल के मच्छरदानी आबै छै ओकरा अहाँ लगाइयो, किया तऽ जतेक अपन सुरक्षा चाहै छी ओतबे जे जीव के जे पोसने छी ओकरो प्रति अहाँके ओतबे जवाबदेही बनैए कि ओकर अहाँ सुरक्षा करियो।
0: तऽ संगे अहाँके मालजाल जे गोत करैत अछि ओहि हिसाब से आवास बनाबी जे गोत जे करैत अछि ओ बाहर आबि जाए। आ संगे ओ
1: गंदगी के निकासी भऽ
0: जाए, गोबर करैत अछि ओकरा हटा कऽ कात कऽ देबाक चाही। आ एहिसँ अहाँके साँझ के जे कीटाणु अछि मच्छर अछि ओ कम पनपैत अछि। आ संगे छा अथी जकरा कहै छै राख कहै छै ओकरा बेसी से बेसी उपयोग करबाक चाही।
1: हँ हँ तऽ एहि सब गप के जे ध्यान में रखब

था खेती गृहस्थी प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: बस थोड़ी ही देर में।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
5: और इस गीत के बाद
6: छाया गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द, पेपर लीक के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निजी विद्यालयों की मनमानी रोकने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए। अब विद्यालयों को शुल्क की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक। प्रदेश में एग्री स्टैक परियोजना के तहत किसानों का फार्मर आईडी बनाने के लिए आज से शुरू हुआ विशेष अभियान। और पटना, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, गया और अरवल समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट।

0: रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निजी विद्यालयों की मनमानी रोकने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौधरी ने कहा कि निजी विद्यालयों को शुल्क की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। उन्होंने कहा कि विद्यालय शुल्क में मनमानी बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे, साथ ही किसी भी अनावश्यक शुल्क पर रोक रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को पुस्तक और पोशाक खरीदने की स्वतंत्रता होगी। इसके अलावा छात्रों की फीस बकाया होने पर भी उन्हें परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जा सकेगा और न ही उनके परिणाम पर रोक लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले निजी विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में एग्री स्टैक परियोजना के तहत किसानों का फार्मर आईडी बनाने के लिए आज से विशेष अभियान की शुरुआत हुई। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि फार्मर आईडी बनाने के लिए किसानों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और स्वयं के नाम से दर्ज जमाबंदी की जानकारी देनी होगी। श्री सिन्हा ने कहा कि यह अभियान डिजिटल इंडिया को और गति देगा।
2: देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है डिजिटल इंडिया और हमारा डिजिटल किसान का एग्री स्टैक फार्मर रजिस्ट्री, ये उसको एक बड़ी ताकत देगा। भूमि विवाद हटाएगा, उसके परिमार्जन म्यूटेशन को क्लियर करेगा और आने वाला पीढ़ी को उसकी जमीन की पूरी जानकारी भी मिलेगा। सरकार को उर्वरक, बीज, ये सब अनुदान जो देते हैं वो सही लोगों के हाथ में जाएगा। बिचौलिया, माफिया, भ्रष्ट लोग बाहर होंगे।
1: भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हिमंता बिस्व सरमा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। बिहार विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हो गया। ब्यौरा हमारे भोजपुर संवाददाता से।
3: बिहार विधान परिषद के भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपनिर्वाचन के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों जिलों के विभिन्न प्रखंड मुख्यालय स्थित बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। भोजपुर के जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने बताया कि 97.96% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस सीट पर जदयू के कन्हैया प्रसाद तथा राजद के सोनू राय में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि चार निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। मतों की गिनती 14 मई को आरा में होगी। यह सीट पूर्व MLC राधा चरण साह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई थी। आकाशवाणी समाचार के लिए आरा से मुकेश कुमार सिन्हा।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। इधर स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नर्सों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ और आशा का स्तंभ बताया। नर्स दिवस पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के छठे चरण में IIT पटना को पंजाब स्थित IIT रोपड़ के साथ जोड़ा गया है। IIT पटना के निदेशक TN सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि इस पहल के तहत पंजाब के 60 चयनित युवा बिहार आएंगे और बिहार के युवा पंजाब जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को राज्यों की सांस्कृतिक विविधता, परंपरा, तकनीक और सामाजिक जीवन से अवगत कराना है।
4: एक प्रदेश के विद्यार्थियों को दूसरे प्रदेश की संस्कृति, सभ्यता और वहाँ के शिक्षा के आयाम को देखने का एक सुनहरा अवसर है। IIT पटना इस बार पंजाब प्रदेश के साथ इसकी पेयरिंग है। पंजाब के विद्यार्थी 60 की संख्या में यहाँ पे आएंगे और उनको बिहार के जो प्रमुख शिक्षा संस्थान, धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक

0: धरोहर जो है उन सबों का भ्रमण करने का और उनको समझने का अवसर मिलेगा। और इसी तरह से बिहार के विद्यार्थियों को भी पंजाब ले जाकर के पंजाब की सांस्कृतिक धरोहर और वहां के सामाजिक संस्थानों को देखने का अवसर मिलेगा।
1: राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने आज मुंगेर विश्वविद्यालय की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने विश्वविद्यालय के कामकाज में पारदर्शिता और शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के निर्देश दिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पटना, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, बांका, गया और अरवल समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। इस दौरान कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है।
5: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर बांका के बेलहर थाना क्षेत्र के बलिहारी गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोलियम उत्पादों को बचाने और एक वर्ष तक सोने की खरीद नहीं करने की अपील का आम लोगों ने स्वागत किया है।
6: मैं नित्या कुमारी पटना से, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करती हूं। मैं अगले एक साल तक सोने के आभूषण नहीं खरीदूंगी, साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों की बचत पर ध्यान दूंगी। एलपीजी की जगह इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल करूंगी। लोगों को भी मैं इस पहल में जागरूक करूंगी।
7: मैं निशा कुमारी छपरा से, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है महिलाओं से, तो मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ हूं और मैं आशा करूंगी कि आप भी अपने देश और अपने प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी रहेंगी।
8: मैं रवि कुमारी जीविका सीएम, मैं सभी सदस्यों को समझाई कि सोना ना खरीदें एक साल और तेल कम खर्च करें।
9: अनिल कुमार, औरंगाबाद। यह कदम भारतीय मुद्रा को मजबूत करने में सहायक साबित होगा। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
1: रेलवे ने अमृतसर, न्यू जलपाईगुड़ी, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन फारबिसगंज और निर्मली सरायघाट के रास्ते करने का फैसला किया है। वहीं रेलवे ने पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जमुई स्टेशन पर ठहराव दिया है। यह ट्रेन 15 मई से जमुई स्टेशन पर रुकेगी। पूर्व मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता बागी कुमार वर्मा का निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। बागी कुमार वर्मा का पार्थिव शरीर विधानमंडल परिसर लाया गया, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बागी कुमार वर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। जाने माने कृषि वैज्ञानिक और पद्मश्री से सम्मानित गोपाल जी त्रिवेदी का आज पटना में निधन हो गया। गोपाल जी त्रिवेदी मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे और उन्होंने लीची की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों की खोज की थी।

0: उनके निधन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित कई गणमान्य लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। दूरदर्शन केंद्र पटना के वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक राजन कुमार का निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर दूरदर्शन केंद्र पटना और आकाशवाणी पटना के अधिकारियों और कर्मियों ने गहरी शोक संवेदना जताई है। बक्सर के वीर कुमार सिंह सेतु चेक पोस्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने 45 लाख रुपए मूल्य की शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं अररिया जिले के हड़ियावारा टोल प्लाजा के पास पुलिस ने एक चारपहिया वाहन से 180 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने 461 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। सासाराम नगर निगम की महापौर काजल कुमारी ने आज 1,20,00,000 रुपए की लागत से निर्मित विभिन्न सड़क और नाला का उद्घाटन किया। राजस्व और भूमि सुधार विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में दरभंगा में लौरिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कई कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इस अवसर पर शिव कथा और रामलीला का भी मंचन होगा। शेखपुरा जिले में आज विकास और समन्वय निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्थानीय सांसद अरुण भारती ने की। बैठक में जिले में चलाई जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई और कामों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। जहानाबाद जिले के 25,000 रुपए के इनामी अपराधी पप्पू सौ को पुलिस ने बक्सर से गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द। पेपर लीक के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निजी विद्यालयों की मनमानी रोकने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए। अब विद्यालयों को शुल्क की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक। प्रदेश में एग्री स्टैक परियोजना के तहत किसानों का फार्मर आईडी बनाने के लिए आज से शुरू हुआ विशेष अभियान। और पटना, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, गया और अरवल समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: और इस गीत के बाद
5: छाया गीत।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है अरवल जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंद्रभूषण कुमार।
1: अरवल जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। 2 मई से शुरू हुआ यह अभियान 30 मई तक चलेगा। इस दौरान प्रगणक घर घर जाकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इससे पूर्व जिले में 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया, जिसमें नागरिकों ने बड़ी संख्या में ऑनलाइन माध्यम से जनगणना में भाग लिया। अब मकान सूचीकरण के तहत प्रगणक द्वारा स्वगणना में भाग नहीं लेने वाले लोगों को भी जनगणना में शामिल किया जा रहा है। इसके लिए जिले के सभी कर्मियों और चार्ज अधिकारियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। जिले में बीते 9 मई को वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 195 मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन किया गया। इनमें 68 सुलहनीय आपराधिक मामले तथा 64 बैंक ऋण से संबंधित मामले शामिल थे। इसमें 17,03,726 रुपए का सेटलमेंट हुआ तथा ट्रैफिक चलान से 3,02,500 रुपए की वसूली की गई। लोक अदालत के लिए 4 पीठों का गठन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले दिनों जिले में तेज आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ की डालियां टूटकर गिर गई और बिजली के खंभे भी उखड़ गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ तथा कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। विकसित भारत समृद्ध बिहार अभियान के तहत आम जन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिले के सभी पंचायतों में 19 मई से सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने बताया कि इसमें आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान किया जाएगा तथा प्राप्त शिकायतों की निगरानी और निष्पादन सहयोग शिविर समाधान पोर्टल पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सहयोग शिविर में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों, इसके लिए जिले में प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते दिनों जिले में किसान को डिजिटल पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से किसान पंजीकरण का कार्य बड़े स्तर पर किया गया। एग्री एस्टेट परियोजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत किसानों का डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया गया, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सुगम तरीके से उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न पंचायतों और प्रखंडों में विशेष शिविर आयोजित किए गए तथा किसानों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार अभियान भी चलाया गया। इस अभियान में जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जिला पदाधिकारी को पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रशस्ति पत्र और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने जिले में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए इसे अन्य जिलों के लिए प्रेरणादायक बताया। इधर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे सभी पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा लाभुकों से जल्द अपना जीवन प्रमाणीकरण कराने की अपील की गई है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 19,681 पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण नहीं हो सका है। प्रशासन द्वारा ऐसे लाभुकों की सूची तैयार कर उन्हें जागरूक करने तथा प्रक्रिया पूरी कराने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। बीते दिनों भू अभिलेख निदेशक सुहर्ष भगत जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने विशेष भू सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य की समीक्षा की। उन्होंने जिला पदाधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता को जिले के सभी 312 राजस्व ग्राम में भू सर्वेक्षण का कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद अरवल जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी और उत्साह देखा गया। परिणाम घोषित होने के बाद कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया।
0: अभी आप सुन रहे थे अरवल जिले के

0: हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता चंद्रभूषण कुमार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं विवाह फिल्म का यह गीत।

अभी आप सुन रहे थे विवाह फिल्म का यह गीत उदित नारायण एवं श्रेया घोषाल की आवाज में। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म यारो सब दुआ करो का यह गीत सुनिए रामशंकर की आवाज में। संगीत निर्देशन जसपाल मणि का है और बोल हैं ध्रुव कुमार के।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म हम तुम पे मरते हैं का यह गीत उदित नारायण की आवाज़ में, बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत निर्देशन उत्तम सिंह का है।

उदित नारायण के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

हाँ तो अखन अपना सब श्रोतागण कुमकुम झा के स्वर में ई भगवती गीत सुने छलो हैं। तो माता जे छथि वरदान दैते छथि जखन अपना सब कोनो नीक काज आ मंगलकारी काज करै छी, कर्म अपन करैत रहै छी, नीक काज में लागल रहै छी, तो स्वाभाविक अछि ओकर फल भेटते टा अछि। तो श्रोतागण आजुक मैथिली साहित्य कोनो आन भाषा साहित्य जकाँ समृद्ध रूप में हमरा सभक समक्ष ठाड़ अछि। साहित्यक प्रत्येक विधा में लेखन एहन ओहन नहि, स्तरीय लेखन भ रहल अछि। ई आजुक गप नहि अछि, मैथिली साहित्यक इतिहास सेहो बड्ड पुरान अछि। आ एहि नम्मा कालखंड में कतेको साहित्यकार लोकनि, रचनाकार लोकनि अपन योगदान दैत रहला अछि। सभक अपन अपन भाषा शैली रहलनि अछि आ ओहि शैलीक अनुरूप हुनकर प्रसिद्धि सेहो एखन धरि बनल रहल अछि। भाषा शैली लेखन कलाकेँ निखारैत अछि। ई कहि सकैत छी जे लेखन शैली कोनो रचनाकारकेँ महान बनबैत अछि, ओ हुनक प्रसिद्धि केर कारण बनैत अछि। कतेको रचनाकार सब अपन साहित्य में भेला जिनका रचना सब एखनो ओहने रुचिगर लगैत अछि, होइत अछि जे कतेक ओहि रचना के पढ़ैत रही हमरा सबके। आ एखनो हमसब ओहि रचना सब के पढ़ैत छी, बेर बेर पढ़ैत छी, मोन ओहिसँ अघायत नहि अछि। आ कवि साहित्यकार लोकनि ई रचना सब मैथिलीकेँ लोकप्रिय बनेबामे सेहो योगदान दैत रहला अछि। कतेको रचनाकार सब भेला जे नव नव शैलीक प्रयोग केला आ ओहि शैलीके जखन अपन साहित्यमे स्थापित केलनि। बहुतो गोटे जाहि सहज आ सरल शब्दक प्रयोग अपन रचना सबमे करैत रहला, ओ हमरा सब लेल एकटा उदाहरण अछि। आ हुनका सभक प्रेरणा पाबि कतेको गोटे साहित्य लेखन दिस अबैत रहला अछि। आ साहित्यमे बहुत गोटे एहन छथि जे केओ उपन्यास लिखै छथि, केओ कहानी लिखै छथि, खिस्सा लिखै छथि, तऽ केओ

0: कविता के रचना करी छथि, केओ गद्य में तो केओ पद में। आब आजुक समय में जेहन स्थिति बदल गेल अछि जे सब गोटे व्यस्त भऽ गेलहुँ हैं, गाम आब बिसरि रहल छी, गामक आम सदिखन मोन पड़ैत अछि। तऽ ओना अपना सब एकटा एगोट काव्य पाठ सुनै छी, कवि छथि हरिश्चंद्र हरित। सब ई काव्य पाठ।
1: नवका कलमक सुपक सिनुरिया, गाछी केर ओ केरबी गोपिया, गुणसारिक ओ फजली चोरबी, पछिमा बाधक ओ करपुरिया, बुढ़िया बोनक सोन लरुब्बा, संग सपेता आम तकै छी, कनिया काकी केर बारी केर ओ डमहोर लताम तकै छी, गाम हेरा गेल गाम तकै छी। नबका कलमक सुपक सिनुरिया, गाछी के ओ केरबी गोपिया, गुणसारिक ओ फजली चोरबी, पछिमा बाधक ओ करपुरिया, बुढ़िया बोनक सोन लरुब्बा, संग सपेता आम तकै छी, कनिया काकी केर बारी केर ओ डमहोर लताम तकै छी, गाम हेरा गेल गाम तकै छी। गमहारिक सुखैल बियासों, सतघारा केर घर सजाबी, चिक्कन गोल घसल डिग्गासों, एकठ दुक्कठ राज लगाबी, सौंसे गामक अंगना अपने, चोरा नुक्की झात बजाबी, बुढ़िया चेत कबड्डी ताली, कीत कीत में की नहीं पाबी, गुल्ली डंटा गिद्धा गुड़कन, टन्ना दुखी अटकन मटकन, चोर सिपाही घोघो रानी, आनी मानी हमने जानी। गमहारिक सुखैल बियासो, सतघारा केर घोर सजाबी, चिक्कन गोल घसल डिग्गासो, एकठ दुक्कठ राज लगाबी, सौंसे गामक अंगना अपने, चोरा नुक्की झात बजाबी, बुढ़िया चेत कबड्डी ताली, कीत कीत में की नहीं पाबी, गुल्ली डंटा गिद्धा गुड़कन, टन्ना दुखी अटकन मटकन, चोर सिपाही घोघो रानी, आनी मानी हमने जानी, आस पास में ताकी ककरा, से नहीं कोनो नाम पवै छी, मन आंगन में लाल परी, संकरिया झुमर नाच करे छी, गाम हेरा गेल गाम तकै छी। नानी हाथक लड्डू मठरी, कमला कातक झिल्ली कचरी, रूसी तो भेटै बस कुनमा, तैले आंचर दौड़ा पकड़ी, लाल कका केर कन्हा झूली, दादा केर पीठे पर भूली, भुआ चोरक नामी खिस्सा, मैया कोड़ा हमरे हिस्सा। नानी हाथक लड्डू मठरी, कमला कातक झिल्ली कचरी, रूसी तो भेटै बस कुनमा, तैले आंचर दौड़ा पकड़ी, लाल कका केर कन्हा झूली, दादा केर पीठे पर बूली, भुआ चोरक नामी खिस्सा, मैया कोड़ा हमरे हिस्सा। खर्रख बाली खवासनी केर कोड़ा में सुखधाम तकै छी, खर्रख बाली खवासनी केर कोड़ा में सुखधाम तकै छी, गाम हेरा गेल गाम तकै छी। गढ़हन खात सबैया हुट्ठा, मुगली बान्हल गेलै सुट्टा, काल्हि सुनायब सत्य कहै छी, सब दिन मुदा बनै छल झुट्ठा, घोरन केर छत्ता झड़ैत छल, तै पर सँ छौकी पड़ैत छल। गढ़हन खात सबैया हुट्ठा, मुगली बान्हल गेलै सुट्टा, काल्हि सुनायब सत्य कहै छी, सब दिन मुदा बनै छल झुट्ठा, घोरन केर छत्ता झड़ैत छल, तै पर सँ छौकी पड़ैत छल। ओइ कर वीरक दुखमोचन केर आइयो तो हम नाम जपै छी, गाम हेरा गेल गाम तकै छी। बाँसक सुपती उक्का लोली, आंगन आंगन रचै रंगोली, टोल टोल सँ निकलै टोली, गाबै मस्त मजीरा भोली, एहन मचै समगर्दा होली, की बलचनमा की बम भोली, लालन बाबू केर ललकारा, दिल्ली लालक सारा रारा, ढोलक बानि फनै छल जनका, नाचै बच्चा बूढ़ जुवनका। बाँसक सुपती उक्का लोली, आंगन आंगन रचै रंगोली, टोल टोल सँ निकलै टोली, गाबै मस्त मजीरा भोली, एहन मचै समगर्दा होली, की बलचन।

मा की बम भोली लालन बाबू केर ललकारा दिल्ली लालक सारा रारा ढोलक बानि फनै छल जनका नाचे बच्चा बूढ़ जुअनका जूड़ शीतलक घोल फचक्का आंगन आंगन डोल फुचुक्का बनय महादेव भुखना ताती भूत प्रेत सन सजय बराती सुखराती में माल जाल केर गड़ा लाल गर दाम तकै छी गाम हेरा गेल गाम तकै छी ढुनमुन काकी केर आपकता गीता मौसी केर व्यापकता सगरे टोल पड़ोसक चिंता ककरा पड़ले कौन बेगरता विध व्यवहारक हींग हरद सौ गीत नाद केर ओ वित्पनता अरिपन पुरहरि ओरियानक संग बच्चा बूढ़ बेमारक तलता ढुनमुन काकी केर आपकता गीता मौसी केर व्यापकता सगरे टोल पड़ोसक चिंता ककरा पड़ले कौन बेगरता विध व्यवहारक हींग हरद सौ गीत नाद केर ओ वित्पनता अरिपन पुरहरि ओरियानक संग बच्चा बूढ़ बेमारक तलता गुलबी मैसन फुर्ती बाली गुलबी मैसन फुर्ती बाली आब न कोनो ठाम पबै छी गाम हेरा गेल गाम तकै छी उत्तर ताकी गौरी शंकर पश्चिम ताकी बाबा बटेश्वर पूब बसल संसार नाथ छथि बीच घेरायल बाबा भैरव उत्तर ताकी गौरी शंकर पश्चिम ताकी बाबा बटेश्वर पूब बसल संसार नाथ छथि बीच घेरायल बाबा भैरव राम जानकी केर सेवा में दक्षिण पवन पुत्र छथि तत्पर अपने गामक डीह टोल सँ हम त अपने ही गाम तकै छी अपने गामक डीह टोल सँ हम त अपने ही गाम तकै छी गाम हेरा गेल गाम तकै छी कतौ कतौ कत्ते की ताकब हम तो झूर झमान झखै छी गाम हेरा गेल गाम तकै छी गाम हेरा गेल गाम तकै छी समष्टिक चिंता में हमर कविता कविता कोनो घोघटाही साड़ी नहीं थी जे पेटी में बंद भेल पावनीय तिहार कोनो कोमलांगिक शोभा बनै छी कविता तो गोबर पथैत जात पिसैत चूल्हि लग आँच फुकैत घमैल देह सँ सटल कोनो ताँति थीक जे तन्नुक संवेदनाकें झपने कोनो काजुल नायिकाक सब काल संग पुरैच थीक हमर कविता कविता कोनो घोघटाही साड़ी नहीं थीक जे पेटी में बंद भेल पावनीय तिहार कोनो कोमलांगिक शोभा बनैच कविता तो गोबर पथैत जात पिसैत चूल्हि लग आँच फुकैत घमैल देह सँ सटल कोनो ताँति थीक जे तन्नुक संवेदनाकें झपने कोनो काजुल नायिकाक सब काल संग पुरैछ थीक हमर कविता कविता कोनो तितली सन सजि धैज फूले फूल बौआछि नहि एकेटा कमल में बन्न भेल नवका बिहान केर बाट तकैत भमरा थीक हमर कविता धन रोपनी करैत चूड़ीक संग खनकै यह हमर कविता घास छीलैत जारैन तोड़ैत साड़ूह कोड़ैत हेजक रंग उमकी में रमकै यह हमर कविता ईटा उघैत देहक घाम संग गमकै यह हमर कविता धन रोपनी करैत चूड़ीक संग खनकै यह हमर कविता घास छीलैत जारैन तोड़ैत साड़ूह कोड़ैत हेजक रंग उमकी में रमकै यह हमर कविता ईटा उघैत देहक घाम संग गमकै यह हमर कविता दम्भ सँ भरल कोनो माननीक मान नहि थिक हमर कविता भोरे उठि घर आँगन नीपि इस्कूल आ काज परक जलखै रखैत साँझखन ऑफिस कारखाना सँ झामर देह आ पितैल मोने अबैत पति स्वागत में ठाढ़ पत्नीक ठोर पर मधुरिम मुस्कान थीक हमर कविता भोरे उठि घर आँगन नीप स्कूल आ काज पर जलखै रखै साँझखन ऑफिस कारखाना सँ झामर देह आ पितैल मोने अबैत पतिक स्वागत में ठाढ़ पत्नीक ठोर पर मधुरिम मुस्कान थीक हमर कविता दम्भ सँ भरल कोनो माननीक मान नहि थीक हमर कविता दम्भ सँ भरल कोनो माननीक मान नहि थीक हमर कविता पाजर बकुटने परायत बेसोह जीवल लोक दिल्ली पंजाब में अतरी दुहबैत सपनाइत मुदा आँखि में वर्तमानक

0: छापन भविष्यक सिलेट आ अतीत केर च्यवन प्राश थीक हमर कविता। पाजर बकुट ने पढ़ाइत बेसोह जीवो ले लोक दिल्ली पंजाब में अतरी दुहबैत सपनाइत मुदा आँखि में वर्तमानक झापन भविष्यक सिलेट आ अतीत केर च्यवन प्राश थीक हमर कविता। अंतिम सबटा बाद आ विवाद के धकियवैत एकात मत अभिमत के करैत आत्मसात समष्टिक चिंतन में षटतालय शेषनाग जड़तालय अग्निज्वाल कटतालय कालकूट ममता केर मधुर गीत मीत हमर कविता। सबटा बाद विवाद के धकियवैत एकात मत अभिमत के करैत आत्मसात समष्टिक चिंतन में षटतालय शेषनाग जड़तालय अग्निज्वाल कटतालय कालकूट ममता केर मधुर गीत मीत हमर कविता। ममता केर मधुर गीत मीत हमर कविता।
1: हाँ तो श्रोता लोकन अखन काव्य पाठ सुने छलों कवि छला हरिश्चंद्र हरित। तो अवश्य सब गोटे के नीक लागल हैत वास्तव में गाम हेरा गेल गाम तकै छी। आब तो गाम में कतबो आम फरल है मुदा हमरा सब लग में समय नहीं है जे हम सब गाम जाएब आ गामक आनंद लौ पाएब। मैथिली साहित्यक इतिहास देखू जे बड बड पुरान है आ पुरान रहला के बादो हम सब ओई पुरान चीज के वर्तमान में अवश्य मोन पाड़े छी आ मोन पाड़े तेलू अछि। वर्तमान धरि एकर साहित्य में कतेक लोकन रचना कैल ई इतिहास बन गेल आ इतिहासक अध्ययन आवश्यक अछि। जाहि भाषा आ साहित्यक इतिहास नहीं अछि ताहि भाषा आ साहित्यक महत्व नहीं अछि। तैं मैथिली साहित्यक इतिहास के पढ़ब आवश्यक अछि। चाहे आस्था आ निष्ठा सँ एहि युग में मैथिली मनीषी लोकनि जे छथि से निबंध रचना कयलनि साहित्यक चर्चा कयलनि तकर उदाहरण जे छै से इतिहास में विरल भेटैत अछि। आ ई मैथिली साहित्यक इतिहास के जखन अपना सब अध्ययन करै छी तऽ बहुत रास जनतब अपना सबके भेटैत अछि। आवश्यकता अछि ओकरा बुझबाक। तऽ आब कार्यक्रम में शब्द विमर्श करबाक सेहो परंपरा रहल अछि मुदा शब्द विमर्श करब मुदा सुनैत छी ई गीत हमर सबके जे भाषा अछि हमर सबके सांस्कृतिक पहचान अछि तऽ जतऽ जे माटि पानिमे अपना सब छी ओहि भाषा के जखन नहि बुझबै तऽ संस्कृति के नहि बुझि सकै छी। तऽ श्रोतागण सुनै छी ई गीत।

हाँ तो अखन अपना सब कृष्णानंद मिश्रक स्वर में ई गीत सुने छलू हैं। तो आप गीतक बाद कार्यक्रम में बढ़े छी शब्द विमर्श दिस। आ शब्द विमर्श से पहले एक गोट गप कह दे छी जे जनतबे जे 8 जून का आकाशवाणी 90 बरख पूरा कर रहल अछि, जे कतेक प्रसन्नता के गप अछि। एहना नव नव प्रयास से नीक नीक कार्यक्रम अहाँ सबक बीच अनैत रही, अहाँ सब मनोबल बढ़बैत रही। तो आप बढ़े छी शब्द विमर्श दिस। एकटा शब्द अछि तपत। ओह कतेक तपत अछि खेनाइ, आइ नहि बुझाइए जे खायल हैत। कनिक दिन कनिक राखि दै छी, सेरा जाय तखन ई खेनाइ खायब। तपत माने बड गरम, खूब गरम अछि। एकटा शब्द अछि अरारि। कतेक अरारि ठनने छी, छोड़ू ने, गप के जते बिसरि जाय ओतेक नीक। स्नेहसँ रहबाक चाही, बेसी जे अरारि राखब तऽ मोन अपनो घोर रहत। तऽ एहि शब्द विमर्शक सङ्ग आब अगला भेंट धरिक लेल नीतूके दिअ आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप मैथिली कार्यक्रम सिंहरहार सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

एआईएडीएमके पार्टी में फूट, 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा, इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है।

0: इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।

0: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यवसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
2: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करे। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
3: आईसीएसईआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसईआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
4: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
1: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल SE.census.gov.in

आईएन के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। पहली से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान स्याह और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि चार अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट, 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Maharashtra and West Madhya Pradesh till tomorrow. The Met Department has also forecast hot and humid weather over coastal Karnataka for tomorrow. In badminton, Indian shuttlers Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty began their Thailand Open 2026 tournament campaign with a hard-fought win in Bangkok today. Top seeds Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty defeated Indonesia's unranked pair of Putra Arvinsya and Bagas Maulana 21-19, 23-21, 21-10 to enter the men's doubles second round. In IPL cricket, Gujarat Titans were 158 for 4 in 19 overs against Sunrisers Hyderabad at Ahmedabad when reports last came in. Earlier, Sunrisers Hyderabad won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. CBI registers case in alleged NEET paper leak issue. Multiple suspects detained across several states. In Tamil Nadu, AIADMK splits. Bigger faction with 30 MLAs set to support Vijay's TVK government floor test tomorrow. Chief Justice of India Suryakant constitutes high-powered committee to prepare blueprint for modernization of courts across the country. India to host two-day BRICS foreign ministers meeting beginning Thursday to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Stock indices tank around 2% as elevated oil prices and US-Iran tensions dampen markets' confidence. And in badminton, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advance to second round of Thailand Open in Bangkok. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। सीबीआई ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में AIADMK में फूट पड़ गई है। 30 मेंबरानी असेंबली पर मुश्तमिल बड़ा हिस्सा विजय की TVK हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार है। कल अक्सरियत साबित की जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आला इख्तियारात के हामिल एक कमेटी तश्कील दी है जो मुल्क भर में अदालतों की जदीदकारी का खाका तैयार करेगी। भारत जुमेरात से दो रोजा ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अमरीका ईरान कशीदगी के सबब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 2% की कमी आई है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की टीम बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। मरकजी तहकीकती ब्यूरो CBI ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट UG 2026 के मुबैना पेपर लीक के मामले में एक केस दर्ज किया है। एजेंसी ने वजारत तालीम के आला तालीम के महकमे की जानिब से मौसूल एक तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर यह मामला दर्ज किया है। एक बयान में एजेंसी ने कहा है कि उसने नीट UG इम्तिहान मुनक्किद किए जाने के सिलसिले में मुबैना बेजाबतगियों और पेपर लीक हो जाने के मुतालिक इन खिलाफ वर्जियों के साथ एक FIR दर्ज की है जिसमें मुजरमाना साजिश, जालसाजी, मुजरमाना एतमाद शिकनी, चोरी और सबूतों को खत्म करने की कोशिश और इम्तिहानात में नामुनासिब तरीक़ेकार इस्तेमाल करने की रोकथाम से मुतालिक अवामी एक्ट 2024 के तहत खिलाफ वर्जियां शामिल हैं। नई दिल्ली में नीट इम्तिहान की मनसूखी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के DG अभिषेक सिंह ने बताया कि NTA तलबा के लिए दोबारा इम्तिहान मुनक्किद करेगी और ये मुनसिफाना तरीके से मुनक्किद किया जाएगा और दोबारा इम्तिहान के लिए कोई इजाफी फीस नहीं ली जाएगी।
2: हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। हमने NTA के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे और हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे।
1: इससे कबल आज दिन में NTA ने इस माह की 3 तारीख को मुनक्किद किए गए नीट UG 2026 इम्तिहान को मनसूख करने का फैसला किया था। इस मामले में राजस्थान पुलिस की खसूसी कार्रवाइयों

क्यों युवाओं तथा कम पढ़े लिखे लोगों पर होता है। मूल तथ्य से परे गलत को सही मान लेने का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, स्वाधीनता आंदोलन के सूत्रधार रहे नेताओं के बारे में भी गलत जानकारी बड़े स्तर पर साझा की जा रही है। यह देश की प्रगति में बाधक ही नहीं, भविष्य के लिए खतरनाक परिणाम के संकेत हैं। सरकार द्वारा गंभीरतापूर्वक इसे पूरी तरह रोकने का प्रयत्न अत्यावश्यक है और इसके लिए हमारी यह जिम्मेवारी बनती है कि हम इसका खंडन करते हुए सही तथ्यों को साझा करें तथा सरकार के समक्ष इसका प्रबल विरोध प्रतिवेदन के साथ दर्ज करें। सोशल मीडिया पर खास उद्देश्य राजनीतिक विचारधारा द्वारा सामाजिक एवं धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है। यह अत्यंत खतरनाक स्थिति है। उन्माद वस्तुतः ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति की विवेक शून्यता चरम पर होती है और तामसी वृत्ति पूरी तरह आक्रामक हो जाती है। इसी प्रकार सोशल मीडिया पर किसी के चारित्रिक हनन के उद्देश्य से उकसाने की मंशा से विकृत तस्वीरों को एवं कार्टूनों को साझा किया जाता है। यह खास विचारधारा एवं मानसिकता से प्रेरित होने की वजह से प्रतिक्रिया स्वरूप इसी प्रकार दूसरी विचारधारा के लोग भी विकृत स्वरूप प्रेषित करना आरंभ कर देते हैं। इससे एक प्रकार की कुप्रवृत्ति जन्म लेती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर आरंभ हो जाता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे स्वरूपों को साझा करने की मनाही करें, हतोत्साहित करें। वस्तुतः जिस समाज में स्वतंत्रता ने स्वेच्छाचारिता का स्थान ले लिया हो, सोशल मीडिया पर खुलेआम अभद्र तस्वीरें तथा अश्लील बातें प्रेषित की जाती हों, जिस पर कोई नियंत्रण न हो, जहां बिना मेहनत के छल प्रपंच धोखाधड़ी द्वारा रातों रात लखपति करोड़पति बनने की प्रवृत्ति हो और गुलाम मानसिकता के लिए दंड विधान ही एकमात्र उपचार हो, जहां दंड प्रक्रिया दीर्घ सूत्री होने के कारण ये विधान उनके लिए कवच का ही काम करते हैं, वहां मौन धारण करना प्रकारांतर से उन प्रवृत्तियों को प्रश्रय देना है। ऐसी स्थिति में प्रतिरोध स्वरूप हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने स्वर को मुखरित करें, प्रतिकार स्वरूप सत्ता पक्ष तक अपनी आवाज पहुंचाएं, ताकि एक तंत्र विकसित हो सके और इन दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जा सके। साइबर अपराध सोशल मीडिया की बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आए दिन लोग धोखाधड़ी के धरल्ले से शिकार होते जा रहे हैं। कभी बैंक अकाउंट के बंद होने, कभी एटीएम बंद होने, तो कभी केवाईसी के नाम पर, कभी सतर्कता के अभाव में, तो कभी अज्ञानतावश लोग साइबर अपराध की गिरफ्त में आ रहे हैं। साइबर अपराधियों द्वारा झूठ फरेब के साथ बैंक खाता या एटीएम के बंद होने संबंधी सूचना अचानक मिलते ही लोग घबरा जाते हैं। इनके झांसे में आकर बैंक संबंधी अपनी सूचनाएं दे देते हैं, फिर सारा खेल समाप्त हो जाता है। स्थिति यह है कि हर कोई भयभीत एवं सशंकित है कि कब किस समय उसका अकाउंट साफ हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो ही इस प्रकार के फर्जी फोन या मैसेज आए, हम अपने संपर्क के लोगों को अविलंब मैसेज या फोन द्वारा सावधान करें। किसी को डराना, धमकाना, ब्लैकमेल करना साइबर बुलिंग का अहम हिस्सा है। सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से गोपनीयता प्राइवेसी भंग होती है, निजी सूचनाओं डाटा की चोरी होने का खतरा बढ़ गया है। कई लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं और लोगों को ट्रोल करना, धमकाना शुरू कर देते हैं जो उनके विचारों से सहमत नहीं है, और व्यक्ति की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। कभी कभी महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो को साइबर पर लीक कर देने की धमकी दी जाती है और लीक भी कर दी जाती है। फर्जी अकाउंट भी बना दिए जाते हैं और साइबर अपराधी उनका ब्लैकमेल करने लगते हैं। ऐसे संदर्भों एवं घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमारा दायित्व बनता है कि ठोस कानून बनाने, एक सुदृढ़ तंत्र विकसित करने हेतु सरकार पर दबाव डालने की दिशा में हम सार्थक

0: पहल करें। सोशल मीडिया पर बच्चे यदि काफ़ी देर तक मशगूल होकर समय बिता रहे हों, उनकी संलिप्तता ज़्यादा है, तो इस पर विशेष रूप से गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर बच्चों का पढ़ाई के बदले अन्य चीज़ों से जुड़ाव तो नहीं है। गलत चीज़ों की लत उनके भविष्य को बर्बाद कर सकती है। विज्ञापन भी ऐसे अश्लील एवं उत्तेजक होते हैं कि बच्चे मानसिक विकार के शिकार हो जाते हैं। हमारा तथा माता पिता एवं अभिभावकों का दायित्व है कि उन पर नज़र रखी जाए, केयर किया जाए, क्योंकि बच्चे डिप्रेशन तथा साइबर बुलिंग के भी शिकार हो जाते हैं। बच्चों के संदर्भ में हमारा तथा माता पिता का समग्र रूप में यह दायित्व बनता है कि नेट के उपयोग के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए, ताकि बच्चों के अध्ययन, निद्रा एवं भोजन प्रभावित न हो, अन्यथा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर उसका विपरीत असर हो सकता है। बच्चों के सोशल अकाउंट पर हमेशा नज़र रखी जाए कि वे बुरी लत की चपेट में तो नहीं हैं। छोटे बच्चों को सोशल मीडिया के अकाउंट बनाने की अनुमति न दी जाए। मित्रों के साथ आमने सामने बातचीत के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, न कि वे इसके लिए सिर्फ सोशल मीडिया पर आश्रित हों। बच्चों से सोशल मीडिया के संदर्भ में खुलकर बातें की जाएं कि इस मीडिया पर सही के साथ गलत चीज़ें भी परोसी जाती हैं। सोशल मीडिया के लगातार बढ़ते दायरे का सामना करने के लिए एक संपूर्ण राष्ट्रीय कानून आवश्यक है और इस संबंध में जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए, कानूनी प्रावधान होने चाहिए। वर्तमान में देश को डिजिटल साक्षर बनाए जाने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया का उपयोग कैसे किया जाए, इस संदर्भ में देश के प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाए जाने की ज़रूरत है, जहां लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना स्वार्थ साधा जाता है। इस दिशा में भी सरकार प्रयत्नशील हो, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके लिए पहल करें। वास्तव में कानूनी प्रक्रिया दूसरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी तो व्यक्ति की सोच है, उसका विचार है। जब तक व्यक्ति अपनी विकृत सोच को पुरस्कृत नहीं करेगा, तब तक समाज एवं देश को सोशल मीडिया का दंश झेलना पड़ेगा। जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें अवश्य महत्व दें एवं प्रसारित करें।
1: अभी आप हिंदी वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था सोशल मीडिया और हमारी जिम्मेवारियां। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
2: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगैत अछि। फूल प्रकृति में घोराए लगैत अछि। ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल
3: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
4: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जँ नहीं हैत, उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
5: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
6: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
7: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
2: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
3: तुम नाचो रस बरसी।
1: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: Now, sir, rest in peace. Thank you so much.
1: अभी आप अंग्रेजी वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था इंडियन इकोनॉमी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

कार्य पवित्रता भक्ति और आस्था के साथ प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एक फनकार कार्यक्रम। आज के फनकार हैं किशोर कुमार। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं मिस्टर इंडिया फिल्म का यह गीत। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। बोल हैं जावेद अख्तर के।

सुनिए दाता फिल्म का यह गीत किशोर कुमार की एवं अलका याग्निक की आवाज में, बोल हैं अनजान के और संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का है।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म मिस्टर इंडिया का यह गीत सुनिए किशोर कुमार एवं आलिशा चिनॉय की आवाज़ में। बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अब सुनिए शर्मीली फिल्म का यह गीत किशोर कुमार की आवाज में है, बोल है नीरज के और संगीत निर्देशन एसडी बर्मन का है।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म जुगनू का यह गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में, बोल है आनंद बक्सी के और संगीत निर्देशन SD बर्मन का है।

साथ ये वादा ये रहा, तेरे घर लेके मैं बारात, कभी आऊ तेरा पीछा ना ना छोड़ू।

इसी गीत के साथ आज के फनकार कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। आज के फनकार कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे कुछ किशोर कुमार के गाए गीत, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं यारी जिंदाबाद, जिंदाबाद का यह गीत आशा भोसले एवं उषा मंगेशकर तथा साथियों की आवाज़ में, संगीत निर्देशन सोनिक उमी का है।

मैं तो मरूंगी उससे, मोहब्बत करूंगी उससे, जो शोला ज्यादा भड़के वो जल्दी बुझ जाए।

0: कर हटक कर हटक कर हटक कर।
1: सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म है जाल। बोल हैं राजा मेहदी अली खान के और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

सुनिए, बेटी बेटी का बेटी बेटी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल हैं शैलेंद्र के और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का है।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म रिवॉल्वर रानी का यह गीत सुनिए आशा भोसले की आवाज में, संगीत निर्देशन संजीव श्रीवास्तव का है और बोल हैं शाहीन इकबाल के।

अभी आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं आशा भोसले का यह गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे अनमोल मोती फिल्म का यह गीत, आशा भोसले की आवाज़ में, बोल थे राजेंद्र कृष्ण के और संगीत निर्देशन रवि का था। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
3: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे